सुप्रभात, यह आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। आज दिन मंगलवार है, शक संवत 1948, ज्येष्ठ माह की तिथि 5, तदनुसार दिनांक 26 मई सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह की 5:58

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज नई दिल्ली में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वांग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। बैठक में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, विभिन्न पहलों की प्रगति की समीक्षा करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े ताजा घटनाक्रमों पर चर्चा होगी। खुले और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के क्वाड के दृष्टिकोण के अंतर्गत विदेश मंत्री पिछले वर्ष वाशिंगटन में हुई चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन की सिक्किम यात्रा पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज शाम गंगटोक में नामग्याल तिब्बत विज्ञान संस्थान जाएंगी। श्रीमती मुर्मू का कल नाथुला दर्रे का दौरा करने का कार्यक्रम है। यात्रा के अंतिम दिन राष्ट्रपति गंगटोक में सिक्किम पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान करेंगी। श्रीमती मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। गृहमंत्री अमित शाह अगले कुछ दिन सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे। श्री शाह 2 दिन की यात्रा पर आज राजस्थान के बीकानेर पहुंच गए हैं। इस दौरान उनका सशस्त्र बलों से बातचीत करने और उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन करने का कार्यक्रम है। 29 मई को श्री शाह गुजरात जाने का कार्यक्रम है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। श्रीमती सीतारामन ने मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ समारोह में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के व्यवस्था को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल और पहलों का शुभारंभ किया। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि सरकार योग और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से चिकित्सा सेवाओं को मजबूत कर रही है। नई दिल्ली में आयुष मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में श्री जाधव ने कहा कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा भारत की प्राचीन पद्धति है और अब ये वैश्विक स्वास्थ्य अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बन रहे हैं। श्री जाधव ने बताया कि देश भर में प्राकृतिक चिकित्सा और योग विज्ञान के 70 से अधिक कॉलेज तथा 5000 से ज्यादा योग प्रशिक्षण संस्थान हैं। नागर विमानन महानिदेशक

0: एयरलाइन को मास्क, पीपीई किट, दस्ताने और सैनिटाइजर जैसी जरूरी सामग्री का पर्याप्त भंडार रखने को कहा गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने नई ग्राम पंचायतों के गठन तक निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ग्राम पंचायतों का प्रशासक नियुक्त किया है। राज्य की ग्राम पंचायतों का कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर ये प्रधान कल से प्रशासक के रूप में काम करेंगे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला रोप वे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। आईपीएल क्रिकेट के क्वालिफायर वन मुकाबले में आज मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। मैच धर्मशाला में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इस मुकाबले की विजेता टीम सीधे फाइनल में पहुंचेगी, जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफायर टू में एक और मौका मिलेगा। मोहाली में कल एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। और भारत ने कल गोवा में सैप महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के ग्रुप बी मुकाबले में मालदीव को 11-0 से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: यह आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है, एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है आज का चिंतन अध्ययन ज्ञान का आधार।

आज का युग प्रतियोगिता का युग है। सबके सब मानो दौड़ लगा रहे हैं और हर आदमी येन केन प्रकारेण दूसरे से आगे निकल जाना चाहता है। ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया भाग रही है और सबको मंजिल तक पहुंचने की भीषण हड़बड़ी है। नियम कायदे कर्तव्य की किसी को चिंता नहीं, बस गंतव्य तक पहुंच जाना है, चाहे जैसे भी हो। रास्ते की महत्ता तो खत्म हो गई, मगर यह सही दृष्टि नहीं है। कल्पना करें कि दो आदमी नदी में बहे जा रहे हैं, एक सिर्फ हाथ पैर फेंकने की धुन में है और जल्दी ही जल्दी किनारे तक पहुंच जाना चाहता है, जबकि दूसरा बहा भी जा रहा है और अगल बगल के परिवेश को देखता भी जा रहा है। उसके लिए मंजिल तक किनारे तक पहुंचना ही काफी नहीं है, रास्ते की भौगोलिक प्राकृतिक स्थितियों का ज्ञान भी प्राप्त करना है। मगर आज के यांत्रिक युग में रास्ते को महत्व देने की न तो किसी को इच्छा है, न अवसर, न उतनी फुर्सत। बस दो चार हाथ मारे और किनारे लगे। यह आदमी सफल आदमी तो कहला सकता है, पर ज्ञानी नहीं। आज विद्या अध्ययन के क्षेत्र में यह अराजकता सबसे ज्यादा है। छात्रों को अध्ययन में कोई रुचि नहीं, वे तो जल्द से जल्द परीक्षा पास कर लेना चाहते हैं, गेस पेपर, प्राइवेट ट्यूशन आदि के शॉर्टकट से। शिक्षकों को भी न तो छात्रों को ज्ञान देने में कोई रुचि है, ना फुर्सत। वे तो कोचिंग वगैरह के रूप में दुकान खोले बैठे हैं। हर तरह का इंतजाम है वहां छात्रों को शॉर्टकट से परीक्षा की वैतरणी को पार कराने के लिए। इसलिए महाविद्यालयों विश्वविद्यालयों को अधिक से अधिक ग्रेजुएट उत्पादित करने वाली फर्म कहा जाए तो कोई गलती नहीं होगी। विद्या एक ऐसा धन है जिसकी तुलना संसार के किसी भी धन से नहीं की जा सकती है, पर इसे पाने के लिए कठोर परिश्रम की आवश्यकता पड़ती है। कहा भी गया है, विद्या धन उद्यम बिना कहो जो पावे कौन, बिना हिलाए ना डुले जो पंखे का पौन। पर डिग्री पाने की लालसा में भ्रमित छात्र अध्ययन जरा भी नहीं करना चाहते। ज्ञान से उन्हें कोई मतलब नहीं, क्योंकि उसे पाने का रास्ता शॉर्टकट नहीं है, लंबा है, परिश्रम की मांग करता है। महाभारत में एक बड़ी रोचक और प्रासंगिक कथा है। यवकृत नामक एक ऋषि कुमार बिना अध्ययन किए अनायास वेदों का प्रकांड ज्ञाता बनना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने कठोर तपस्या शुरू कर दी। आखिर इंद्र को उसके समक्ष आना ही पड़ा। उन्होंने उसे इस कठोर तपस्या का कारण पूछा और जब ऋषिपुत्र ने उन्हें अपनी अदम्य लालसा बताई तो इंद्र ने उसे बहुत समझाया

0: कि विद्या वरदान से नहीं मिलती, उसके लिए तो अध्ययन करना चाहिए। पर वह तो तुरंत फुरंत बिना परिश्रम किए विद्वान होना चाहता था, उसे इंद्र की सलाह भला क्यों अच्छी लगती। वह तपस्या में लीन रहा। एक दिन यवकृत समुद्र के किनारे घूम रहा था। उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी मुट्ठी में बालू भर भर कर समुद्र में फेंक रहा है। यवकृत के मन में बड़ा कौतूहल उत्पन्न हुआ। उसने बूढ़े के पास जाकर पूछा कि ऐ बाबा, तुम यह क्या कर रहे हो? बूढ़े ने बड़े सहज भाव से उत्तर दिया, असल में मुझे समुद्र के उस पार जाना है। बालू इसीलिए समुद्र में फेंक रहा हूं कि यह भर जाए तो मैं पार कर सकूं। यवकृत को लगा कि यह बुढ़ा पागल हो गया है। उसने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम्हारा मस्तिष्क तो खराब नहीं हो गया बाबा? मुट्ठी भर बालू से तुम समुद्र भर दोगे? बूढ़े ने, जो स्वयं इंद्र थे, छूटते ही कहा, हे ऋषिपुत्र, जब तुम बिना अध्ययन किए सिर्फ तपस्या करके चारों वेदों के प्रकांड ज्ञाता बन जाने का दुस्साहस पाल सकते हो, तो मैं मुट्ठी मुट्ठी बालू डालकर समुद्र क्यों नहीं भर सकता? ऋषिपुत्र को मानो ज्ञान का बोध हुआ। उस दिन तपस्या छोड़कर वह अध्ययन चिंतन में लग गया। कहने का तात्पर्य यह कि हर काम उचित तरीके से ही होना चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य डिग्री प्राप्त करने मात्र से पूरा नहीं हो जाता। बिना विषयों के गहन अध्ययन के डिग्री मिल सकती है, ज्ञान नहीं।
1: आप सुन रहे थे आज का चिंतन, अध्ययन ज्ञान का आधार, की आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6:10 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

0: आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। यह आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान की आज की कड़ी।
1: एपिसोड नंबर 389।

पुण्यात्मा काकभुशुंडी के आश्रम पहुंचकर ही पक्षीराज गरुड़ का संशय, मायाजनित मोह और भ्रम दूर हो गए थे। किंतु उनकी ये जिज्ञासा अवश्य बनी हुई थी कि ऐसा क्यों कर हुआ, ये भी कि काकभुशुंडी ने कौवे का शरीर और श्री रामचरित का अक्षुण्ण भंडार कैसे और कहां पाया। उन्होंने अपनी ये जिज्ञासा काकभुशुंडी के सम्मुख प्रकट की। गरुड़ की ये जिज्ञासा सुनकर काकभुशुंडी हर्षित हुए और उन्होंने सविस्तार अपने पूर्व जन्मों की कथा सुनाई। फिर ये भी बताया कि कौवे के शरीर वाले जन्म में ही उन्हें श्री राम की अखंड भक्ति के साथ साथ इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था। इसी कारण कौवे के शरीर से उन्हें अत्यधिक प्रेम था और वे अपना ये शरीर त्यागने का विचार भी नहीं करते, क्योंकि ये वेद वर्णित सत्य है कि शरीर के अभाव में भगवान का भजन नहीं हो सकता।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान की आज की कड़ी। यह आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। हम आपको दे दें आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी। श्रोताओं, 6:55 पर आप सुनेंगे संस्कृत समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। 7 बजे आप सुनेंगे सुबह लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग। 7:20 पर सुनेंगे स्वास्थ्य वार्ता। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सुनेंगे भेंट वार्ता, तंबाकू सेवन के गंभीर खतरे और समाधान। भेंट वार्ताकार होंगी डॉक्टर प्रियंका सोनाली और इनसे बातचीत करेंगे मोहम्मद अली शबीर अंसारी। 7:30 पर आप सुनेंगे गीत संगीत कार्यक्रम। 8 बजे आप सुनेंगे सुबह समाचार प्रभात। 8:15 पर सुनेंगे मॉर्निंग न्यूज और 8:30 पर सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे रांची केंद्र से। समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से। 8:45 पर आप सुनेंगे हमारे हजारीबाग केंद्र से मॉर्निंग मेलोडी कार्यक्रम। 9 बजे सुनेंगे विविध भारती कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से। 10 बजे सुनेंगे हेलो हजारीबाग कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में फिल्मी गीतों के साथ आप सुनेंगे चर्चा। धूप गर्मी और लू से बचें, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। 11 बजे आप सुनेंगे विविध भारती कार्यक्रम मुंबई केंद्र से। 11:12 आप सुनेंगे दोपहर विविध भारती कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से। 1 बजे दोपहर आप सुनेंगे विविध भारती कार्यक्रम। 1:10 से लेकर 1:20 तक आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे रांची केंद्र से। 1:20 से लेकर 2:55 तक आप सुनेंगे विविध भारती कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से। 2:55 से लेकर 3 बजे तक आप सुनेंगे दोपहर प्रादेशिक मुख्य समाचार हमारे प्रादेशिक समाचार हमारे रांची केंद्र से। 3 बजे दोपहर से लेकर 4 बजे शाम तक आप सुनेंगे विविध भारती कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से। 4 बजे शाम आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार हमारे रांची केंद्र से। 4:02 फिर आप सुनेंगे विविध भारती कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से। 4:30 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की आज की कड़ी।

शाम 5 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार हमारे रांची केंद्र से। 5:02 पर आप सुनेंगे किसान वाणी कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आप चर्चा सुनेंगे खरीफ फसलों की तैयारी, आज की बात में सुनेंगे हरा चारा उत्पादन और संरक्षण भेंट, इसमें आप सुनेंगे समापन चर्चा आप सुनेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, खेती बाड़ी कार्यक्रम सुनेंगे 5:32 पर आरंभिक चर्चा सुनेंगे अत्यधिक गर्मी और लू से फसलों के साथ साथ अपना भी स्वास्थ्य का ख्याल रखें, किसान बंधु और समसामयिक कृषि चर्चा भी सुनेंगे आप। 6 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार। 6:02 पर युवाणी कार्यक्रम सुनेंगे चर्चा प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना क्यों जरूरी हमारे पर्यावरण के लिए। वार्ता सुनेंगे औरत हूँ मैं कोई सामान नहीं, पुनः प्रसारण आप सुन सकेंगे साक्षी मिश्रा से। 6:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत कार्यक्रम। 7 बजे का समय होगा प्रादेशिक समाचार का, जिसे आप सुनेंगे हमारी रांची केंद्र से। 7:10 पर सुनेंगे जिले में आजकल हमारी रांची केंद्र से। 7:15 पर झनकार कार्यक्रम सुन सकेंगे हमारे हजारीबाग केंद्र से।

7:30 पर आप सुनेंगे ऑल टाइम हिट्स कार्यक्रम, 8 बजे सुनेंगे आपकी चाहत, 8:45 पर समाचार संध्या, 9 बजे न्यूज एट 9 हमारे दिल्ली केंद्र से, 9:15 पर स्पॉटलाइट सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से, 10 बजे आप सुनेंगे रजनीगंधा कार्यक्रम, 10:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम सुनेंगे, 11 बजे हिंदी समाचार, 11:05 पर अंग्रेजी समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। ये थी आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी। अब ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है, FM 102.1 MHz पर। अब से कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे संस्कृत समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: यह आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है, FM 102.1 MHz पे प्रस्तुत है लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग। लीजिए कार्यक्रम के आरंभ में लाल बिहारी साव की आवाज में ये लोकगीत।
1: आज के समाज में एक गरीब के बेटी कह रहे है,
2: निर्बल हिया निर्धन हिया, निर्बल हिया निर्धन हिया बेटी गरीब के, निर्बल हिया निर्धन हिया बेटी गरीब के, तिलक दहेज मारो हो हम बदनसीब के। कहे मुरली बाबा ईश्वर जी, कहे मुरली बाबा ईश्वरी जी गोलू के दरम्यान में, कहे मुरली बाबा ईश्वरी जी गोलू के

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: जी सुनिए सत्येंद्र कुमार मिश्रा और साथी की आवाज में इसकी।
2: पनिया रो रो कहली बहिया हमरो भैया।

0: आप सुन रहे थे लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग।
1: श्रोताओं, मौजूदा समय में नशा एवं तंबाकू सेवन का प्रचलन बहुत तेजी से बढ़ा है। यूं समझिए कि हर 5 में से एक व्यस्क इसकी चपेट में है। अपने ही देश में तंबाकू सेवन करने वालों की संख्या लगभग 27 करोड़ तक हो गई है। ये एक ऐसा नशा है जो धीरे धीरे व्यक्ति के शरीर को अंदर से खोखला कर देता है। कई गंभीर बीमारियां पैदा करते हैं, जिससे अंततः प्रभावित व्यक्ति की मौत तक हो जाती है। श्रोताओं, इसी महीने की 31 तारीख को विश्व तंबाकू निषेध दिवस भी मनाया जाता है। क्या है इसका उद्देश्य, तंबाकू सेवन के नुकसानात और इसका समाधान, इसी सिलसिले में बातचीत करने के लिए आज हमने अपने इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया है शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की ओरल मेडिसिन स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रियंका सोनाली को। तो डॉक्टर साहिबा, हमारे इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार।
2: नमस्कार
1: डॉक्टर साहिबा, शुरुआत करते हैं तंबाकू निषेध दिवस मनाए जाने के उद्देश्य से। तो क्या है इसका उद्देश्य?
2: वर्ल्ड नो टोबैको डे, इसका उद्देश्य मुख्यतः ये है कि लोगों को तंबाकू के नुकसान के बारे में जागरूक करना और उन्हें तंबाकू छोड़ने के लिए प्रेरित करना है। अगर मुख्य उद्देश्य को गिनाया जाए तो तंबाकू से होने वाली बीमारियों और मृत्यु के प्रति जागरूकता फैलाना, युवाओं और बच्चों को तंबाकू की लत से बचाना, लोगों को धूम्रपान अन्य तंबाकू उत्पाद छोड़ने के लिए प्रेरित करना तथा समाज में स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना है। मुख्यतः हम इसका उद्देश्य इस तरीके से मनाते हैं कि स्वस्थ, जागरूक और नशा मुक्त समाज का निर्माण कर सकें।
1: जी, दूसरी बात, दूसरा सवाल हम आपसे ये करेंगे कि तंबाकू सेवन से होने वाली प्रमुख बीमारियां कौन कौन?
2: देखा जाए तो सबसे पहले हमारी ओरल मुंह और गला को प्रभावित करती है, जिसमें कि सबसे कॉमन होता है मसूड़ों की बीमारी, आवाज में बदलाव आना और बहुत आगे प्रोग्रेस करने से मुंह का कैंसर।
1: जी।
2: दूसरे अंगों में सर्व प्रमुख है आपका फेफड़ा, लंग्स, फेफड़ों का कैंसर, सांस की बीमारी जिसको COPD भी बोलते हैं, हृदय में आपका उच्च रक्तचाप, हार्ट अटैक, फिर आपका स्ट्रोक हो गया, याददाश्त या मानसिक प्रभाव, ये सब चीज जो है वो तंबाकू से डायरेक्टली होने वाली बीमारियां हैं।
1: जी, ये तो बहुत ही अच्छी बात आप बता रहे हैं कि ऐसे तो दिखता है कि लोग तंबाकू का सेवन अगर करते हैं तो मुंह का कैंसर दिख जाता है, लेकिन यहाँ एक खास बात, गहरी बात ये है कि सांस की भी दिक्कत होती है, जिसको COPD आप बता रहे हैं, एस्थमेटिक भी पेशेंट हो सकता है और फेफड़े का भी कैंसर हो सकता है। मुंह तो दिख जाता है लेकिन अंदर अंदरूनी भाग अंग जो है शरीर के, वो भी प्रभावित हो जाते हैं और ये तब पता चलता होगा हमको लगता है कि जब लास्ट स्टेज होता है।
2: यहाँ तक कि जो प्रजनन तंत्र, हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम है पुरुष और महिलाओं का, वो भी क्षमता पे असर पड़ता है,
1: इफेक्टिव हो जाता है।
2: जी जी,
1: तो ये तो बहुत ही खतरनाक चीज है।
2: मतलब तंबाकू कहा जाए तो शरीर के लगभग हर अंग को नुकसान पहुंचाता है।
1: हर अंग को नुकसान पहुंचाता है, यानी कि सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि ये जान के लिए खतरा भी है। तो इससे हम जहां तक बचें, लोग कोशिश करें, खासतौर से वो युवा जिनकी कभी कभी संगत ऐसा होता है कि संगत की वजह से भी वो प्रेरित हो जाते हैं और ये जो गलत है, बैड हैबिट्स जो है वो अपने अंदर ले लेते हैं।
2: जी।
1: अब एक बात ये हम जानना चाहेंगे कि तंबाकू सेवन से होने वाले नशे की आखिर वजह क्या है, जिसकी जो लत पड़ जाती है तो आदत छूटती ही नहीं इसकी वजह।
2: जी, आपका बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं कि हमें क्यों नहीं खाना है, है ना?
1: जी जी,
2: तो मैं बताना चाहूंगी कि तंबाकू में हजारों हानिकारक रसायन होते हैं, जिनमें कई कैंसर उत्पन्न करने वाले पदार्थ, जिनको हम लोग कार्सिनोजन बोलते हैं, वो मौजूद होते हैं। निकोटीन उसमें से एक पाए जाने वाला पदार्थ है, ठीक है, ये शरीर की कोशिकाओं या सेल्स को नुकसान पहुंचाता है और धीरे धीरे कैंसर पैदा कर सकता है। तंबाकू का जो धुआं होता है या चबाने वाला जो तंबाकू होता है, वो शरीर में जहरीले रसायन को पहुंचाता है। ये रसायन क्या करती है कि जो सेल्स होता है उसके DNA को नुकसान पहुंचाती है, DNA खराब हो जाता है, जो कि कोशिकाओं को अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगती है और ये अनियंत्रित वृद्धि जो होती है कोशिकाओं में, वो कैंसर बन जाती है।
1: ये कैंसर बन जाती है। अच्छा, ये तो आप बता दें कैंसर बन जाते हैं और बहुत सारे अंग जो है वो प्रभावित होते हैं, इसका दुष्परिणाम होता है, इसमें ट्यूबरक्लोसिस की भी होने की संभावना होती है।
2: डायरेक्टली हम लोग ट्यूबरक्लोसिस को नहीं लिंक कर सकते हैं तंबाकू सेवन से, लेकिन हाँ, तंबाकू सेवन करने वालों में ट्यूबरक्लोसिस का खतरा भी बढ़ जाता है।
1: जी।
2: कैसे? तो धूम्रपान फेफड़ों को कमजोर करता है, है ना, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी कम हो जाती है, इससे टीबी के जीवाणु जो है आसानी से संक्रमण कर सकते हैं,
1: संक्रमित हो सकता है, शरीर कमजोर होगा, अंग कमजोर होगा, कभी बीमारी
2: जल्दी हो सकती है। इसे जिन लोगों से को पहले से टीबी है उन्हें धूम्रपान बीमारी को और गंभीर बना सकता है,
1: गंभीर बना सकता है। डायरेक्टली हम तो ये कह सकते हैं कि ट्यूबरक्लोसिस नहीं होता है, लेकिन ट्यूबरक्लोसिस होने की संभावना बढ़ जाती है। एक यही चीज नहीं है कि हम खैनी और तंबाकू वगैरह लें और दूसरी बीमारियों को भी आमंत्रित करें, बेहतर ये है कि इससे जितना दूर बच सकें, दूर जा सकें, वही बेहतर है। अब ये जैसे ये बीमारी है इसके लक्षण और खतरा तो आपने बताए कि क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, इससे बचने के क्या उपाय हो सकते हैं?
2: हमारा मुख्य उद्देश्य है कि तंबाकू का जैसे हम लोग समझ चुके हैं कि हमारे डे टू डे लाइफ को इफेक्ट कर रहा है
1: जी,
2: तो हमें उसको प्लान करके छोड़ना होगा
1: जी।
2: ठीक है, तंबाकू को छोड़ने के प्रति अपने आप को जागरूक करना होगा
1: जी।
2: ठीक है, सिगरेट या तंबाकू जो 18 वर्ष से कम आयु वाले हैं उन्हें नहीं बेचना है, स्कूलों या आसपास में तंबाकू की बिक्री नहीं करनी है। ठीक है, बच्चों को बताना है कि किस तरीके से तंबाकू के सेवन से क्या हानि होता है, उसके बारे में क्लियरली हम लोग को अवेयरनेस क्रिएट करना है।
1: मेन बात है कि लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करना, उसके अंदर बेदारी लानी, उसके जो दुष्प्रभाव है, दुष्परिणाम है, उससे जागरूक करना है लोगों को। और वो व्यस्त वो युवा जो जिनका इस तरह का जो संगत है या सोहबत है उससे बचना होगा और अपने आप को उससे दूर रखना होगा। शुरुआत कैसे किया जा सकता है, इससे जिसकी लत पड़ गई है वो कैसे शुरुआत कर सकते हैं?
2: सबसे पहले अपना एक रूटीन अच्छा बनाना है। ठीक है, एक पहले तो सबसे पहले जो छोड़ना चाह रहे हैं उनको डेट तय करना होगा कि मैं इस महीने की इस तारीख को छोड़ना चाहता हूँ। तो उनका जन्मदिन हो सकता है या किसी गुरु का जन्मदिन या कुछ भी हो सकता है, वो एक तारीख तय करनी है।
1: पहले माइंडसेट करना होगा कि हाँ तो इससे बचना
2: है। वो सेट कर लिया, उसके बाद एक डेली रूटीन बनाना है, सुबह उठना है, अच्छा खाना खाना है, वैसे लोगों की संगति से बचना है जहाँ पे उनको जाने से इस तरीके की लत
1: माहौल वैसा जहाँ हो वहाँ से बचना है।
2: अकेलापन अगर उनको ट्रिगर करता है इस तरीके की चीजें लेने से तो अकेलेपन से बचना है। घर पे खुल के बात करनी है कि मुझे नशे की आदत हो गई है, मैं इसको छोड़ना चाहता हूँ, मुझे क्या करना है। ठीक है, गवर्नमेंट की भी काफी सारी स्कीम्स है, उसका भी फायदा उठाना चाहिए। खुद को मतलब हेल्थ केयर सेंटर्स के तरफ जाके बात करना चाहिए कि मैं छोड़ना चाहता हूँ, किस तरीके से इसमें काम कर सकता हूँ।
1: पहले है कि अपने अंदर हिम्मत पैदा करें, हौसला पैदा करें और वो
2: उसको छोड़ा जा सकता है,
1: छोड़ा जा सकता है। ये बहुत अच्छी बात आपने बताई कि ऐसा नहीं है कि हम चाहते हुए भी इसको नहीं छोड़ सकते। मेन है कि उसको अपने अंदर आप हौसला पैदा कीजिए, हिम्मत पैदा कीजिए और वो जो माहौल है उससे खुद को आप बचाइए। एक बार बात आपने बताई कि जैसे छोड़ने की जब हम शुरुआत करते हैं तो उससे पहले लोगों को, घर के लोगों को इसके बारे में अभी बताना भी है कि हमारी एक बुरी आदत आ गई है, ऐसी आदत आ गई है, हम उसको छोड़ना चाहते हैं, तो लोगों का जो उसमें सपोर्ट होगा, सपोर्ट भी की जरूरत पड़ सकती है, उपलब्ध है, लोग उसको सपोर्ट,
2: आसपास के लोगों को भी ना मतलब प्रेरित करना है, कोई छोड़ना चाह रहा है तो उसका मजाक नहीं उड़ाना बल्कि उसे प्रेरित करना है कि हाँ तुम सही रास्ते जा रहे हो।
1: और सरकार के बारे में आपने बताया कि सरकार के द्वारा कौन किस तरह का कदम उठाया जा रहा है इसमें कि इस लत से बचा जा सके।
2: हमारे सरकार में ना एक नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम चल रहा है जिसको NTCP भी बोलते हैं। इसका उद्देश्य है तंबाकू सेवन कम करना, जागरूकता फैलाना और लोगों को तंबाकू छोड़ने की सहायता करना। ठीक है, इसमें ना ये सिगरेट और अदर जो तंबाकू प्रोडक्ट है उस एक्ट के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसमें सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान प्रतिबंधित है, 18 वर्ष से कम आयु वाले लोग तंबाकू नहीं बेच सकते ना उसका उपयोग कर सकते हैं, स्कूल के आसपास तंबाकू की बिक्री नहीं करनी है। ठीक है, तंबाकू निषेध हेल्पलाइन या परामर्श सेवाएं का भी हमारे पास ऑप्शंस दिया गया है, टीवी, रेडियो, पोस्टर, स्कूल कार्यक्रम की मदद से भी हम लोग तंबाकू के नुकसान को बताते हैं।
1: जी सर, और आपने बहुत गौर करने वाली बात बताई कि ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी वो प्रभावित करता है।
2: जी जी जी,
1: तो ये जो है जैसे फीमेल में औरतें या युवतियां हैं तो इसका तो करीब करीब आदि नहीं है, लेकिन ये बच्चों में या वयस्कों में ये पाया जाता है, तो वो भी इससे
2: हाँ जी मेल्स ज्यादा इफेक्टेड होते हैं
1: जी, है ना। और यहाँ ये गौर करने वाली बात है कि आपका वो जो प्रजनन जो सिस्टम है वो भी आपका प्रभावित होगा। आखिर में आप उन युवाओं को जो इससे ग्रसित हो चुके हैं क्या संदेश देना चाहेंगे?
2: वर्ल्ड नो टोबैको डे पर तंबाकू से ग्रसित लोगों को मैं मुख्य ये संदेश देना चाहूंगी कि तंबाकू छोड़ने का हर प्रयास आपके जीवन को नई शुरुआत देता है। आज लिया गया छोटा सा यह निर्णय भविष्य में कैंसर, टीबी और हृदय रोग जैसी गंभीर बीमारियों से आपको बचा सकता है। अपने परिवार, बच्चों और स्वयं के स्वास्थ्य भविष्य के लिए तंबाकू को ना कहें, है ना। इच्छा शक्ति, सही परामर्श और सहयोग से तंबाकू की लत छोड़ी जा सकती है। तंबाकू छोड़िए और अपने जीवन को चुनिए।
1: और बेहतर जीवन जिए और जिंदगी का कहने का मतलब है कि आनंद लीजिए, उसका मजा लीजिए और जीवन शैली में परिवर्तन आपका लाना जरूरी है, जिससे आप बेहतर जिंदगी जी सकते हैं और समाज के लिए प्रेरणा भी आप बन सकते हैं, जिससे आने वाले नस्लों को भी एक सबक मिल सकता है, एक नई राह मिल सकती है। तो डॉक्टर साहब, आपने नो टोबैको डे, तंबाकू निषेध दिवस के सिलसिले में और उसके अंतर्गत जो बातें आपने बताई, टोबैको छोड़ने की जो रास्ते आपने बताए और हमारे युवाओं को जो इससे ग्रसित हैं वो कैसे छोड़ सकते हैं, उनको नई जिंदगी कैसे मिल सकती है, इन सब चीज़ों के बारे में आपने बड़ा विस्तार से बताया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: शुक्रिया।
0: आप सुन रहे थे स्वास्थ्य वार्ता के अंतर्गत तंबाकू सेवन के गंभीर खतरे और समाधान, इस विषय पर जानकारी दे रही थी डॉक्टर प्रियंका सोनाली और इनसे बातचीत कर रहे थे मोहम्मद अली शबीर अंसारी। यह आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। पेश है कार्यक्रम गीत संगीत।

हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

आप सुन रहे थे अभिजीत की आवाज में कुछ गीत। यह आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। श्रोताओं, इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 7:58 और 50 सेकंड हुए हैं। अब से कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज हमारे दिल्ली केंद्र से। 8:30 पर आप सुन सकेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे रांची केंद्र से।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। हर घर सूर्य घर।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज़।

0: और अब मुख्य समाचार। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सिक्किम की 3 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला में तकनीकी खराबी के बाद फंसे 300 से अधिक पर्यटकों को सुरक्षित बचाया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इबोला वायरस को स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया। डीजीसीए ने एयरलाइंस को जारी किए निर्देश। दिल्ली में प्रति किलोग्राम सीएनजी की कीमत 2 रुपये बढ़ी। भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में मालदीव को 11-0 से हराया। और आईपीएल क्रिकेट क्वालिफायर 1 में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। बैठक में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, विभिन्न पहलुओं की प्रगति की समीक्षा करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े ताजा घटनाक्रमों पर चर्चा होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: इस साल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब विश्व भर में अनिश्चितता का माहौल है और पश्चिम एशिया में संकट गहराया हुआ है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान को मिलाकर बना क्वाड एक अहम समूह के तौर पर उभरा है, जिसका मुख्य उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है। इस समूह के मौजूदा अध्यक्ष के तौर पर भारत इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। क्वाड देशों ने दुनिया की भलाई के लिए मिलकर काम करने और एक ऐसे खुले, स्वतंत्र और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करने का संकल्प लिया है जो समृद्ध और मजबूत हो। क्वाड ने एक सकारात्मक और व्यवहारिक एजेंडा अपनाया है, जिसमें स्वास्थ्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन तथा उभरती टेक्नोलॉजी और क्षेत्रीय देशों की समुद्री क्षेत्र से जुड़ी जागरूकता को बढ़ाने जैसे समकालीन मुद्दों तथा चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन की सिक्किम यात्रा पर रहेंगे। गंगटोक से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति अपनी यात्रा के दौरान कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सिक्किम यात्रा के पहले दिन देवराली में नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ टिबेटोलॉजी का दौरा करेंगी और गैंगटॉक में महिलाओं के लिए पिंक बसों को हरी झंडी दिखाएंगी। कल वो नाथुला का दौरा करेंगी और साथ ही गैंगटॉक में सिक्किम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। अपनी यात्रा के अंतिम दिन राष्ट्रपति मुर्मू गैंगटॉक के पलजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पुलिस कलर मेडल प्रदान करेगी। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गैंगटॉक।
0: राष्ट्रपति भवन में कल नागरिक अलंकरण समारोह भी आयोजित किया गया, जिसमें इस वर्ष के पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए। गृहमंत्री अमित शाह अगले कुछ दिन सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे। श्री शाह 2 दिन की यात्रा पर आज राजस्थान के बीकानेर पहुंच गए हैं। इस दौरान उनका सशस्त्र बलों से बातचीत करने और उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन करने का भी कार्यक्रम है। श्री शाह 29 मई को गुजरात जाएंगे। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि सरकार योग और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से चिकित्सा सेवाओं को मजबूत कर रही है। नई दिल्ली में आयुष मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में श्री जाधव ने कहा कि योग और प्राकृतिक

0: ने इबोला वायरस को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये कदम विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कांगो और युगांडा में इबोला वायरस को अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किए जाने के बाद उठाया गया है। एक रिपोर्ट।
1: नागर विमानन महानिदेशालय ने कहा है कि युगांडा और कांगो से जुड़ी उड़ानों का संचालन करने वाली एयरलाइंस को यात्रियों के विमान से उतरने से पहले उनसे यात्री जानकारी फॉर्म भरवाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा उड़ान के दौरान यात्रियों को बुखार, कमजोरी, मांसपेशियों में दर्द, सिर दर्द, गले में खराश, उल्टी या दस्त जैसे लक्षण होने पर अधिकारियों को जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। विमान में संदिग्ध मरीज मिलने पर उसे विमान के पिछले हिस्से में अलग रखने और आसपास की सीटें खाली रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। एयरलाइंस को मास्क, दस्ताने, पीपीई किट, सैनिटाइजर जैसी जरूरी सामग्री की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने को भी कहा गया है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
0: दिल्ली में सीएनजी के दाम में 2 रुपए प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की गई है। आज सुबह 6 बजे से लागू इस नई दर के बाद राष्ट्रीय राजधानी में सीएनजी की नई कीमत 83 रुपए 9 पैसे प्रति किलोग्राम हो गई है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोपवे की 65 कैबिन में 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस सेना और प्रशासन ने संयुक्त रूप से करीब 7 घंटे तक बचाव अभियान चलाकर सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में सुरक्षा बलों ने डोरीमल वन क्षेत्र में आतंकियों के एक ठिकाने को ध्वस्त कर दिया। ये कार्रवाई ऑपरेशन शेरुवाली के तहत चल रहे तलाशी अभियान के दौरान हुई। ड्रोन और खोजी कुत्तों की मदद से इलाके में तलाशी अभियान जारी है। पंजाब में नगर निगम चुनावों के लिए मतदान शुरू हो गया है। राज्य में 8 नगर निगमों, 75 नगर परिषदों और 20 नगर पंचायतों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: राजनीतिक पार्टियों द्वारा 2027 में होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले हो रहे इन नगर निकाय चुनावों पर एक अहम राजनीतिक संकेत के तौर पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। राज्य चुनाव आयोग के अनुसार पूरे राज्य में कुल 1896 वार्डों से 7555 उम्मीदवार मैदान में हैं। सभी नगर निकायों में आदर्श आचार संहिता पहले से ही लागू है। मतदाताओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए पंजाब सरकार ने आज सभी के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। की गिनती शुक्रवार 29 मई को होगी। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
0: उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्राम पंचायतों के लिए नए निकाय गठित होने तक या अधिकतम 6 महीने की अवधि के लिए निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ग्राम पंचायतों का प्रशासक नियुक्त किया है। राज्य की ग्राम पंचायतों के प्रधानों का कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। निवर्तमान प्रधान स्वयं पंचायतों का प्रशासन संभालेंगे। एक रिपोर्ट।
3: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार सभी जिला मजिस्ट्रेटों को ग्राम पंचायतों में निवर्तमान प्रधानों को प्रशासक के रूप में नामित करने का अधिकार दिया गया है। ये निवर्तमान प्रधान कल से प्रशासक के रूप में कार्यभार संभालेंगे। प्रशासकों को केवल नियमित और दैनिक कार्यों को करने की अनुमति होगी तथा उन्हें कोई भी नीतिगत निर्णय लेने की अनुमति नहीं होगी। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी भी परिस्थिति में कोई नीतिगत निर्णय आवश्यक हो तो जिला मजिस्ट्रेट की स्वीकृति के बाद ही निर्णय लिया जा सकता है। ग्राम पंचायत के प्रधानों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कार्यकाल समाप्त होने के बाद और पंचायतों के प्रधान बनने तक राज्य सरकार को प्रशासकों की नियुक्ति करने का अधिकार है। सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
0: भारत सहित दुनिया भर से सऊदी अरब पहुंचे लाखों जायरीन पवित्र हज यात्रा कर रहे हैं। 5 दिन के हज के पहले दिन कल हज यात्री मीना के टेंट सिटी में एकत्रित हुए। एक रिपोर्ट।
4: पवित्र हज यात्रा पर पहुंचे जायरीन आज पूरा दिन अरफात के मैदान में इबादत और दुआओं में बिताएंगे। इसके बाद हज यात्री निमरा मस्जिद में हज का विशेष संदेश खुतबे हज सुनेंगे और दोपहर तथा शाम की नमाज एक साथ अदा करेंगे। सूर्यास्त के बाद वे मुजदलिफा के लिए रवाना होंगे। कल सुबह जायरीन मीना लौटेंगे जहां वे कुर्बानी और कंकर मारने की प्रतीकात्मक रस्म अदा करेंगे। समाचार कक्ष से कलीम अहमद।
0: अमरीकी सेना ने ईरान के साथ जारी संघर्ष विराम के बीच होर्मुज जलडमरू मध्य के पास ईरान के मिसाइल प्रक्षेपण स्थलों और नावों को निशाना बनाया है। ये घटनाक्रम तब सामने आया जब अमरीका और ईरान के बीच संघर्ष विराम वार्ता में कुछ प्रगति की खबरें आई हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान युद्ध समाप्त करने के लिए किसी भी समझौते में सऊदी अरब और पाकिस्तान सहित कई देशों को अब्राहम समझौते में शामिल किया जाना चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ बातचीत अच्छी तरह आगे बढ़ रही है, हालांकि उन्होंने चेतावनी दी कि या तो ये बातचीत शांति समझौते में बदलेगी या

0: फिर पहले से ही बड़े संघर्ष की स्थिति का कारण बनेगी। अब्राहम समझौता अमेरिका की मध्यस्थता में 2020 में हुआ ऐतिहासिक शांति समझौता है, जिसका मुख्य उद्देश्य इसराइल और कई अरब तथा मुस्लिम देशों के बीच संबंध सामान्य बनाने के लिए शुरू किया गया था। ब्राजील सरकार ने अमेजन वर्षावन क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए 61.75 करोड़ अमरीकी डॉलर आवंटित किए हैं। ये निवेश पिछले वर्ष के COP30 सम्मेलन के दौरान घोषित इको इन्वेस्ट कार्यक्रम का एक हिस्सा है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: जी फरहत, खेल खबरों में शुरुआत फुटबॉल से। भारत ने कल गोवा में सैफ महिला चैंपियनशिप के ग्रुप बी मुकाबले में मालदीव को 11-0 से हरा दिया। अविका सिंह ने 4 गोल किए। प्रियंका नोरेम और करिश्मा ने 2-2 गोल दागे। 5 बार की चैंपियन भारतीय टीम का अगला मुकाबला रविवार को बांग्लादेश से होगा। और अगर बात करें क्रिकेट की, तो IPL के क्वालिफायर 1 मुकाबले में आज मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। मैच धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इस मुकाबले की विजेता टीम सीधे फाइनल में पहुंचेगी, जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफाइड 2 में एक और मौका मिलेगा। उधर सिंगापुर में आज से शुरू हो रहे सिंगापुर ओपन सुपर 750 टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और पीवी सिंधु भारतीय चुनौती की अगुवाई करेंगे। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन, HS प्रणॉय, किदांबी श्रीकांत और आयुष शेट्टी, वहीं महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु, उन्नति हुडा और मालविका बंसोड़ चुनौती पेश करेंगी। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी तथा मिक्स्ड डबल्स में तनीषा क्रस्तो ध्रुव कपिला और रोहन कपूर रुथविका शिवानी गड्डे की जोड़ियां भी अपना अपना दावा पेश करेंगी। जी फरहत, खेल जगत से बस आज इतना ही।
0: धन्यवाद मुकेश। और अब रुख कर लेते हैं मौसम का। मौसम विभाग ने आज दिल्ली में भीषण गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है। राजधानी में कल तक लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। शहर का अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिम राजस्थान में आज भी भीषण लू चल सकती है। छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड और पश्चिम मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी इसी तरह की स्थिति बनी रहेगी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
2: धन्यवाद फरहत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कला, खेल और विज्ञान सहित कई क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली विभूतियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करने की खबर आज हिंदुस्तान सहित कई अखबारों में है। पत्र लिखता है पैरा खिलाड़ी प्रवीण कुमार को पद्मश्री सम्मान। अमर उजाला ने पुदुचेरी के पारंपरिक मार्शल आर्ट विशेषज्ञ के पजनी वेल के पद्मश्री सम्मान ग्रहण करने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दंडवत प्रणाम करने और प्रधानमंत्री के तुरंत कुर्सी से उठकर उनको उठाने का चित्र प्रकाशित किया है। धर्मेंद्र को मरणोपरांत पद्म विभूषण सम्मान। धर्मपत्नी हेमा मालिनी ने भावुक होकर ग्रहण किया सम्मान, देशबंधु में है। जनसत्ता ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत बढ़ने का समाचार आंकड़ों सहित प्रकाशित किया है। 10 दिन में चौथी बार, अब दिल्ली में भी कीमत 100 पार। पत्र ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के शब्द भी दिए हैं। ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा संरक्षण पर ध्यान देने की जरूरत। क्वाड बैठक आज, चीन की चुनौती पर होगी बात। पश्चिम एशिया संकट के बीच दिल्ली में हो रही है मीटिंग, नव भारत टाइम्स की सुर्खी है। नीट पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त, सरकार से मांगा जवाब, NTA ने कोई सबक नहीं सीखा। लोक सत्य ने सुनवाई शीर्षक से खबर प्रकाशित की है। राजस्थान पत्रिका ने राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB की रिपोर्ट प्रकाशित की है। महिला अपराध के मामलों में देश भर में मध्य प्रदेश की हालत चिंताजनक। प्रदेश में हर रोज दर्ज हो रहे हैं दहेज प्रताड़ना के 20 प्रकरण। दैनिक जागरण ने आज अपने संपादकीय पन्ने पर उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन का लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है विकसित भारत के निर्माण की राह। संपादक ने अपने लेख में स्वामी विवेकानंद के शब्दों को अहमियत दी है, उठो जागो और लक्ष्य प्राप्त होने तक मत रुको। संपादक ने आयुष्मान भारत योजना, चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग और AI में भारत को वैश्विक कंपनियों में अहमियत मिलने से लेकर भारत की प्रगति की चर्चा की है।
0: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सिक्किम की 3 दिन की यात्रा पर रवाना होंगी। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला में तकनीकी खराबी के बाद फंसे 300 से अधिक पर्यटकों को सुरक्षित बचाया गया। WHO ने इबोला वायरस को स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया। दिल्ली में प्रति किलोग्राम CNG की कीमत 2 रुपये बढ़ी। भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में मालदीव को 11-0 से हराया और आईपीएल क्रिकेट क्वालिफायर 1 में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से।

0: Have a nice day.
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं अक्षरा अक्षय। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा, महिला एवं बाल विकास विभाग विकसित भारत के लक्ष्य पर कर रहा कार्य, महिला सशक्तिकरण और बच्चों के समग्र विकास पर जोर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आदिनिवास डिजिटल ऐप का किया शुभारंभ, कहा रोजगार और आर्थिक विकास के नए अवसरों को मिलेगा बढ़ावा। धनबाद सदर अस्पताल के युवा मैत्री केंद्र को राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम में देश भर में मिला तीसरा स्थान। राज्य भर में पड़ रही है भीषण गर्मी, राज्य के उत्तर पश्चिमी जिलों में आज और कल लू की चेतावनी। और रांची में आयोजित 29वीं राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता में एक दर्जन से अधिक खिलाड़ियों ने कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए किया क्वालिफाई। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा है कि उनका मंत्रालय वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के एजेंडे पर कार्य कर रहा है। गिरिडीह परिसदन में अपने 3 दिवसीय दौरे के बीच पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मंत्रालय महिलाओं के सशक्तिकरण से लेकर बच्चों के शारीरिक और समग्र विकास के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से काम कर रहा है।
2: अगर महिला बाल विकास विभाग की हम करें, सबसे पहले तो उन्होंने इसकी शुरुआत की कि महिलाओं का सशक्तिकरण, सक्षम आंगनवाड़ी पोषण 2.2 इस कार्यक्रम के माध्यम से कैसे बच्चों को स्वस्थ कुपोषण मुक्त किया जाए, बच्चों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देते हुए।
1: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची स्थित ऑड्रे हाउस में आदिनिवास डिजिटल ऐप का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह ऐप देश भर के आदिवासी समुदाय को एक मंच पर जोड़ने के साथ साथ उनकी संस्कृति, भाषा, परंपरा और जीवन शैली के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आदिनिवास ऐप रोजगार और आर्थिक विकास के नए अवसरों को बढ़ावा देगा।
3: एक सोच हमारे सामने पेश हुआ है कि ऐप पूरे दुनिया भर में सभी लोगों को जोड़ पाए और जो विचारों का आदान प्रदान है, हो सकता है कि हम यहाँ कुछ सोच रहे हैं, कहीं किसी दूसरे देश में या किसी राज्य के किसी कोने में कोई एक नौजवान अपनी बात कह रहा हो तो उसे समझने का भी आज एक कनेक्टिविटी भी इसको कह सकते हैं। एक बहुत बड़ा कदम आदिनिवास ऐप के माध्यम से यहाँ शुरू की गई है।
1: इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने ऐप के संस्थापक नितिन कुजूर और उनकी पूरी टीम को बधाई देते हुए इसे आदिवासी समाज के सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल बताया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज स्कूली शिक्षा, साक्षरता, महिला एवं बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग की समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री ने कल वित्त और जल संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक करते हुए योजनाओं में तेजी लाने का निर्देश दिया है। राज्यभर में आज से एक महीने तक विशेष महाअभियान चलाकर दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में छापामारी कर नियमों के अनुपालन की जांच की जाएगी। इस अभियान का उद्देश्य उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना तथा बाजार में अनियमितताओं पर रोक लगाना है। रांची के कई वार्डों के पार्षदों ने उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री से मुलाकात कर शहर की मूलभूत समस्याओं, स्वच्छता व्यवस्था तथा सरकारी योजनाओं को लागू करने की चर्चा की। इस मौके पर उपायुक्त ने कहा कि प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के समन्वय से आम लोगों तक योजनाओं का लाभ बेहतर तरीके से पहुंचाया जा सकता है। बैठक में महिला सुरक्षा, मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण तथा नशा मुक्त समाज के निर्माण को लेकर जागरूकता अभियान चलाने पर विशेष जोर दिया गया। उपायुक्त ने सभी पार्षदों को प्रशासन की ओर से हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। धनबाद के सदर अस्पताल के युवा मैत्री केंद्र को राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम में देशभर में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। यह सम्मान युवाओं को स्वास्थ्य संबंधी बेहतर परामर्श और सुविधाएं उपलब्ध कराने के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया गया है। सदर अस्पताल को किशोर अनुकूल स्वास्थ्य सेवा, साप्ताहिक आयरन एवं फोलिक एसिड अनुपूरण कार्यक्रम, मासिक धर्म स्वच्छता योजना समेत अन्य सेवाओं में बेहतर प्रदर्शन के लिए यह उपलब्धि हासिल हुई है। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। सरकार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। पश्चिम एशिया संघर्ष पर नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने यह बात कही।
0: रिफाइनरी प्रोडक्शन एलपीजी का इंक्रीज किया गया है, इट इज टचिंग अराउंड 50,000 टन पर डे नाउ। एलपीजी घरेलू कुकिंग गैस की सप्लाई के लिए लगभग पिछले चार दिनों में 1.72 करोड़ सिलेंडर्स की डिलीवरी की गई है और 95% जो डिलीवरी हुई है वो डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई है। 5 किलो के सिलेंडर पिछले चार दिनों में लगभग 1,96,000 सेल हुए हैं।
1: जमशेदपुर पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सिटी एसपी ललित मीणा ने बताया कि पुलिस ने इन अपराधियों के पास से चोरी की 5 मोटरसाइकिलें बरामद की हैं।
4: शमशाद ने जो बाइक चोरी की वो अरुण मुखर्जी को जाकर ये देता था। अब वो उसको किस तरीके से आगे या तो उसको बिकवाता था या फिर कई बार डिसमेंटल करता था, रजिस्ट्रेशन नंबर और चेसिस नंबर से छेड़छाड़ भी करता था। इस प्रकार की चीजें अभी तक की प्रारंभिक जांच में सामने आई है, हो सकता है कुछ और भी तथ्य सामने आएंगे। तो कुल मिलाकर 5 मोटरसाइकिल और 2 लोगों को गिरफ्तार किया।
1: राज्य भर में भीषण गर्मी पड़ रही है। पलामू, गढ़वा, छतरा समेत राज्य के उत्तर पश्चिमी भाग में आज और कल लू की चेतावनी जारी की गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 45.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 39.8 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। मौसम विभाग ने धनबाद, बोकारो, हजारीबाग, गिरिडीह, कोडरमा में वज्रपात और बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि रांची, खूंटी, गुमला और रामगढ़ में वज्रपात का पूर्वानुमान है। राजधानी रांची के बिरसा मुंडा स्टेडियम में आयोजित 29वीं राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता में एक दर्जन से अधिक खिलाड़ियों ने कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए क्वालिफाई किया। प्रतियोगिता के अंतिम दिन खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। एक रिपोर्ट।
5: महिलाओं की 500 मीटर दौड़ में रिलायंस की स्टार एथलीट सीमा ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। वहीं पुरुष वर्ग की 500 मीटर दौड़ में कर्नाटक के शिवाजी परशुरामा सबसे आगे रहे। महिलाओं की 200 मीटर दौड़ में हिमाचल प्रदेश की कुसुम ठाकुर, जबकि पुरुषों में अनिमेश कुजूर जो हमारे स्टार धावक हैं उन्होंने शीर्ष स्थान हासिल किया। पुरुषों की 400 मीटर हर्डल में तमिलनाडु की आर रिताया रामराज ने बाजी मारी, जबकि महिलाओं के हाई जंप में उत्तर प्रदेश की ख्याति माथुर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पहला स्थान प्राप्त किया है। पुरुष पोल वॉल्ट में मध्य प्रदेश के देव कुमार मीणा और कुलदीप कुमार ने 5.45 मीटर की ऊंचाई पार कर नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया था। देव कुमार को स्वर्ण और कुलदीप को रजत पदक मिला और दोनों ने कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भी क्वालिफाई कर लिया।
6: आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महवेश रहमान।
1: राज्य से प्रकाशित लगभग सभी अखबारों ने पेट्रोल डीजल में हुई मूल्य वृद्धि की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने लिखा है 11 दिन में पेट्रोल 2.61 रुपये और डीजल 2.71 रुपये हुआ महंगा। दैनिक भास्कर ने राज्य में बालू की किल्लत की खबर को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। हिन्दुस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से लिखा है एनटीए ने गलतियों से नहीं ली कोई सबक। दैनिक जागरण ने राज्यसभा चुनाव में भाजपा के उम्मीदवार उतारने के निर्णय की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा महिला एवं बाल विकास विभाग विकसित भारत के लक्ष्य पर कर रहा कार्य, महिला सशक्तिकरण और बच्चों के समग्र विकास पर जोर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आदिनिवास डिजिटल ऐप का किया शुभारंभ, कहा रोजगार और आर्थिक विकास के नए अवसरों को मिलेगा बढ़ावा। धनबाद सदर अस्पताल के युवा मैत्री केंद्र को राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम में देशभर में मिला तीसरा स्थान। राज्यभर में पड़ रही है भीषण गर्मी, राज्य के उत्तर पश्चिमी जिलों में आज और कल लू की चेतावनी, और रांची में आयोजित 29वीं राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता में एक दर्जन से अधिक खिलाड़ियों ने कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए किया क्वालिफाई। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक

घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

0: यह आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 8:42 हुए हैं। पेशे कार्यक्रम मॉर्निंग मेलोडी, उसके पहले कुछ जरूरी संदेश।
1: टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
2: अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
1: बिना नंबर जांचे? अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
2: तो फिर सही नंबर?
1: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
2: आपने तो बचा लिया दीदी।
1: काम से नहीं।
3: RBI कहता है,
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
5: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: है स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े। कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: लीजिए सुनिए कार्यक्रम के आरंभ में मोहित चौहान की आवाज में बोल बच्चन फिल्म का ये गाना।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम मॉर्निंग मेलोडी। इसी गीत के साथ ये कार्यक्रम यही समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 9 बजने को है। अब से कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे वेद भारती के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से।

0: आप सुन रहे हैं चित्रलोक कार्यक्रम।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

चित्रलोक कार्यक्रम में आइए सुनते हैं अगला गाना। फिल्म है गजनी, कार्तिक की आवाज, प्रसून जोशी के बोल, ए आर रहमान का संगीत।

गजनी फिल्म से आप सुन रहे थे ए आर रहमान का कंपोज किया हुआ ये बेहतरीन म्यूजिक। आइए अगला गाना सुनते हैं उन्हीं की कंपोजिशन में, युवराज फिल्म से, बेनी दयाल, श्रेया घोषाल और ए आर रहमान की आवाजों में गुलजार के बोल।

0: टशन फिल्म से गाना हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन आइए सबसे पहले सुनते हैं यह संदेश।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जो शहीद हुए हैं इनकी जरा याद करो कुर्बानी।
0: सुनवाएंगे हम आपको टशन फिल्म से वो गाना, लेकिन बस एक छोटे से अंतराल के बाद।

सुन रहे हैं चित्रलोक कार्यक्रम। आइए अब सुनवाते हैं हम आपको टशन फिल्म से गाना जिसके लिए करवा रहे थे हम आपको इतना इंतजार। लेकिन कहते हैं ना, अक्सर इंतजार का फल मीठा होता है। इस बार आपके इस इंतजार का फल थोड़ा सुरीला होने वाला है।

चित्रलोक कार्यक्रम का अगला गाना सुनते हैं तुम्हारी सुलूफ। इस फिल्म से रोंकिनी गुप्ता की आवाज में शांतनु घाटक का म्यूजिक और लिरिक्स।

कार्यक्रम का अगला गाना सुनते हैं जब हैरी मेट सेजल। इस फिल्म से अरिजीत सिंह की आवाज, इरशाद कामिल के बोल और म्यूजिक है प्रीतम का।

0: इसी गाने के साथ वक्त हो चला है इस कार्यक्रम से इजाजत लेने का। दीजिए सुदक्षिणा को इजाजत और सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।
1: यस, हु इज इट?
2: डॉन।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था, लिटरली जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती हैं। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी ने।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
3: श्रोताओं नमस्कार।
4: इन्ना सोना इन्ना कूल मुंडा इन्ना वंडरफुल, इनू वेख जे कुड़िया तो कहंदी ओ मारदा ओ मारदा।
3: जी हाँ, आज बातें एक ऐसे निर्माता निर्देशक की जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से बढ़ा दी लाखों दिलों की धड़कन, जिन्होंने सिखाए युवाओं को प्यार के नए मायने, जिन्होंने नई पीढ़ी को ये विश्वास दिलाया कि उलझे रिश्तों में भी खिलते हैं चाहत के फूल, उन्हें पाकर बरबस ही लोगों के होंठों पर ये नगमा गूंज उठता है।

25 मई 1972 के दिन मशहूर फिल्म निर्माता यश जौहर और उनकी पत्नी हीरू जौहर के घर जन्मे करण जौहर। बचपन में फिल्मी दुनिया से वो दूर ही रहना चाहते थे। आज के सफल फिल्मकार करण जौहर जब स्कूल में पढ़ा करते थे तो अपने सभी दोस्तों से कहा करते कि उनके पिता एक व्यापारी हैं। लेकिन बड़े होते होते उन्होंने अपनी मंजिल की तलाश में फिल्मी दुनिया की राहों में ही चलने का निर्णय लिया।

पिता यश जौहर की ख्वाहिश थी कि उनका बेटा फिल्मी पर्दे पर चमके और लोगों के बीच एक अभिनेता की तरह नाम कमाए। ये तो पता नहीं कि पिता की इच्छा के लिए या अपनी मंजिल को परखने के लिए, पर करण जौहर ने अपने करियर की शुरुआत बतौर अभिनेता ही की। मात्र 17 साल की उम्र में वो नजर आए दूरदर्शन के एक सीरियल इंद्रधनुष में, लेकिन उनके हुनर में कई ऐसे रंग मौजूद थे जिन्हें वो सभी के सामने लाना चाहते थे, और इसके लिए उन्होंने चुनी पर्दे के पीछे की जिंदगी। अब उन्हें मिल चुकी थी उनकी राह।

बचपन से राज कपूर, यश चोपड़ा और सूरज बड़जात्या को अपना आइडल मानने वाले करण ने निर्देशन की दुनिया में कदम रखने के लिए साथ लिया निर्माता निर्देशक आदित्य चोपड़ा का। बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर करण ने जिस फिल्म से शुरुआत की वो फिल्म थी सुपर डुपर हिट फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे।

इस फिल्म में करण ने शाहरुख खान के दोस्त का किरदार भी निभाया था। पर्दे पर निभाई गई ये दोस्ती निजी जिंदगी में आज तक बरकरार है। जब करण ने फिल्म निर्देशन में कदम रखा तो उन्होंने अपनी फिल्म में शाहरुख खान को मुख्य भूमिका दी और उनके साथ साइन किया फिल्मी दुनिया से ही अपनी एक और दोस्त काजोल को। इन दोनों कलाकारों के साथ इस फिल्म में थी रानी मुखर्जी। सभी के दिलों को भाने वाली 1998 में आई करण जौहर की पहली निर्देशित फिल्म थी कुछ कुछ होता है।

करण जौहर की इस पहली निर्देशित फिल्म ने अपार सफलता हासिल की। फिल्म कुछ कुछ होता है ने न सिर्फ अलग अलग फिल्मी पुरस्कारों को समेटा बल्कि एक संपूर्ण मनोरंजन करने वाली फिल्म के तौर पर राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित हुई। इसके बाद मानो करण जौहर को मिल गई उनकी राह, जहां वो अपनी मंजिल को पाने के लिए आगे बढ़ चले। 2001 में उन्होंने निर्देशित की अपनी दूसरी फिल्म कभी खुशी कभी गम, जहां एक ओर करण के जीवन में खुशियों के रंग बिखर रहे थे, वहीं गम ने जिंदगी में दस्तक दी। साल 2004 में पिता यश जौहर करण को मां हीरू जौहर की जिम्मेदारी सौंपकर इस दुनिया के रंगमंच को छोड़ गए। करण दुख के इस समय में अपनी मां हीरू जौहर के सहारे बने और बाद में उन्होंने पिता की फिल्म कंपनी धर्मा प्रोडक्शन को भी संभाला। करण जौहर ने अब तक जितनी भी फिल्म निर्देशित की उन सभी की कहानी उन्होंने खुद लिखी और साल 2006 में आई एक ऐसी फिल्म जिस फिल्म को उन्होंने न सिर्फ लिखा और निर्देशित किया बल्कि इस फिल्म के निर्माता भी वही थे। ये फिल्म थी वैवाहिक रिश्ते के उलझन को दर्शाती फिल्म कभी अलविदा ना कहना।

ऑलराउंडर कहना गलत नहीं होगा। वो निर्माता, निर्देशक, लेखक, अभिनेता तो हैं ही, साथ ही बतौर कॉस्ट्यूम डिजाइनर भी फिल्मों में काम कर चुके हैं। ऐसी कुछ फिल्में हैं, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, दिल तो पागल है, डुप्लीकेट, मोहब्बतें, वीर जारा और मैं हूं ना। ज्यादातर उन्होंने शाहरुख खान के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइन किए और साथ ही अमिताभ बच्चन के लिए भी।

साल 2009 में एक बार फिर करण जौहर अपनी पसंदीदा जोड़ी शाहरुख और काजोल के साथ लेकर आए एक ऐसी फिल्म जो सामाजिक मुद्दों की बात करते हुए सभी के दिलों को छू गई। करण के करियर की बेहतरीन फिल्मों में से एक मानी जाने वाली ये फिल्म थी माई नेम इज खान।

करण जौहर न्यूमरोलॉजी में काफी विश्वास रखते थे और इसीलिए उनकी फिल्मों के नाम शुरू होते थे अंग्रेजी के अक्षर से। लेकिन जब 2006 में उन्होंने फिल्म लगे रहो मुन्ना भाई देखी तो उन्हें लगा कि वो भी अब इन बातों में विश्वास नहीं करेंगे। इसके बाद उन्होंने कई अलग अलग अक्षरों से शुरू होने वाली फिल्मों का निर्माण किया। यहाँ हम आपको बताते चलते हैं उन फिल्मों के बारे में जिनसे करण जौहर बतौर निर्माता जुड़े हैं। ऐसी कुछ फिल्में हैं कल हो ना हो, दोस्ताना, वेक अप सिड, आई हेट लव स्टोरीज, वी आर फैमिली, अग्निपथ और ये जवानी है दीवानी।

0: माने ना।
1: साल 2012 में करण जौहर फिल्मी दुनिया में लेकर आए अपने तीन नए स्टूडेंट्स आलिया भट्ट, वरुण धवन और सिद्धार्थ मल्होत्रा। तीन नए चेहरों को सामने लाने वाली उनकी ये फिल्म थी स्टूडेंट ऑफ द ईयर।

फिल्मी सितारों के बच्चों को लॉन्च करने में माहिर हैं। उन्होंने ऐसे कई नए सितारों को रुपहले पर्दे तक पहुंचाया है। हाल ही में उन्होंने कुछ फिल्मी सितारों के बच्चों को अपने द्वारा निर्मित फिल्म के जरिए लोगों से रूबरू करवाया है। ये फिल्में हैं धड़क, जिसमें उन्होंने ईशान खट्टर और जाह्नवी कपूर को लॉन्च किया,

करण जौहर यूं तो कई फिल्मों में गेस्ट अपीयरेंस करते नजर आए, लेकिन उन्होंने 2015 में अनुराग कश्यप की फिल्म बॉम्बे वेलवेट में एक ऐसा किरदार निभाया जो लोगों के मन पर छाप छोड़ गया। करण जौहर ने पहली बार एक नेगेटिव किरदार निभाया जिसका नाम था कैजाद खंबाटा। इस नेगेटिव किरदार ने फिल्म को मिले नेगेटिव रिस्पांस के बीच न सिर्फ दर्शकों के बल्कि आलोचकों के भी पॉजिटिव कमेंट हासिल किए। इस किरदार के लिए करण जौहर ने अनुराग कश्यप से सिर्फ 11 रुपए लिए।

कई सालों तक सिर्फ फिल्म निर्माण से जुड़े रहने के बाद करण जौहर एक बार फिर तैयार थे एक नई फिल्म के साथ, जिसकी कहानी उन्होंने सिर्फ 30 दिनों में लिखी थी। ये फिल्म एक बार फिर करण जौहर के लिए बेहतरीन सक्सेस लेकर आई। साल 2016 में आई ये फिल्म थी ए दिल है मुश्किल।

फिल्मों के अलावा कई टेलीविजन शो में जज और एंकर आदि भूमिकाओं में नजर आते रहे हैं। फरवरी 2017 में उन्हें निजी जीवन में एक नई भूमिका हासिल हुई। ये भूमिका थी एक पिता की। करण जौहर सैरोगेसी के जरिए बन बैठे जुड़वां बच्चों के पिता। उन्होंने अपने बेटे का नाम पिता के नाम पर यश रखा है और बेटी को उन्होंने अपनी माँ हीरू जौहर के नाम से मिलता जुलता नाम रूही दिया।

करण जौहर की बतौर निर्माता कई फिल्में आई जिन्हें दर्शकों ने सराहा। इनमें शामिल हैं मीनाक्षी सुंदरेश्वर, सूर्यवंशी, गहराइयां, ब्रह्मास्त्र पार्ट 1, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी और जुग जुग जियो।

0: करण जौहर ने देशभक्ति से जुड़ी कई फिल्मों का भी निर्माण किया जिन्हें काफी सराहा गया। इनमें नाम शामिल हैं गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल, ए वतन मेरे वतन और कैप्टन विक्रम बत्रा के जीवन पर बनी फिल्म शेरशाह, जिसे दर्शकों का भरपूर प्यार मिला। केसरी 2 द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ जलियांवाला बाग सभी को पसंद आ रही है।
1: ओ शेरा उठ जरा।

साल 2020 में सिनेमा से जुड़े बेहतरीन काम के लिए करण जौहर को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। फ्रेंच में मास्टर डिग्री रखने वाले करण जौहर प्रेम और रिश्तों की भाषा समझने और समझाने में भी मास्टर हैं। वो आगे दर्शकों तक प्रेम का ये संदेश अपनी फिल्मों के जरिए पहुंचाते रहेंगे, इसकी पूरी उम्मीद है।

0: आज के फनकार। ये कार्यक्रम आज केंद्रित था निर्माता निर्देशक करण जौहर पर, शोध आलेख और स्वर नेहा शर्मा का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

यह आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में सुबह की 10:20 हुई है। पेश है कार्यक्रम हेलो हजारीबाग।

0: हजारीबाग प्रत्येक दिन के इतिहास, महत्वपूर्ण व्यक्तियों के जन्मदिन, मृत्यु और महत्वपूर्ण दिवस का संपूर्ण ब्यौरा मिलेगा डे टू डे। हेलो हजारीबाग, मिलेगी मौसम की जानकारी, साथ ही हजारीबाग के अस्पताल के ओपीडी अपडेट्स मिलेंगे, हजारीबाग के ट्रैफिक अपडेट्स, लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल इवेंट्स के कर्टन रेजर रोजाना, लोकल इवेंट्स के ग्राउंड रिपोर्ट्स का खजाना, सिटी के इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज में हजारीबाग के यूनिवर्सिटी की गतिविधियों और स्पोर्ट्स के ताजे हाल का हेलो हजारीबाग। और अंत में आज के विचार को सुनकर कर देंगे दिन की पॉजिटिव शुरुआत। गीतों संगीत से सजा सवरा जीवन की प्रत्येक आवश्यक गतिविधियों संग हेलो हजारीबाग।
1: रात गुजरी फिर महकती सुबह आई, दिल धड़का फिर आपकी याद आई, सांसों ने महसूस किया हवा की खुशबू को जो आपको छूकर हमारे पास आई। हेलो हजारीबाग कार्यक्रम सुनने वाली आप तमाम श्रोताओं को रानी का प्यार भरा नमस्कार, और इस कार्यक्रम में आप तमाम श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं कैसे हैं आप सभी, उम्मीद करती हूँ बिल्कुल स्वस्थ होंगी और मस्त भी होंगी, और ऐसा रहना भी चाहिए। बिल्कुल स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और हमारे साथ बने रहिए हेलो हजारीबाग कार्यक्रम में। कार्यक्रम के आरंभ में सुनते हैं खूबसूरत सा ये गाना।

कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं सुविचार के साथ। सोच का ही फर्क होता है, वरना समस्याएं आपको कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती है।

दोस्तों, जीवन में हमें यदि आगे बढ़ना है तो सोच को सकारात्मक रखना होगा। सकारात्मक सोच के साथ ही हम आगे बढ़ सकते हैं। यदि हम सोचेंगे तभी हम आगे बढ़ सकेंगे। हम वैसे व्यक्ति की संगत में बिल्कुल ना रहें, हमें नहीं रहना चाहिए जिनका सोच नकारात्मक हो। हम ये नहीं कर सकते, हम ये करेंगे तो फिर इसमें परेशानी होगी, कैसे हम आगे बढ़ेंगे। ऐसे सोच वालों के साथ हमें नहीं रहना चाहिए। सकारात्मक सोचिए तभी जीवन में आप आगे बढ़ेंगे। हमेशा सोचिए कि हम किसी भी कार्य को करेंगे तो हमें सफलता अवश्य मिलेगी। थोड़ी परेशानी आती है, हम मानते हैं परेशानी आती है, तो कठिन परिस्थितियों को झेलते हुए हमें आगे बढ़ जाना चाहिए। हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे, सिर्फ सोचते रहेंगे तो कुछ होने वाला नहीं। इसलिए आगे बढ़िए और सफलता हासिल कीजिए, मंजिल तक पहुंचिए। फिलहाल सुनिए हमारे साथ ये गाना।

श्रोताओ आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हेलो हजारीबाग। श्रोताओ गर्मी काफी बढ़ गई है, हमें बचकर रहना है, सतर्क रहना है। लू से हमें कैसे बचना है इस पर भी हम थोड़ी चर्चा कर ले। धूप से बचकर रहें, धूप में जब भी बाहर निकले घर से पानी पीकर निकले और छाता जरूर लेकर निकले। अगर छाता नहीं भी लेकर निकले हैं तो सर पर तौलिया रख लें, सर को ढक लें, धूप न लगने दें। घर में यदि बच्चे बुजुर्ग हैं तो उनका भी विशेष रूप से ख्याल रखें। बच्चे अभी गर्मी की छुट्टियां हैं तो बच्चे घर में काफ़ी परेशान करते होंगे कि उन्हें खेलना है, बाहर जाना है, तो धूप में बिल्कुल लेकर न निकले, शाम के समय निकले। और उन्हें भी समझाएं कि अभी बहुत गर्मी पड़ रही है, धूप है, घूमने जाना है, शाम में चलेंगे, खेलना भी है तो शाम में खेलेंगे। और बुजुर्ग हैं तो उनका भी विशेष रूप से ख्याल रखें। ताज़ा भोजन, समय समय पर पानी और फल भी अपने भी खाएं, खुद भी खाएं और औरों का भी ख्याल रखें। हम यही कहेंगे कि आप सभी बिल्कुल सचेत रहें, गर्मी बहुत अधिक पड़ रही है, ठंडे पानी पिए और ठंडे फल खाएं, भोजन बिल्कुल ताज़ा करें। जैसा कि अभी हमने कहा, कई लोग ऐसा करते हैं कि बचे हुए भोजन को रख देते हैं फ्रिज में, फिर निकालते हैं, गर्म करते हैं, उसे खाते हैं, ऐसा बिल्कुल ना करें, तबीयत खराब हो जाएगी। और तबीयत यदि बिगड़ी तो एक के साथ सभी परेशान हो जाते हैं घर में। यदि तबीयत खराब होती है तो तुरंत चिकित्सक के पास जाए, देर ना करें। आप सभी सचेत होकर रहें और खुश रहें, स्वस्थ रहें और जीवन भी आगे बढ़ते रहिए खुशियों के साथ। फिलहाल हम आपके साथ मिलकर सुनते हैं खूबसूरत सा ये गाना।

श्रोताओं, गर्मियों में लू से बचने के लिए सबसे जरूरी है कि शरीर में पानी की कमी न होने दें और तेज धूप में निकलने से बचें। जैसा कि अभी हमने कहा आपसे, दिन में 12 से 4 बजे के बीच घर से बाहर न निकलें और हमेशा सिर ढककर और सूती कपड़े पहनकर ही बाहर जाएं। कई परेशानियां हो सकती है गर्मी के दिनों में। तेज गर्म हवा के संपर्क में आने से सिर दर्द, तेज बुखार, चक्कर आना और उल्टी की समस्या हो सकती है। शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है, जिससे बहुत ज़्यादा थकान और कमजोरी महसूस होती है। त्वचा की समस्या भी हो सकती है। धूप में रहने से टैरिंग, लाल चकते और सनबर्न हो सकता है। पेट की खराबी, गर्मी में खाना जल्दी पचता नहीं है, जिससे गैस, अपच या दस्त की शिकायत हो सकती है। लू से बचने के उपाय भी हैं, इससे हम बच सकते हैं। सतर्क रहें, हमेशा हम कह रहे हैं सतर्क रहें। प्यास न होने पर भी हर थोड़ी देर में पानी पीते रहें। सादे पानी के अलावा नींबू पानी, ORS, झाज, लस्सी और नारियल पानी का सेवन करें। यह शरीर की संतुलन को बनाए रखता है। खान पान का ध्यान विशेष रखें। बाहर जाते समय कभी भी खाली पेट न रहें। हल्का और आसानी से पचने वाला भोजन करें। ज़्यादा तला भुना या मसालेदार खाना खाने से बचें। मौसमी फल, जैसा कि हमने कहा पहले भी, कि तरबूज, खरबूजा, ककड़ी और खीरा जरूर खाएं। यह शरीर को अंदर से ठंडा रखता है। तो हमें सावधानियां रखनी है, अपने बारे में भी सोचना है, औरों को भी बचाना है और बिल्कुल स्वस्थ रहना है। फिलहाल हम कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं आपके साथ खूबसूरत सा ये गाना।

श्रोताओं, हम आपको बता दें, इंडियन बैंक आरसीटी हजारीबाग द्वारा युवाओं को स्वरोजगार एवं कौशल विकास से जोड़ने के उद्देश्य से विभिन्न निःशुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेगा। प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्लम्बिंग एवं सैनिटरी कार्य, घरेलू विद्युत उपकरण सेवा उद्यमी, हल्के मोटर वाहन चालक, सौर ऊर्जा उपकरण तकनीशियन, सर्विस एवं रिपेयरिंग और फास्ट फूड स्टॉल उद्यमी से संबंधित प्रशिक्षण शामिल है। प्रशिक्षण कार्यक्रम जून से अक्टूबर तक चरणबद्ध तरीके से आयोजित होंगे। सभी प्रशिक्षण पूर्णतः निःशुल्क होंगे और प्रशिक्षणार्थियों

के लिए रहने वाले खाने की भी व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी। प्रशिक्षण का समय प्रतिदिन सुबह 9:30 से शाम 5:30 तक निर्धारित किया गया है। संस्थान द्वारा बताया गया है कि प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए अभ्यर्थियों की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इच्छुक अभ्यर्थी को आधार कार्ड, बैंक पासबुक, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, जॉब कार्ड, स्वयं सहायता समूह से जुड़े होने का प्रमाण, जाति एवं आवासीय प्रमाण पत्र सहित पासपोर्ट साइज फोटो, इंडियन बैंक, RCT, संत कोलंबस कॉलेज के समीप नीलाम्बर पीताम्बर चौक, साकेतपुरी, हजारीबाग में जमा करना होगा। तो इसी जानकारी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं गे गाना।

चलते चलते हम थोड़ी ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में भी जानकारी दे दें आपको। आज ही के दिन 1926 में हिमालय की गोद में बसी उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में आदमखोर तेंदुए के आतंक का अंत हुआ था, जिसने कई इंसानों की जान ले ली थी। 1950 में भारत का पहला संविधान लागू होने के बाद देश में पहले आम चुनाव की प्रक्रिया की औपचारिक शुरुआत हुई थी। 1957 में देश की आर्थिक राजधानी मुंबई तत्कालीन मुंबई में जनता बीमा पॉलिसी की शुरुआत की गई थी। 1969 में भारत के महान क्रांतिकारियों में से एक छगन राज चौपासनीवाला का जन्म हुआ था आज ही के दिन। 2014 में आज ही के दिन श्री नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार भारत की 15वीं प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। ১৬৭৯ में ब्रिटेन की संसद ने बंदी प्रत्यक्षीकरण कानून पारित किया, जिसे दुनिया का पहला मानवाधिकार कानून माना गया था आज के दिन। 1739 में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह और ईरान के नादिर शाह के बीच संधि हुई थी, जिसके परिणाम स्वरूप अफगानिस्तान भारत से अलग हो गया था आज के दिन। 1805 में नेपोलियन बोनापार्ट को इटली का राजा घोषित किया गया था। श्रोताओं, इसी के साथ कार्यक्रम में

आप सुन रहे थे कार्यक्रम हेलो हजारीबाग। ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। अब से कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से।

दुर्गा माँ, इस फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे सुरेश वाडकर, चंद्रानी मुखर्जी और साथियों की आवाजों में। रविंद्र जैन ने इसे लिखा था और उन्हीं का संगीत। रंग तरंग में ये अगली पेशकश जॉगर्स पार्क फिल्म से, जगजीत सिंह की आवाज में ये गजल।

बड़ी नाजुक है ये मंजिल, मोहब्बत का सफर है। जगजीत सिंह की आवाज में ये गजल आपने सुनी। जंजीर फिल्म से ये गीत सुनिए।

0: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती से प्रोग्राम रंग तरंग।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में मुकद्दर का सिकंदर से ये गीत। कल्याण जी आनंद जी का म्यूजिक है, प्रकाश मेहरा ने इसे लिखा।

हाल क्या है जनाब। जी हाँ, ये गीत अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में, अनोखी अदा, फिल्म का नाम था मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग।

महालक्ष्मी और शान की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे अ वेडनेसडे फिल्म से। इरशाद कामिल ने इसे लिखा था, संजय चौधरी का म्यूजिक। सोनू निगम को लीजिए सुनिए इस एल्बम दीवाना में, फैज अनवर ने इसे लिखा, साजिद वाजिद का म्यूजिक।

0: भूपेन हजारिका को आप सुन रहे थे इस फिल्म रुदाली से, गुलजार ने इसे लिखा था और भूपेन हजारिका का संगीत।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले।

0: कान से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जो शहीद हुए
3: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग।

0: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम मुंबई केंद्र से FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है। आइए सुनते हैं कुछ जरूरी संदेश।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
3: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
4: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
2: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
3: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
4: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
0: तो श्रोताओं, चलिए आपको फिर से लिए चलते हैं मुंबई केंद्र, जहां से आप सुन पाएंगे विविध भारती के कार्यक्रम।

0: चित्रा सिंह को अभी आप सुन रहे थे इस गजल में, और इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम रंग तरंग यहीं समाप्त होता है। ये है विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर की अध्यक्षता में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में हुई। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए डॉ जयशंकर ने क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने पर बल दिया। उन्होंने दूसरों की सहायता करने की बात भी कही। श्री जयशंकर ने कहा कि क्वाड देश खुले समाज हैं जो समृद्धि और विकास की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक देशों के तौर पर उन्होंने आतंकवाद के साझा खतरे का मुकाबला करने पर भी अपना ध्यान केंद्रित किया है। बैठक के बारे में उन्होंने बताया कि द्विपक्षीय चर्चाएं विश्व की मौजूदा स्थिति पर केंद्रित थी। चारों देशों ने विशेष रूप से हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर ध्यान दिया। उन्होंने कहा कि समुद्री क्षेत्र में सहयोग का लगातार विस्तार हुआ है, जिसमें निगरानी और समुद्री क्षेत्र की जानकारी, लॉजिस्टिक्स नेटवर्क, समुद्र के नीचे बिछी केबलें, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और मानवीय सहायता तथा आपदा राहत गतिविधियां शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के सिक्किम यात्रा पर रहेंगी। राष्ट्रपति यात्रा के पहले दिन देवराली में नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ तिब्बतोलॉजी का दौरा करेंगी और गंगटोक में महिलाओं के लिए पिंक बसों को झंडी दिखाएंगी। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोपवे के 65 केबिनों में 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, सेना और प्रशासन ने संयुक्त रूप से करीब 7 घंटे तक बचाव अभियान चलाकर सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल बचाव अभियान की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि इस कठिन ऑपरेशन को जिस दक्षता और संकल्प के साथ पूरा किया गया, उसके लिए सभी कर्मियों के प्रति

0: राष्ट्र आभारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी सरकार के आज 12 साल पूरे होने पर इसे भारत की सभ्यता और विकास यात्रा का एक बदलाव लाने वाला दौर बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि 26 मई 2014 को देश के प्रशासन, सोच, नेतृत्व और राष्ट्रीय संकल्प में एक निर्णायक बदलाव आया जब श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे के विकास और निर्णायक वैश्विक नेतृत्व से लेकर एक मजबूत राष्ट्रीय सुरक्षा ढांचे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने अभूतपूर्व प्रगति की है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यभार संभालने के बाद से देश ने अभूतपूर्व आत्मविश्वास और नए सांस्कृतिक पुनर्जागरण का ऐतिहासिक क्षण देखा है। दिल्ली में सीएनजी की कीमत में 2 रूपये प्रति किलोग्राम की वृद्धि हुई है। आज सुबह 6 बजे के बाद से राष्ट्रीय राजधानी में सीएनजी की नई कीमत 83 रूपये 9 पैसे प्रति किलोग्राम हो गई है। नागर विमानन महानिदेशालय ने इबोला वायरस को लेकर नए निर्देश जारी किए हैं। ये कदम विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कांगो और युगांडा में इबोला वायरस को अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किए जाने के बाद उठाया गया है। महानिदेशालय ने कहा है कि युगांडा और कांगो से जुड़ी उड़ानों को का संचालन करने वाली एयरलाइंस को यात्रियों के विमान से उतरने से पहले उनसे यात्री जानकारी फॉर्म भरवाना अनिवार्य होगा। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लवरोव से बात की और रूस यूक्रेन युद्ध तथा ईरान की स्थिति पर विचार विमर्श किया। अमेरिका में विदेश विभाग के प्रवक्ता टॉमी पिगोट ने इस संबंध में जानकारी दी है। आईपीएल क्रिकेट में आज क्वालिफायर 1 में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। ये मुकाबला धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। विजेता टीम फाइनल में पहुंचेगी जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफायर 2 में एक और मौका मिलेगा। मौसम विभाग ने बताया है कि मिजोरम में आज मॉनसून की शुरुआत हो गई है। विभाग ने बताया कि इस साल मिजोरम पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों और केरल में मॉनसून समय से 6 दिन पहले ही आ गया है। इस बीच विभाग ने आज दिल्ली में भीषण लू का येलो अलर्ट जारी किया है। राजधानी में कल तक लू की स्थिति की संभावना है। हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, विदर्भ, पश्चिम राजस्थान में आज भी भीषण लू चल सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल।

लता मंगेशकर को आप सुन रहे थे। इस फिल्म का नाम था अर्धांगिनी। मजरू सुल्तानपुरी ने इस गीत को लिखा था, वसंत देसाई का संगीत था। आज यादों की महफिल में वो गीत जिनमें इंतजार है, याद है, किसी प्यार भरे संदेश का जिक्र है। फिलहाल एक छोटा सा अंतराल और यादों की महफिल के बाकी के गीत इस अंतराल के बाद।

0: गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जो शहीद हुए
3: हैं। विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल, जिसमें आज वो गीत जिनमें इंतजार, याद, किसी प्यार भरे संदेश का जिक्र है।

आशा भोसले भूपेंद्र की आवाजों में ऐतबार फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे। बप्पी लहरी ने संगीत दिया था और हसन कमल ने इसे लिखा। एक और इंतजार में डूबा नगमा जगजीत सिंह की आवाज में।

होठों से छीलू तुम मेरा गीत अमर कर दो। प्रेम गीत फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे, जगजीत सिंह की आवाज में इंदिवर ने इसे लिखा था।

आपकी कसम इस फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार लता मंगेशकर की आवाजों में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा था, आर डी बर्मन की तर्ज थी।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बहारें खिली तनी।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल।

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
3: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।

0: विविध भारती से आप सुन रहे थे प्रोग्राम यादों की महफिल।
1: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3:03।
2: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
1: सखी सहेली?
2: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
1: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
3: सखी सहेली।
0: यह है विविध भारती, सुरीला सफर लेकर हाजिर होते हैं बस कुछ ही पलों में।

साथियों, बहुत बहुत स्वागत आप सबका प्रोग्राम में जिसका नाम है सुरीला सफर। सबसे पहले आपके प्यार भरे मैसेजेस, संदेशों का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आप सब जानते हैं, इस प्रोग्राम में हमारी तरफ से एक टेक्स्ट या इबारत लिखी जाती है, पोस्ट की जाती है। उसमें आपको एक शब्द चुनने होते हैं, एक नहीं कई शब्द चुनने होते हैं, और साथ ही उन शब्दों से कौन कौन से गीत शामिल हो सकते हैं ये बताना होता है। आपके प्यार भरे संदेशों से समझ में आ रहा है कि काफी सारे शब्द, काफी सारे गीत आप चुन चुके हैं और एक लिस्ट भी तैयार कर ली है जो कि मैंने देख ली है। लेकिन उन श्रोताओं के लिए जो अभी अभी हमसे जुड़े हैं, आपके लिए इस इबारत को फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। इबारत कुछ इस प्रकार है, ठंडा हवा का झोंका हर पल तुम्हारा एहसास दिलाता है। तुम पास हो या ना हो, मेरा दिल तुम्हारे करीब रहता है। तुम्हारी आंखें जैसे सागर की गहरी सी बात, तुम्हारी नजर में छुपी रहती है मेरी हर बात। एक पंछी सा दिल मेरा तुम्हारे पीछे उड़ता है, मोहब्बत के पंख लगा गगन तक जुड़ता है। वक्त की दूर राहों पर तुमसे ही ये वादा है, तुम्हारे साथ ही छांव में हर दर्द आधा है। सपना बनकर तुम ही तो आए थे दबे पांव मेरी जिंदगी में, तुम ही तो हो मेरी बंदगी में। ये दीवाना दिल आज भी तुम्हारी राहें तकता है, बयार चले तो लगता है तू पास ही रहता है। जी हाँ, ये थी इबारत और आपके संदेश मुझ तक पहुंच चुके हैं। शुरुआत करते हैं इस प्रोग्राम की, लेकिन आपको ये भी बता दें कि अगर आपकी लिस्ट हमारी लिस्ट से मैच नहीं करती, फिर भी आप फेसबुक पर इन शब्दों से जुड़े गीत लिख सकते हैं, हो सकता है हम उन्हें शामिल कर दें, है ना।

0: भारती इश्क में डूबी खूबसूरत इबारत के संगीत में सफर का इंतजार है। बिल्कुल इंतजार खत्म हुआ और सफर शुरू हुआ। एक और श्रोता है जिनका कहना है कि प्रियतम की दूरी और उस पर ठंडी हवा के झोंके जब तन को छूते हैं तो मानो उसकी उंगलियों से छुआ हो, मानो उनकी उंगलियों ने छुआ हो। कंपकपाती सिर्फ सर्द रातों की नहीं होती बल्कि प्रियतम की यादों की भी होती है। हवा का हर झोंका बीते लम्हों की खुशबू साथ लाता है और भर देता है आंखों को नमकीन पानी से। जी हाँ, ये मैसेज बहुत बड़ा है लेकिन मैंने उसका सार जरूर अब तक पहुंचा दिया है। और एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि आज एक बार फिर गद्यांश ने दिल के एहसासों को बहुत खूबसूरती से पेश किया है। वैसे भी अपने प्रियजन से जब दूरियों की वजह से जो विरह की टीस दिल में उभरती है तो ठंडी हवा का झोंका मन में उभरती यादों, सपनों, दर्द और मोहब्बत भरी मीठी बातों की बयार लेकर आता है। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि प्रेम में सपनों का आना और वादा करना, आंतरिक प्रेम की गहराई, अत्यंत प्रतीक्षा और विश्वास का सुंदर और भावुक चित्रण है जो स्वप्न मिलन के रूप में देखा जाता है। जी हाँ बिल्कुल, और साथ ही आपके मैसेजेस मुझ तक बिल्कुल पहुंच रहे हैं। हमारे एक और श्रोता कहते हैं कि हम सिर्फ चीजों को, बातों को लिखते नहीं है, उन पर अमल भी करते हैं। अच्छा सुनने और अच्छा लिखने से हम थोड़े और अच्छे बन जाएंगे, इतना तो हो ही जाएगा। कुछ बुराइयां तो हमारी दूर हो ही जाएंगी। विविध भारती के साथ रहकर रोज। जी हाँ बिल्कुल, हमें हर रोज अपने आप को और बेहतर बनाना चाहिए, यही तो जिंदगी है। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि आज दिल की गहराई से निकली इस इबारत ने जज्बातों को एक नया आसमां दे दिया है। जब अपने प्रियजन से दूरियां बढ़ती है तो दिल में विरह की एक मीठी टीस उभरती है। ऐसे में जब खिड़की से ठंडी हवा का झोंका आता है तो सिर्फ हवा नहीं होती, वो सिर्फ आती है पुरानी यादों का कारवां लेकर। अधूरे
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं अक्षरा अक्षय। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने दी बधाई। कहा, श्री मोदी के नेतृत्व में देश विकसित राष्ट्र की दिशा में बढ़ रहा आगे। भाजपा प्रदेश चुनाव समिति की बैठक में राज्यसभा चुनाव में पार्टी प्रत्याशी उतारने का निर्णय। झामुमो ने निर्वाचन आयोग को पत्र भेज विशेष निगरानी की मांग की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज स्कूली शिक्षा, साक्षरता और महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाओं की करेंगे समीक्षा। रांची में प्रस्तावित रिम्स 2 अस्पताल परियोजना पर 4,200 करोड़ रुपए होंगे खर्च। मरीजों को मिलेगी सुपर स्पेशलिटी की सुविधाएं। और झारखंड में गुटखा, पान मसाला और अन्य तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए आज से एक महीने तक चलेगा विशेष महाअभियान। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री पद पर 12 वर्ष पूरे होने पर उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने विकास, आत्मनिर्भरता, गरीब कल्याण और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में ऐतिहासिक बदलाव देखे हैं। अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि नारी शक्ति से राष्ट्र शक्ति के संकल्प के साथ देश विकसित और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर हजारीबाग के लोगों में खुशी की लहर है। लोगों ने योजनाओं और अन्य सुविधाओं को लेकर सरकार के कार्यों की सराहना की है।
2: समाज के अंतिम से अंतिम व्यक्तियों को क्या जरूरत है, क्या समस्या है, आम आदमी को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने के लिए 12 वर्षों से हमारी सरकार के मुखिया मोदी जी लगे हुए हैं।
3: 12 वर्ष मोदी जी के राज हुआ, आज तक अपने जीवन में कभी हमने नहीं पाया है। हर तरह की सुख सुविधा, हर तरह की व्यवस्था, रोड को देखिए, जहाज को देखिए, मैंने सब तरह की व्यवस्था, ऐसी व्यवस्था मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी। मैं मोदी सरकार से बहुत खुश हूँ।
1: साहिबगंज जिले में आदिम जनजाति समुदाय के समग्र विकास के उद्देश्य से धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान चलाया जा रहा है। जिले के कुल 336 गांवों के विकास के लिए विभिन्न योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। समेकित जनजातीय विकास अभिकरण साहिबगंज के परियोजना निदेशक संजय कुमार दास ने बताया कि अभियान का उद्देश्य आदिम जनजाति समुदाय के लोगों को योजना

0: सुविधाओं से जोड़ना है।
1: जितनी भी मूलभूत सुविधाएं हैं या अन्य तरह के कार्यक्रम हैं, जैसे वहाँ आंगनबाड़ी नहीं चल रहे हैं तो भवन में आंगनबाड़ी चलाया जा सकता है, या NM वगैरह आती है। इतना ही नहीं, वहाँ के जो ग्रामीण है, जो अपना किसी भी तरह का बैठक हो, ग्राम सभा करना हो, उस मल्टीपर्पज बिल्डिंग में बैठ करके अपने उन कार्यों को संपादित कर सकते हैं। इसके अलावा भर्ती आवास योजना के तहत हमारे कई निजी विद्यालयों में अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण स्वीकृति प्राप्त हुआ है।
0: भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड में आगामी राज्यसभा चुनाव में प्रत्याशी उतारने का निर्णय लिया है। रांची स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू की अध्यक्षता में आयोजित प्रदेश चुनाव समिति की बैठक में सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया। बैठक में आगामी 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर पार्टी की रणनीति पर चर्चा की गई। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भारत निर्वाचन आयोग से राज्यसभा चुनाव के दौरान विशेष निगरानी की मांग की है। झामुमो के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र भेजकर विधायकों की खरीद फरोख्त की आशंका जताई है। भाजपा के प्रदेश महामंत्री अमर कुमार बावरी ने झामुमो के हॉर्स ट्रेडिंग के आरोपों को निराधार बताया है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों की ओर से ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या उनके पास 56 विधायक हैं?
2: उन लोगों को खुद ही अपने में एक सहमति नहीं है। जो 56 की वो दावे कर रहे हैं, 56 में 56 है क्या? आज उनके अंदर ही अंतर कला है। और जो बात एलिगेशन हम लोग लगा रहे हैं, वो उस मत के अब खिलाड़ी हो गए हैं, जिन्होंने झारखंड को बेचने का और खरीदने का जिनका पुराना अनुभव है, और दूसरों को ज्ञान ना दे तो अच्छा है। हॉर्स ट्रेडिंग उन्हीं लोगों ने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया, और राज्यसभा में यहाँ क्या हुआ, कलंकित हुआ, ये तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का पुराना इतिहास रहा है।
0: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने दुमका के मुफस्सिल थाना क्षेत्र स्थित सहर घाटी पंचायत में बड़े पैमाने पर अवैध बालू कारोबार का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक संरक्षण में प्रतिदिन 50 से 60 ट्रैक्टरों के जरिए अवैध बालू का उठाव और भंडारण किया जा रहा है। उन्होंने दुमका पुलिस और जिला प्रशासन से मामले में FIR दर्ज कर माफियाओं तथा संरक्षण देने वाले अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज स्कूली शिक्षा, साक्षरता और महिला एवं बाल विकास तथा सामाजिक विभाग की योजनाओं की समीक्षा करेंगे। इस दौरान विभाग के कार्यों का मूल्यांकन और योजनाओं को लागू करने में आ रही परेशानियों को दूर करने पर भी चर्चा होगी। भीषण गर्मी को देखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आदेश के बाद हजारीबाग, खूंटी, गुमला, गिरिडीह समेत कई जिलों के थानों के बाहर आम लोगों के लिए प्याऊ की व्यवस्था की गई है। गिरिडीह के पुलिस अधीक्षक विमल कुमार ने बताया कि मुफस्सिल और पचम्बा थाना परिसर के बाहर प्याऊ की व्यवस्था की गई है।
3: गर्मी बढ़ गया है, इसको लेकर गिरिडीह जिले में जितने भी थाना है सभी जगह शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की गई है। जो मुफस्सिल पचम्बा में आज से व्यवस्था लागू की गई है, और हम लोग का ये प्रयास है कि आने वाले एक दो दिनों के अंदर में सभी थाना में ये व्यवस्था रहेगी।
0: रांची में प्रस्तावित रिम्स 2 अस्पताल परियोजना पर 4200 करोड़ रुपए की लागत आएगी, जिसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक करीब 2600 करोड़ रुपए का लोन देगा। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में ADB टीम के साथ बैठक में निर्माण, वित्तीय प्रबंधन और तकनीकी पहलुओं पर चर्चा हुई। रिम्स 2 को सिर्फ अस्पताल नहीं बल्कि सुपर स्पेशलिटी सुविधाओं, आधुनिक चिकित्सा शिक्षा और रिसर्च केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा, ताकि झारखंड के लोगों को इलाज के लिए दूसरे राज्यों पर निर्भर नहीं रहना पड़े। सरकार का लक्ष्य 6 महीने में लोन प्रक्रिया पूरी कर दिसंबर 2026 या जनवरी 2027 से निर्माण शुरू कर 2 वर्षों में अस्पताल चालू करना है। झारखंड सरकार ने राज्य को तंबाकू मुक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए गुटखा, पान मसाला और अन्य तंबाकू उत्पादों के खिलाफ आज से विशेष महाअभियान चलाने का निर्णय लिया है। इस दौरान प्रतिबंधित तंबाकू उत्पादों की बिक्री, भंडारण और अवैध कारोबार पर रोक लगाने के लिए छापेमारी की जाएगी। राजधानी रांची के सर्राफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,48,100 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,78,000 रुपये प्रति किलो है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में दोपहर के कारोबार में गिरावट का रुख है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 162 अंक गिरकर 76,327, जबकि निफ्टी 19 अंक की गिरावट के साथ 24,013 पर था। आगामी ईद उल जुहा बकरीद को लेकर झारखंड पुलिस अलर्ट मोड में है और डीजीपी तदाशा मिश्रा ने उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में सभी जिलों को सख्त निर्देश जारी किए। डीजीपी ने संवेदनशील और हॉटस्पॉट इलाकों को चिन्हित कर विशेष सतर्कता बरतने, धार्मिक स्थलों पर सीसीटीवी, वीडियोग्राफी और ड्रोन से निगरानी और सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। बैठक में असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई, प्रतिबंधित पशुओं की तस्करी रोकने, अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट पर निगरानी और शांति समितियों के साथ समन्वय पर जोर दिया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने दी बधाई। कहा, श्री मोदी के नेतृत्व में देश विकसित राष्ट्र की दिशा में बढ़ रहा आगे। भाजपा प्रदेश चुनाव समिति की बैठक में राज्यसभा चुनाव में पार्टी प्रत्याशी उतारने का निर्णय। झामुमो ने निर्वाचन आयोग को पत्र भेज विशेष निगरानी की मांग की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज स्कूली शिक्षा, साक्षरता और महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाओं की करेंगे समीक्षा। रांची में प्रस्तावित रिम्स 2 अस्पताल परियोजना पर 4,200 करोड़ रुपए होंगे खर्च, मरीजों को मिलेंगी सुपर स्पेशलिटी की सुविधाएं। और झारखंड में गुटखा, पान मसाला और अन्य तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए आज से एक महीने तक चलेगा विशेष महाअभियान। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

बिल्कुल सही कहा, नज़ारे हम क्या देखें, और हम आपके मैसेजेस देख रहे हैं बस, उसके अलावा हमें ठंडक किसी से नहीं मिलती। एकदम सच कहेंगे, एक श्रोता लिखते हैं, दिल को ठंडक देने के लिए हम तो बस छत पर जाकर पक्षियों के लिए पानी रख देते हैं, और जब वो एक एक करके पानी पीते हैं तो लगता है मानो इस गर्मी से हमें ठंडक मिल गई हो, और रात में इतने शीतल चंद्रमा को देखकर मानो दिल भीग जाता है क्योंकि उसकी चांदनी में बड़ी ठंडक होती है। और आपने कहा है कि प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब श्रोताओं का जिन्होंने आज मेरा स्वागत किया इस प्रोग्राम में। तो मैं सबको एक एक मैसेज तो नहीं कर पाऊंगी, लेकिन सबको, सभी सुनने वालों को बहुत बहुत प्यार भरा शुक्रिया। हमारे दूसरे श्रोता लिखते हैं कि दिल का ये छोटा सा एहसास ही तो है जो हमें इंसान बनाए रखता है, कभी कभी एक ठंडी हवा के झोंके की तरह आता है और मन के सारे कोलाहल को शांत कर देता है। ये किसी पुराने गाने को सुनकर अचानक बचपन की गलियों में लौट जाना चाहता है, या किसी अजनबी के लिए मन में उपजी सहानुभूति का एहसास। हमारे श्रोता लिखते हैं, दिल और दिमाग तो अच्छे गाने सुनकर ठंडे हो जाते हैं, बाकी राजस्थान में इतनी गर्मी है कि एसी की हवा भी ठंडक नहीं देती है। बिल्कुल बिल्कुल, गर्मी का हाल हर जगह इस वक्त बहुत एक्सट्रीम पर है। दिल को ठंडा रखने के लिए अच्छे गाने सुनती हूँ और किस्से कहानियां पढ़ती हूँ, और गर्मियों के दिन काफी लंबे हो जाते हैं, ऐसे में गानों और किताबों का संयोजन दिन को खुशनुमा बनाते हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि छाछ, शिकंजी, पुदीना सौंफ की शरबत, खीरा ककड़ी, तरबूज, खरबूज, संतरा, ठंडे फल और पेय पदार्थ शरीर और मन को ताजगी और सुकून से भर देते हैं, ताजगी और सुकून से भर देते हैं बिल्कुल। और मधुर संगीत तो है ही, उस पर सोने पर सुहागा। दिल की ठंडक और दिमाग की ठंडक के लिए हर मौसम अजीज अदरक इलायची वाली चाय इन्हें चाहिए, हमारे एक श्रोता लिखते हैं। और साथ ही अदरक इलायची की चाय, कई लोगों को लगता है कि गर्मी करती है, पर जिन्हें चाय का प्रेम है, चाय प्रेम में जो पड़े हैं, उनके लिए वो ही ठंडक देती है ना। हमारे श्रोता लिखते हैं कि फिलीपीन में अब गर्मी ने बहुत जोर पकड़ा है, काम निपटाकर दोपहर को मुझे नींबू शिकंजी पीना बहुत राहत देता है, और नमकीन लस्सी भी मैं जरूर पीता हूँ। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि दिल और दिमाग को शांत व ठंडा रखने के लिए नियमित मेडिटेशन यानी कि ध्यान करना बहुत जरूरी है, गहरी सांस लेने से व्यायाम, पर्याप्त पानी पीना और भरपूर नींद लेना, ये सब प्रभावी तरीके हैं। तनाव, गुस्सा और नकारात्मक विचारों से दूर रहना चाहिए और बस मेंटल कामनेस के लिए कुछ करना चाहिए। साथ ही काफी लंबा मैसेजेस और काफी सारे इन्होंने हमें तरीके बताए हैं अपने आप को ठंडा रखने के लिए मेंटली, इमोशनली, तो जरूर ठंडा रखते हैं और एक और ठंडक यहां आप तक पहुंचाते हैं इस गीत के द्वारा। लेकिन हाँ, अगले गीत तक जाने से पहले, अभी जो गीत आपने सुना कभी कभी फिल्म का, जिस जोड़ी पर वो फिल्म आया गया था, उस गीत में जो जोड़ी थी उसमें जो एक्ट्रेस है, जो हीरोइन है, जो मेन लीड है, उसका फिल्म में क्या नाम है, उसका कैरेक्टर नेम क्या है, आप मुझे बताएंगे? चलिए तब तक हम चलते हैं अपने अगले गीत की तरफ।

सोनू निगम की आवाज में ये गीत संघर्ष फिल्म से आप सुन रहे हैं और जतिन ललित ने इसे संगीत दिया, समीर ने इसे लिखा। सुरीला सफर में आज मैं हूं आपके साथ अनुराधा और आपके मैसेजेस मुझ तक पहुंच गए हैं। हमारा एक बहुत ही खास मैसेज मुझे लगता है एक आया है कि इस कार्यक्रम से हम बुजुर्ग गाहे बघाए जुड़े हैं। ये मैं नहीं कहता कि ये कार्यक्रम सिर्फ बुजुर्गों के लिए ही है, पर चूंकि गाने पुरानी फिल्मों के बजते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। इस उम्र में दिल की शांति और दिमाग की ठंडक ज्यादा जरूरी है, इसीलिए कार्यक्रम से जुड़ते हैं। अब हमारे दिन दुपट्टा और दिल की आशनाई से बहुत दूर चले गए हैं, इसलिए हमारे लिए कार्यक्रम में दिल से जुड़ना मुमकिन नहीं होता है। मैं इस बात से इत्तफाक नहीं रखती हूं क्योंकि विविध भारती में हर वर्ग के लिए, हर उम्र वर्ग के लिए अलग अलग प्रोग्राम है, अलग अलग गीत है, अलग अलग थीम्स है जिस पर प्रोग्राम्स चलते हैं। तो आप जुड़े रहें विविध भारती के संग। एक और श्रोता लिखते हैं कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, कवि का जो मन करे वो अपनी कल्पना में वैसी ही उपमा दे सकता है। कभी आंखों की तुलना कभी झील से कभी सागर से, जहां मन डूब सा जाता है और ठहर सा जाता है, बस इसीलिए कभी आंखों को इस तरह से सोच लेता है। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि गांव में मिट्टी के घरों में खपरेल छत के नीचे बहुत ठंडक मिलती है, प्रतिदिन गोबर से लीप देने से घर शीतल रहता है, बचपन ऐसे घरों में ही गुजरा है। हमारे श्रोता कहते हैं कि कवि हृदय किसी भी शब्द से कुछ भी गढ़ लेते हैं, सागर जैसी आंखें मतलब सुंदर गहरी आंखें जिसका फिगर ऑफ स्पीच है यानी कि उपमा, जब कहां आंखें छोटी छोटी और सागर अथाह सा होता है फिर भी कितनी खूबसूरती से दोनों की तुलना कवि कर लेते हैं। सागर जैसी आंखों वाली का हम बहुत सारा मतलब निकाल सकते हैं, जैसे आंखें इतनी गहरी हो जिसका सागर जैसा ही ओर हो ना छोर हो और उसमें गोते लगाने को दिल करता हो। सागर जैसी आंखों पर बहुत से मैसेजेस मुझ तक पहुंचे हैं। सागर जैसी आंखों पर बहुत रिसर्च कर डाली है आप सबने, एंड बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस मैसेज के लिए, सागर जैसी आंखों के लिए। और मैं ये कहूंगी कि बहुत क्रिएटिविटी झलक रही है हर एक संदेश में और साथ ही पता चल रहा है कि हमारे जो श्रोता हैं वो कवि से कम नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है, इस चीज़ को बताया है, वो बहुत खूबसूरत है। और साथ ही साथ हमने ये पूछा था कि कभी कभी फिल्म में जो इस गीत में जो गीत हमने आपको सुनवाया उसमें जो नजर आती है जोड़ी, उसमें हीरोइन का नाम, एक्ट्रेस का नाम क्या है, तो बहुत से श्रोताओं ने सही जवाब दिया है, पिंकी कपूर, जी हाँ, और साथ ही विक्की। आपके मैसेजेस हम तक पहुंचाते रहिए और चलिए हम चलते हैं अपने अगले गीत की तरफ।

कि खो जाएं हम, तो इसी बात पर मुझे याद आ रहा है कि हमारी जो ये लिस्ट है कितनी मेल खाती है, ये भी तो मुझे बताइए। कौन कौन से शब्द आप ढूंढ चुके हैं और उससे जुड़े गीत जो अब तक आपसे मेल खा चुके हैं, आपकी लिस्ट से मेल खा चुके हैं, मुझे जरूर बताइए, मुझे अच्छा लगेगा। साथ ही ये भी बताना चाहूंगी कि जो हमारे श्रोता हैं हमारे साथ, उनकी लिस्ट गीतों की मैच खाए ना खाए, लेकिन हमारी जो सोचने की जो एक तरीके की सोच है वो जरूर मेल खाती है, क्योंकि जब मैं गाना यहाँ पे प्ले करती हूँ उससे पहले ही उसके जवाब आ चुके होते हैं, यानी कि मेरे सवाल पूछने से पहले ही आप उसका जवाब लिख देते हैं। जैसे कि ये गीत जब अभी चल रहा था तो आपने कहा कि दूसरा आदमी फिल्म का नाम है और ऋषि कपूर और राखी पर फिल्म आया गया है, लेकिन मैंने ये नहीं पूछा। सवाल को थोड़ा सा बदल देते हैं, क्या कहें, थोड़ी सी पहेली को थोड़ा और ट्रिकी बनाते हैं। तो एक काम करते हैं कि ये दूसरा आदमी फिल्म से जो गीत अभी आपने सुना, इसमें राखी और ऋषि कपूर तो थे ही, लेकिन इसके अलावा इस फिल्म में दो से तीन अभिनेता अभिनेत्री भी थे, तो आप उनके नाम लिख भेजें कि इस फिल्म में ऋषि कपूर और राखी के अलावा और कौन कौन है, ये जरूर मुझे भेजिए। अभी हम चलते हैं आपके संदेशों पर। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि उन्हें याद आ रहा है कि शादी के 15 दिनों बाद ही, जब उनकी शादी हुई थी उसके 15 दिनों के बाद ही उन्हें ट्रेनिंग पर जाना पड़ा था और करीबन 2000 किलोमीटर दूर, और अपनी धर्म पत्नी से बिछड़ना पड़ा था। उस वक्त उन्हें ये इबारत की ये जो सब बातें आज हैं वो कहीं ना कहीं उसे रिलेट कर पा रहे हैं, उसे जुड़ाव महसूस कर रहे हैं, वो बिछड़ना याद आ रहा है। जी हाँ, प्यार में बिछड़ना और उसके बाद फिर से मिलना, उसका मज़ा ही कुछ और होता है। साथ ही साथ सागर जैसी आँखों से आशय बातों को बिना बोले सामने वाले की आँखों में देख कर उसकी भावनाओं को समझना, ये भी कहा जाता है सागर जैसी आँखों वाली। साथ ही हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत में सपनों की बातें भी होंगी तो कुछ बातें हमारी भी। सपने देखना इंसान के मन का सबसे खूबसूरत हिस्सा होता है। ये वो दुनिया है जहां हम अपनी इच्छाओं को बिना किसी रोक टोक के जीते हैं। सपने वो नहीं जो नींद में आते हैं, सपने वो हैं जो नींद नहीं आने देते। सपने हमें आगे बढ़ने की ताकत देते हैं और हिम्मत देते हैं और उम्मीद जगाते हैं। जी हाँ, बहुत खूबसूरत संदेश लिखा है आपने। तो चलिए हम आते हैं अपने सवाल पर कि जो गीत आपने सुना दूसरा आदमी से, उसमें और कौन से अभिनेता या अभिनेत्री हैं, मुझे बताएं। चलिए चलते हमारे अगले गीत की तरफ।

मोहब्बत बड़े काम की चीज है। त्रिशूल फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथियों की आवाजों में खयाम का संगीत था। साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा। और इस गीत के बारे में हमारे श्रोता लिखते हैं कि आप इस गीत से भी कुछ घुमा फिरा कर सवाल पूछ लेंगे तो हम एकदम तैयार हैं, पर हो सकता है कि आपने ऐसा लिखा तो अब हम कुछ और घुमा फिरा कर पूछते हैं, है ना? फिलहाल जो सवाल हमने पूछा था, दूसरा आदमी, उसमें कौन कौन है? कई लोगों ने हेमा मालिनी लिखा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो सही है, है ना? ऋषि कपूर, नीतू सिंह, राखी, शशि कपूर, परीक्षित साहनी और देवेंद्र वर्मा, ये इस फिल्म में दिखाए गए मेन लीड्स में। और साथ ही साथ प्रमिला चोपड़ा ने भी एक गीत गाया है, ऐसा हमारे एक श्रोता ने लिखा है। और हमारे श्रोताओं की प्रशंसा करना चाहूंगी मैं कि वो सिर्फ गाने पर ध्यान नहीं दे रहे, सवालों पर ध्यान नहीं दे रहे, साथ ही साथ जो फिलर बज रहा है वो क्या है उसकी डिटेल्स भी मुझे भेज रहे हैं। साथ ही साथ गीत के शुरुआत में जो होता है इंट्रो म्यूजिक जिसे कहा जाता है, उसके बारे में भी मुझे लिखकर भेज रहे हैं। और ये दर्शाता है कि आप संगीत से कितने करीब हैं। और विविध भारती को ऐसे श्रोता मिले हैं, बहुत अच्छा लगता है कि आप संगीत की जानकारियां साझा कर रहे हैं। साथ ही साथ एक श्रोता लिखते हैं, क्या मौसम है, चल कहीं दूर निकल जाएं। ऐसा मेरे साथ कई बार होता है। घर के पास एक जंगल है अक्सर, और उस जंगल की जानिब निकल जाती हूँ मैं अक्सर। वहां चीड़ के ऊंचे दरख्त हैं, हवा के झोंके हैं, वो जब झूमते हैं तो उनकी नुकीली पत्तियां साए साए करती है, वो आवाज सुकून देती है मन को। साथ ही हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि मौसम तो ऐसा है कि घर से बाहर जाने को मन ही नहीं करता, और कवि न जाने क्या क्या कह रहा है। विविध भारती के सारे कार्यक्रम हर वर्ग तथा हर उम्र के लोगों के लिए बने हैं। खास करके पोस्ट कोरोना पीरियड के बाद विविध भारती की पॉपुलैरिटी और ज्यादा बढ़ गई है, और श्रोता सीधे तौर पर जुड़ गए हैं। बिल्कुल सही बात है। हमारे एक और श्रोता कहते हैं कि सपना देखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके कारण अपना भविष्य दांव पर लगाना वो बिल्कुल ठीक नहीं हो सकता। और साथ ही साथ हमारे एक और श्रोता लिख रहे हैं कि उनके घर पर कुछ काम चल रहा है, घर का कुछ काम चल रहा है, यानी कि कंस्ट्रक्शन चल रहा है, और गर्मी अपनी चरम सीमा पर है, और थोड़ी थोड़ी देर में लगता है कि आराम कर लें। साथ ही साथ आम का पना, छाछ, कभी नींबू पुदीने का शरबत, बस ठंडे पेय पदार्थों का सेवन करते रहें। और साथ ही साथ ये जो गीत है इनके साथ हम बने रहें। बिल्कुल, चलिए आपको ले चलते हैं अगले गीत की तरफ। और अगला गीत जो अभी आप सुनेंगे, क्या आप बता सकते हैं कि वो कौन सी फिल्म का गीत है? जी हाँ, ये जो गीत है ये कौन सी फिल्म से लिया गया है, मुझे बताएं।

रात कली एक ख्वाब में आई और फिल्म का नाम था बुढ़ा मिल गया। जी हाँ, और बहुत सारे श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, यही फिल्म का नाम है। और साथ ही साथ ये भी लिखा है कि नवीन निश्चल पर यह फिल्म आया गया, गीत है साथ ही अर्चना है इस फिल्म में, और बिल्कुल सही। साथ ही हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि आप बहुत ही आसान सवाल आपने ये पूछा, विविध भारती के श्रोताओं के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ा मुश्किल सवाल नहीं है, लेकिन आपसे वादा करते हैं कि अगले प्रोग्राम में और कठिन से कठिन सवाल लेकर आएंगे। लेकिन ये भी है कि जब आपके जवाब आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है और आपसे एक जुड़ाव महसूस होता है। बहुत ज़्यादा कठिन सवाल लेकर आएंगे तो हो सकता है आपके मैसेजेस कम आए मुझ तक, है ना। साथ ही साथ हमारे श्रोताओं ने लिखा है कि बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि आज आपके द्वारा ये पहला प्रोग्राम प्रस्तुत किया जा रहा है जिसका नाम है सुरीला सफ़र, और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत रोचक प्रेजेंटेशन की आपने, प्रस्तुतिकरण किया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल मुलाकात होती रहेगी इस शो में आपके साथ। और जितने भी श्रोता हैं जिन्होंने भी हमारे बारे में लिखा है, आज इस प्रोग्राम के बारे में लिखा है, उनका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। एक श्रोता हमारी लिखती है कि हवाओं के नर्म झोंके हर पल तुम्हारा ही एहसास दिलाते हैं, दूरी में सुख भी और विरह भी, जैसे पहाड़ का रिश्ता बादलों से है वैसा ही मेरा रिश्ता तुमसे है। बहुत ही खूबसूरत ये मैसेज है, ये संदेश है। तो चलिए अब इस प्रोग्राम की का जो आखिरी गीत है आप तक पहुंचाते हैं।

बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस प्रोग्राम से जुड़ने के लिए। और ये गीत आप सुन रहे थे अमानत फिल्म से, साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा था। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए।

नमस्कार, आज की त्रिवेणी में चलने की बातें। साथियों, चलती हुई हवा बंद हो जाए तो बुरा हाल हो जाता है। चलती हुई सड़क पर अगर कोई कार खराब होकर थम जाए तो पूरा ट्रैफिक अस्त व्यस्त हो जाता है। यहाँ तक कि कई बार दुर्घटना भी हो जाती है, और अगर चलती हुई घड़ी रुक जाए तो समय का पता ही नहीं लगता। समय के साथ चलना है तो घड़ी को भी चलते रहना चाहिए, चाहे जीवन की घड़ी हो या शरीर की घड़ी, दोनों का चलते रहना ही अच्छा है। एक लंबी कतार भी धीरे धीरे छोटी हो जाती है, क्योंकि उसमें खड़े लोग लगातार आगे चलते रहते हैं। चलना हमें वर्तमान से जोड़ता है और आने वाले कल की ओर ले जाता है। हमें ये याद रखना चाहिए कि चलती का नाम ही गाड़ी होता है। चलना जीवन की निशानी है और सक्रियता की पहचान है।

चलना एक ऐसी क्रिया है जो शरीर के साथ ही जीवन के लिए भी जरूरी है। चलते रहने से जहाँ शरीर के कलपुर्जे रवा होते हैं, वही जीवन में भी गति बनी रहती है। इसी गति के कारण हमें याद रहता है कि हम अचल नहीं हैं। अगर कभी गति की लय टूट जाए, चलना छूट जाए, रास्ते बंद हो, तो जो थम जाता है वो पीछे ही रह जाता है। मगर जो कदम बढ़ाकर चलने की कोशिश करता है तो वो फिर रवानगी में आ जाता है। जीवन अबाध चलता रहे इसके लिए जरूरी है कि अगर आसपास कोई थमा हुआ या अचल दिखे, जो मन से टूट गया हो, तो उसे आश्वासन का हाथ देकर एक नई ऊर्जा दी जाए, उसे भी साथ चलने को प्रेरित किया जाए। रुके हुए को चलने का उत्साह देने से ही तो सबकी जिंदगी चलती रहती है।

चलने का मतलब सिर्फ कदम बढ़ाना नहीं होता, कई बार मन ही मन हम कहाँ कहाँ पहुँच जाते हैं। जिस तरह नदी की धारा स्वच्छ और निर्मल रहती है क्योंकि वो निरंतर बहती है, रुके हुए पानी में तो काई जम जाती है और वो किसी काम का नहीं रहता, उसी तरह चलना भी एक ऐसी रिसाइकलिंग प्रक्रिया है। मन पर काई नहीं जमने देती, बल्कि मन को निर्मल कर विचारों को बड़ी सुंदरता से संवार देती है। चलना एक किस्म की गतिशीलता है जो आचार, व्यवहार और विचारों को लगातार खंगालती रहती है। तभी तो कई बार लोग साथ ना मिलने पर भी अकेले ही चल पड़ते हैं और मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं। यही तो जीवंतता है।

सुनहरे दौर के सदा बहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदा बहार नगमे।

0: ये है विविध भारती। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। क्वाड ने स्थिर और सुरक्षित ऊर्जा बाजारों की प्रतिबद्धता व्यक्त की। भारत और अमेरिका ने महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों की आपूर्ति, खनन और प्रसंस्करण को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के सांचू में सीमा चौकी का दौरा किया। राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। सऊदी अरब में लाखों जायरीन आज हज की मुख्य रस्म अदा कर रहे हैं। और आईपीएल क्रिकेट में धर्मशाला में क्वालिफायर वन में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की अध्यक्षता में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। क्वाड समूह ने स्थिर और सुरक्षित ऊर्जा बाजारों की प्रतिबद्धता व्यक्त की। सदस्य देशों ने वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी पहल और समुद्री क्षेत्र में गतिविधियों और स्थितियों की जानकारी के लिए साझा तस्वीर पर सहमति जताई। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि क्वाड बंदरगाह बुनियादी ढांचे पर एक विशेषज्ञ पैनल बनाने पर विचार करेगा। फिजी में एक पायलट बंदरगाह परियोजना और समुद्र के नीचे बिछी केबलों पर भी सहयोग करेगा। उन्होंने कहा कि बैठक के मुख्य नतीजों में से क्वाड क्रिटिकल मिनरल फ्रेमवर्क को अंतिम रूप देना था। क्वाड देशों ने भारत अमेरिका क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क पर भी हस्ताक्षर किए। हिंद प्रशांत ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी प्रबंधन, नीति, अंतर्राष्ट्रीय बाजार विश्लेषण और आपातकालीन प्रतिक्रिया अभ्यासों के क्षेत्र में क्वाड पहल की घोषणा भी की गई। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में डॉ जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा।
2: इकोनॉमिक रेजिलियंस शुड बी प्रमोटेड।
3: बैठक में आर्थिक मजबूती बनाए रखने, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, विश्वसनीय और सुरक्षित तकनीकों का प्रसार करने तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने पर चर्चा हुई। ऊर्जा और उर्वरक की वर्तमान उपलब्धता के साथ साथ महत्वपूर्ण खनिजों और संसाधनों की उपलब्धता पर भी बात हुई। हमारा लक्ष्य आपसी सहयोग को मजबूत करना तथा दूसरों की सहायता करना है। हम क्वाड देश आदान प्रदान से विकास और समृद्धि की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं।
2: As we intend to do.
1: श्री जयशंकर ने कहा कि लोकतांत्रिक देशों के तौर पर आतंकवाद के साझा खतरे का मुकाबला करने पर भी हमारा ध्यान केंद्रित है।
2: As democratic nations,
3: लोकतांत्रिक राष्ट्र होने के नाते हमने आतंकवाद के साझा खतरे का मुकाबला करने पर भी ध्यान दिया। हमारी आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति है। आतंकवादी हमलों से प्रभावित राष्ट्रों को आत्मरक्षा का अधिकार है। स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के कई आयाम और पहलू हैं। बैठक में इनमें से कई क्षेत्रों में हुई प्रगति की समीक्षा की गई, जबकि अन्य क्षेत्रों में खोज को प्रोत्साहित किया गया। आने वाले दिनों में चाहे वह आर्थिक गतिविधि हो, ऊर्जा व्यापार हो या

0: समुद्री व्यापार हिंद प्रशांत क्षेत्र विश्व के लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाएगा।
1: विल बिकम इवन मोर इम्पोर्टेंट टू द वर्ल्ड।
2: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क क्वाड देशों को आर्थिक नीति के साधनों का लाभ उठाने और निवेश का समन्वय करने में मार्गदर्शन करेगा। उन्होंने कहा कि हिंद प्रशांत ऊर्जा सुरक्षा पर क्वाड पहल संकट के दौरान देश क्षेत्र में ऊर्जा की आपूर्ति बनाए रखने में मदद करेगी। श्री रूबियो ने बताया कि अमरीका इस साल का और विस्तार करने के उद्देश्य से इस वर्ष के अंत में ईंधन सुरक्षा मंच के लिए क्वाड देशों की मेजबानी करेगा। श्री रूबियो ने कहा कि क्वाड देश मजबूत मूल्यों को साझा करते हैं और उनके हित आपस में जुड़े हुए हैं।
3: सहयोग के जिन क्षेत्रों पर हम मिलकर काम कर रहे हैं वे हाल ही में दुनिया भर में हुई घटनाओं के कारण और भी अधिक प्रासंगिक और महत्वपूर्ण हो गए हैं। इसलिए आज मुझे लगता है कि हम उन क्षेत्रों में अपने संबंधों को क्रियान्वित करने में और भी अधिक प्रगति करेंगे जिन पर हम सहयोग कर सकते हैं। क्वाड के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम साझा हितों के क्षेत्रों में विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक साथ आते हैं। क्वाड तेजी से एक ऐसा मंच बनता जा रहा है जिसके माध्यम से हम कार्यवाही कर सकते हैं।
2: Action. जापान के विदेश मंत्री तोशीमित्सु मोतेगी ने होर्मुज जल डमरू मध्य में स्वतंत्र और सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने के साथ पश्चिम एशिया में स्थिरता लाने में कूटनीतिक प्रयासों के महत्व पर बल दिया। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग ने कहा कि क्वाड ने आज सुरक्षा पहल और महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों में कई प्रयासों को आगे बढ़ाया है। भारत और अमेरिका ने आज महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों की आपूर्ति, खनन और प्रसंस्करण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण द्विपक्षीय ढांचे पर हस्ताक्षर किए। ये ऐतिहासिक समझौता विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बीच हुआ। आज दोपहर बाद जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने आज राजस्थान में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित सांचू सीमा चौकी का दौरा किया। उन्होंने इस क्षेत्र में तैनात सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के जवानों से बातचीत की और देश की सीमाओं की रक्षा के प्रति उनके समर्पण की सराहना की। इस दौरान गृहमंत्री ने राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम के दूसरे चरण की शुरूआत की। श्री शाह बीकानेर स्थित बीएसएफ मुख्यालय में सीमा सुरक्षा बल पर एक बैठक की अध्यक्षता करेंगे। उत्तर प्रदेश में आज आगरा लखनऊ और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर दो अलग अलग सड़क हादसों में 10 लोगों की मौत हो गई। पहली घटना में उन्नाव जिले के पास आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बस पलटने से 6 लोगों की जान चली गई और 10 से अधिक लोगों के घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया है कि बस दिल्ली से गोरखपुर जा रही थी, तभी औरास पुलिस थाना क्षेत्र के पास चालक ने नियंत्रण खो दिया जिससे बस पलट गई। एक अन्य घटना बाराबंकी जिले के पास पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हुई जिसमें 4 लोगों की मृत्यु हो गई। ओडिशा के कालाहांडी जिले में निर्माणाधीन सेप्टिक टैंक में दम घुटने से 6 लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। यह घटना मदनपुर रामपुर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत गौड़ कालाखुंटा गांव में हुई। पुलिस के अनुसार मजदूर सेप्टिक टैंक से लकड़ी के ढांचे को हटा रहे थे, तभी जहरीली गैसों या ऑक्सीजन की कमी के कारण उनका दम घुट गया। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने इस त्रासदी पर गहरा दुख व्यक्त किया है और मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोपवे के 65 कैबिनों में 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल बचाव अभियान की सराहना की है। सरकार देश में एक मजबूत, भरोसेमंद और टिकाऊ सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम विकसित करने के लिए कई महत्वपूर्ण पहल कर रही है। सेमीकंडक्टर इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत निर्माण और पैकेजिंग की 12 परियोजनाओं के साथ साथ 24 सेमीकंडक्टर डिजाइन परियोजनाओं को भी मंजूरी दी जा चुकी है। दूरसंचार विभाग ने नागरिकों के लिए इंटरनेट का उपयोग आसान बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस पीएम वाणी के अंतर्गत सुधारों की पहल की है। संचार मंत्रालय ने कहा है कि सभी पीएम वाणी हितधारकों को संशोधित दिशा निर्देशों को लागू करने और इस वर्ष जुलाई तक पूरे इकोसिस्टम में नई उपयोगकर्ता अनुकूल सुविधाओं को चालू करने का निर्देश दिया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने आज नई दिल्ली में अपनापन नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव नामक पुस्तक का विमोचन किया। ये पुस्तक केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लिखी गई है। इस अवसर पर श्री नायडू ने कहा कि सभी को विशेषकर उभरते हुए राजनेताओं को इस पुस्तक को अवश्य पढ़ना चाहिए। श्री देवेगौड़ा ने कहा कि पुस्तक एक सामान्य राजनीतिक जीवन नहीं बल्कि ये दर्शाती है कि श्री मोदी और श्री शिवराज ने जनता के कल्याण के लिए कैसे मिलकर काम किया। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि पुस्तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके दशकों के अनुभव पर आधारित है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूर्ण होने पर उन्हें बधाई दी।
4: आज 26 मई है, ये वो ऐतिहासिक दिन है जब श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की थी। मैं भी उनको बधाई देता हूँ और आप सब भी उनका अभिनंदन करें। लेकिन मेरा और उनका साथ 35 साल पुराना है और इन 35 सालों में मैंने उनको हर क्षण देश के लिए जीते हुए देखा है। उनका हर कदम देश की प्रगति और विकास के लिए उठा है। मैंने उनके दिल को जनता के लिए धड़कते हुए देखा है।
2: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी सरकार के आज 12 साल पूरे होने पर इसे भारत की सभ्यता और विकास यात्रा का बदलाव लाने वाला दौर बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि 26 मई 2014 को देश के प्रशासन, सोच, नेतृत्व और राष्ट्रीय संकल्प में एक निर्णायक बदलाव आया जब श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यभार संभालने के बाद से देश ने अभूतपूर्व आत्मविश्वास और नए सांस्कृतिक पुनर्जागरण का ऐतिहासिक क्षण देखा है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नवीन ने सरकार के सुशासन और राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित पिछले 12 वर्ष के कार्यकाल को अभूतपूर्व बताया। बीजू जनता दल के पूर्व राज्यसभा सांसद देवाशीष सामंतराय भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। उन्हें नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में भाजपा के महासचिव अरुण सिंह और ओडिशा के प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन सामल सहित वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में पार्टी में शामिल किया गया। खाद्य ग्रामोद्योग आयोग ने स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने की दिशा में नया रिकॉर्ड बनाया है। वित्त वर्ष 2024-25 में कारोबार 1,87,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए खाद्य ग्रामोद्योग उद्योग के अध्यक्ष मनोज कुमार ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और लाखों ग्रामीण कारीगरों की मेहनत के फलस्वरूप प्राप्त हुई है। घरेलू शेयर बाजार के संविधि सूचकांक में दोपहर के कारोबार में गिरावट का रुख है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 251 अंक गिरकर 76,238 जबकि निफ्टी 50 अंक की गिरावट के साथ 23,982 पर था। सऊदी अरब में वार्षिक हज यात्रा का सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण दिन आज अराफात का दिन है। दुनिया भर से लाखों मुसलमान जुलहिजा की 9 तारीख को मक्का के पास अराफात के मैदान में इकट्ठा हुए हैं ताकि वे हज की प्रमुख रस्म अदा कर सकें। जायरीन निमरा मस्जिद में खुतबाए हज या हज का उपदेश सुनेंगे और शाम को मुजदलिफा के लिए रवाना होने से पहले दोपहर और शाम की नमाज एक साथ अदा करेंगे। इस रस्म को हज पूरा करने के लिए अनिवार्य माना जाता है। मुजदलिफा से जायरीन कल सुबह कुर्बानी और शैतान को पत्थर मारने के लिए प्रतीकात्मक रस्म के लिए मिना लौटेंगे। इस साल के हज में 1,75,000 से भी ज्यादा भारतीय जायरीन हिस्सा ले रहे हैं। अमरीका और ईरान के बीच तनाव और बढ़ गया है। अमरीकी सेना ने दक्षिणी ईरान में नए हवाई हमले किए हैं। इन हमलों को वाशिंगटन ने अपने सैनिकों की सुरक्षा के लिए आत्मरक्षा में की गई कार्रवाई बताया है। आईपीएल क्रिकेट में आज क्वालिफायर 1 में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। ये मुकाबला धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। विजेता टीम फाइनल में पहुंचेगी जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफायर 2 में एक और मौका मिलेगा। मौसम विभाग ने बताया है कि मिजोरम में आज मानसून की शुरुआत हो गई है। केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून के कल तक पहुंचने की संभावना है। एक रिपोर्ट। मौसम विभाग ने केरलम के तिरुवनंतपुरम, कोल्लम और अल्लापुझा जिलों में आज अलग अलग स्थानों पर तेज वर्षा की आशंका को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। कई दक्षिणी क्षेत्रों में लगातार बारिश जारी है। कोच्चि, मुन्नार, कुमारकोम, निलाक्कल, कुमिली, सबरीमला, वर्कला और पोनमुडी सहित कई स्थानों पर आज सुबह 10 बजे से लगभग 5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। लक्षद्वीप के अमिनी, अगाती और कवरत्ती में भी 5 से 15

0: मिलीमीटर के बीच बारिश हुई है। अधिकारियों ने बताया है कि मौसम की स्थिति पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पल्लुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कनकलता।
1: इस बीच विभाग ने आज दिल्ली में भी भीषण गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है। राजधानी में कल तक लू की स्थिति की संभावना है। हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिम राजस्थान में आज भी भीषण लू चल सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। क्वाड ने स्थिर और सुरक्षित ऊर्जा बाजारों की प्रतिबद्धता व्यक्त की। भारत और अमेरिका ने महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों की आपूर्ति, खनन और प्रसंस्करण को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृहमंत्री अमित शाह ने राजस्थान के सांचू सीमा चौकी का दौरा किया। राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। सऊदी अरब में लाखों जायरीन आज हज की मुख्य रस्म अदा कर रहे हैं। और आईपीएल क्रिकेट में धर्मशाला में क्वालिफायर वन में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये है विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। लीजिए सुनिए कार्यक्रम सदाबहार नगमे में।

आज के सदाबहार नगमे की पहली पेशकश अभी आप सुन रहे थे उड़न खटोला फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में शकील बदायूनी ने से लिखा नौशाद का संगीत।

0: आशा भोसले और मोहम्मद रफी को आप सुन रहे थे इस गीत में तू नहीं और सही, फिल्म का नाम था। असद भोपाली ने इसे लिखा और रवि का संगीत।
1: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सदाबहार नगमे में।

लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाजों में गीत श्री 420 से आप अभी सुन रहे थे। शैलेंद्र ने इसे लिखा और शंकर जयकिशन की तर्ज थी। अगला गीत सदाबहार नगमे में लीजिए।

0: जब जब फूल खिले, इस फिल्म से गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में, साथी नंदा ने साथ दिया था, आनंद बख्शी ने इसे लिखा और कल्याण जी आनंद जी की तर्ज थी।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी,
2: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां,
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत,
3: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी,
1: गुजरे

0: और की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत
1: तुम्हारी याद सताते हैं।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे।

लीजिए सुनिए आज के इस प्रोग्राम सदाबहार नगमे का आखिरी नगमा। मधुमती फिल्म से आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और सखियों की आवाजें। शैलेंद्र ने इसे लिखा, सलिल चौधरी का संगीत।

0: ही सहेली
1: कार्यक्रम सखी सहेली सुनने वाले सभी सखियों और सखाओं को मंदाकिनी जोशी और
2: मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार।
1: भाई मंजरी, क्या बात है, आज बहुत ही खुश मिजाज लग रही हो।
2: जब आप मिलती है ना तो खुशी वैसे ही अपने आप बाहर निकल के आ जाती है, और जब सखी सहेली का मंच होता है और फिर लगता है कि हमें कितने सारे लोग सुन रहे होंगे कि आज ये दोनों फिर आ गई है, फिर क्या क्या बोलेंगी।
1: हाँ, ये तो बात है ना। देखिए, दोपहर की जो गर्मी है ना, इसमें अगर थोड़ी हल्की फुल्की चुहलबाजी हो जाए, बोछार हो जाए हंसी मजाक की, तो हमारी जो सखियां हैं, जो सखा है ना, वो भी हल्की ठंडक महसूस करने
2: महसूस करते हैं, और जो थोड़ा सा झपकी लेते हैं वो भी थोड़े से एक्टिव हो जाते हैं कि नहीं भाई, अभी
1: क्या बात करने वाली है, आज
2: क्या बोलने वाली है।

0: तो बताओ आज क्या बात करने वाले हैं।
1: देखिए जब अपने छुट्टियों का समय शुरू हो गया तो जब परिवार के कुछ लोग कहीं बाहर जाते हैं और जाते जाते वो बता जाते हैं, देखो तुम घर पर हो और मेरे आने से पहले ये काम ठीक करा लेना, कुछ बिजली का खराब होगा तो वो करा लेना, कुछ चीजें लानी खरीद के राशन पानी लाना है वो भर लेना, नहीं तो किचन के डिब्बे आप ठीक करा लेना, नहीं तो कूलर ठीक करा लेना, इस तरह की बहुत सारी छोटी छोटी चीजें वो बता के जाते हैं। तो क्योंकि हमें तो घर संभालना है तो वो तो बाहर चले गए घूम फिर।
0: तो मुझे लग रहा है मंजरी कि तुम्हारे पतिदेव जो है कहीं बाहर गए हैं और तुम्हें सारी बातें कहकर गए हैं कि मंजरी मेरे आने तक ये सारे काम हो जाने चाहिए।
1: वंदागिनी मैम देखिये, वंदागिनी जी क्या होता है कि ये सारी बातें जो होती ना ये हर घर में होती है। कुछ मेरे घर की बात आपने जैसे कह दी तो हम भी सोच सकते हैं कि भाई आपके घर में भी ऐसी चीज,
0: मेरे घर में तो ये हो ही रहा है। हमारे घर के कुछ लोग जो बाहर घूमने गए हैं हमारे अपने लोग, जब वो लौटेंगे तो उनके आने से पहले कुछ काम ऐसे हैं जो हमें करके रखने हैं।
1: बिल्कुल।
0: हालांकि उन्होंने उस अंदाज में नहीं कहा होगा कि भाई काम हो जाने चाहिए, लेकिन आपके अंदर एक जिम्मेदारी की भावना होती है कि भाई कोई हमारे परिवार के लोग घूमने गए हैं, जब वो वापस आए तो उन्हें ये सुविधा हम दे दें क्योंकि हम घर पर ही हैं।
1: हम घर पर हैं। और इसमें बड़ा वो भी रहता है कि
0: आनंद भी आता है,
1: आनंद भी आता है। और जब काम के बीच में हम थोड़ा समय निकाल के लिए अपने घर के लिए देते हैं तो लगता है कि अरे आज कर लेंगे, अच्छा अभी तो बहुत दिन है वो उनके आने में, अभी कर लेंगे। जब आखिर के दिन बचते हैं ना
0: तब
1: भागदौड़ मचती है कि भैया अब कर लो, नहीं आएंगे तो फिर
0: वही अधूरापन मिलेगा, व्यवस्था मिलेगी।
1: मतलब कहने का मतलब है खुद से काम करने के लिए हमें आगे बढ़ना ही पड़ता है।
0: बिल्कुल, ये तो है, अगर हम खुद से नहीं बढ़ेंगे तो वो काम नहीं होता है। अब आप खुद आगे बढ़िए और बताइए कि आज हमारे विषय क्या है बातचीत के।
1: तो देखिए हम बताते हैं कि आज हम लोग बात करने वाले हैं जो शादी में जनवासे के किस्से हुआ करते थे, वो आप सभी के ने ये चीजें महसूस करी होंगी। तो चुलबुले से किस्से हैं, रूठने मनाने के किस्से होते हैं, तो आप साझा कीजिए, याद करिए अपने मेमोरी को और लिखिए। और उद्यमी महिला में हम बात करने वाले हैं राधिका अग्रवाल, ऑनलाइन मार्केट प्लस शार्प क्लूज की सह संस्थापक हैं, इनके बारे में बात करेंगे। और मुहावरों की दुनिया में कान का कच्चा होना, तो इसके बारे में हमारे सभी साथी सखियां सहेलियां सभी लोग लिखकर भेजे।
0: हाँ, लिखे ये कि क्या वो खुद कान के कच्चे हैं, ये भी लिखना जरूरी है। अभी क्या होता है हमारे श्रोता क्या करेंगे, कान के कच्चे मुहावरे का अर्थ लिखने लग जाएंगे। वो अर्थ हमें नहीं लिखना है, अर्थ तो आप जानते ही हैं।
1: आप बता सकते हैं कि फलाना अभी कान का कच्चा है।
0: हाँ, ऐसी जिंदगी में हमारे साथ हुआ कि किसी कोई व्यक्ति कान का कच्चा था और उसने बात को सुनकर हम पे ऐसा आरोप मढ़ दिया। तो ये जो किस्से हैं जिंदगी में ऐसा बहुत बार होता है। हमारे अपने घर में ही कुछ लोग, हमारे अपने भाई बहन अपने माता पिता भी हो जाते हैं। कई बार हम कहते हैं अरे भाई माँ आपको पापा ने और आपने बात मान ली, तो आप कान की कच्ची हो इसका मतलब।
1: तो इस तरह की छोटी छोटी बातें लिखकर भेजिए जिसमें आपको भी मजा आए, हंसी आए और हमें भी पढ़ के अच्छा लगे। और अच्छे काम की शुरुआत खुद से, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन मंदाकिनी जी उससे पहले तो हम लोग गीतों से समा बांध देते हैं।
0: बिल्कुल, सुनते हैं ये गीत।

0: हाँ तो मंजरी, अब हम अच्छे काम की शुरुआत कर लेते हैं।
1: बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे चीजें आ गई, खत आ गए कहना चाहिए, तेरा खत लेके सदम, तो ये कहना चाहिए हमारे पास हमारे श्रोताओं के बहुत
0: खत आ गए हैं,
1: खत आ चुके हैं और इस विषय पर भी आ गए कि अच्छे काम की शुरुआत खुद से करें। तो क्या है कि मंदाकिनी जी, समाज को बेहतर बनाने की बात हर व्यक्ति करता है, लेकिन हम चाहते हैं कि लोग ईमानदार बने, अपने वातावरण को स्वच्छ रखें, रिश्तों में भी प्रेम उनके बना रहे और हर जगह शांति और सहयोग दिखाई दे। लेकिन अक्सर हम ये भूल जाते हैं ना कि किसी भी अच्छे बदलाव की शुरुआत दूसरों से नहीं बल्कि स्वयं से होती है। अगर हम किसी से अच्छा करवाना चाहते हैं तो हमें खुद अच्छा करने के बारे में पहले सोचना चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: यदि हर व्यक्ति अपने व्यवहार, सोच और कर्म को सुधारने का प्रयास करे तो पूरा समाज अपने आप बेहतर बन सकता है। इसलिए कहा जाता है अच्छे काम की शुरुआत खुद से करें, यानी अगर कुछ कोई किसी के अंदर क्वालिटी है, गुण है, वो अच्छा करना चाहता है तो आप उसको एक अवसर जरूर दें, उसको देखें कि वो कितना अच्छा कर सकता है।
0: बिल्कुल, ये तो आपने कही मंजरी बात की, दूसरा आप पर नजर लगाए हुए है कि भई आपको हम मौका दें, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि स्वयं में भी बदलाव करना बहुत जरूरी है। अभी क्यों जरूरी है? क्योंकि हम समाज का ही एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और समाज अनेक व्यक्तियों से मिलकर बनता है। यदि हम अच्छे हैं तो परिवार अच्छा होगा, परिवार अच्छा है तो समाज अच्छा होगा और देश अच्छा बनेगा। अक्सर क्या होता है, दूसरों की गलतियां हम गिनाते रहते हैं लेकिन अपनी कमियों पर हम ध्यान नहीं देते, जबकि सच्चाई ये होती है कि सुधार की पहली सीढ़ी क्या है,
1: आत्म सुधार है। और देखिए, हम चाहते हैं ना कि लोग समय का सम्मान करें, तो पहले हमें स्वयं समय का पालन करना चाहिए। और यदि हम चाहते हैं कि बच्चे संस्कारी बने तो हमें अपने व्यवहार का उदाहरण प्रस्तुत करना होगा। केवल उपदेश देने से बदलाव नहीं आता है बल्कि अपने कर्मों से प्रेरणा देने से बदलाव आता है। छोटी शुरुआत उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है, यानी अच्छे काम के लिए हमेशा बड़े मंच या बहुत धन की आवश्यकता नहीं होती है। छोटी छोटी आदतों से ही समाज में बड़ा परिवर्तन हम ला सकते हैं, जैसे कि सड़क पर कचरा ना फैलाना या हमारे आसपास गली मोहल्लों में हम कचरा ना डालें, जरूरतमंद की सहायता करें, बुजुर्गों का सम्मान करें और पेड़ लगाएं, पौधे लगाएं, और क्या कहते हैं कि जो हमारे पशु पक्षी हैं उनके लिए हम भोजन और पानी की व्यवस्था करें। इस तरह के हम छोटे छोटे काम खुद भी कर सकते हैं।
0: अपने घर में हम पानी और बिजली को बचाएं, कितना पानी का नुकसान करते हैं हम लोग, पानी चलता रहता है नलों से लगातार। आपने देखा होगा छोटे शहर में तो लोग पानी से घर धोते हैं और धोते ही जाते हैं, बाल्टियों भर भर के बाल्टियां बाहर फेंक देते हैं, तो ये पानी का इतना दुरुपयोग हम करते हैं जिसका हमें अंदाजा नहीं है कि। और बिजली चल रही है तो चले, दिन भर कूलर, दिन भर एसी में हम बैठे रहने के आदि हो गए हैं। तो हम यहाँ से शुरुआत करें ना, कम से कम पेट्रोल बचाएं, हम अपना ईंधन बचाएं। हम छोटी सी थोड़ी सी दूर पर जाते हैं और अपनी स्कूटी स्टार्ट कर लेते हैं, या कार चलाने की हमें आदत है तो हम कार लेकर भी चले जाते हैं, गाड़ी लेकर भी हम चले जाते हैं, लेकिन हम पैदल नहीं चलते हैं। तो ये चीजें जो है, खुद में सुधार लाना बहुत जरूरी है। सच बोलना सीखें, ईमानदारी अपनाना सीखे। हम दूसरे से उम्मीद करती हैं कि वो सच होना चाहिए, सच बोलने वाला होना चाहिए, लेकिन अपने ऊपर जब बात आती है तो हम झूठ का सहारा ले लेते हैं। और ये काम छोटे जरूर लगते हैं मंजरी, लेकिन इनका प्रभाव बहुत गहरा होता है हमारे जीवन में। जब व्यक्ति अच्छा काम करता है तो दूसरे लोग उससे बिल्कुल प्रेरित होते हैं।
1: बिल्कुल, और हमारे साथी भी लिखते हैं मंदाकिनी जी कि हमारी आदत होती है कि अक्सर हम सबको सलाह देते रहते हैं, दूसरों के लिए भी सोचना चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए, लेकिन खुद ऐसा करने से झिझकते हैं। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो रास्ता चलते रुक कर किसी जरूरतमंद की सहायता करते हैं। अगर सब ये सोचे कि कोई करे या नहीं, मुझे तो जरूरतमंदों की सहायता करनी ही है और किसी को कहने से बेहतर मैं खुद वो काम करूं, तो हमें देख कर हो सकता है दूसरे लोगों की सोच में भी बदलाव आए। बिल्कुल सही बात है कि अगर हम किसी के लिए, अपने लिए अच्छा चाहते हैं तो दूसरे के लिए भी आप अच्छा करना सोचिए, आपके लिए खुद अच्छा होने ही लगेगा। वो
0: बिल्कुल,
1: आपको आपके कर्मों का फल आपको खुद मिलेगा, लेकिन आप अच्छा तो करने की सोचिए।
0: बिल्कुल, कहते हैं कि एक राजा कैसा व्यवहार चाहता है जैसा दूसरा राजा चाहता है, यानी एक राजा को दूसरे राजा से पहले अच्छा व्यवहार करना होगा, तभी तो दूसरा राजा पहले राजा से अच्छा व्यवहार करेगा। तो वही बात हमारे सामने होती है कि हम जब

0: दूसरे के काम को प्रेरित करेंगे, अच्छा करेंगे, तो हमें लगेगा कि हम खुद सीख रहे हैं। जैसे एक श्रोता लिखते हैं कि अच्छे काम की शुरुआत खुद से एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। बदलाव की शुरुआत हमेशा खुद से होती है। यहाँ कुछ व्यवहारिक तरीके हैं जिन्हें आप खुद को बेहतर बनाकर अच्छे काम की शुरुआत कर सकते हैं। छोटे कदमों से शुरुआत करें बहुत बड़ा लक्ष्य लेने के बजाय। रोजमर्रा के छोटे छोटे सुधारों पर ध्यान दें, जैसे रोज 30 मिनट पढ़ना या नियम व्यायाम करना सीखें। स्वयं की आदतों का विश्लेषण करें। अपनी दिनचर्या में से बुरी आदतें जैसे देर तक सोना, मोबाइल का बहुत उपयोग, इसको पहचानें, सुधारें, सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। अच्छे काम के लिए सही सोच और दृढ़ निश्चय की जरूरत होती है। खुद से सकारात्मक वादे करें, ज्ञान बढ़ाएं, खुद को शिक्षित करें और अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ बनने का प्रयास करें, अब जिससे आप दूसरों की बेहतर मदद कर सकें। इसके अलावा हर दिन कुछ सकारात्मक सीखने का प्रयास करें, आभार प्रकट करें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अच्छे समय का इंतजार न करें, जो आज आपके पास समय है वहीं से मेहनत करना शुरू कर दें।
1: बहुत सुंदर सी बात लिखी है।
0: और मंजरी, अभी हमें एक छोटा सा अंतराल लेना है, फिर मिलते हैं।

0: तो इस अंतराल के बाद सभी सखियों और सखाओं का स्वागत है।
1: और देखिए, एक संदेश है मंदाकिनी जी लिखते हैं कि ये बात बिल्कुल सच है कि लोग उपदेश से नहीं उदाहरण से सीखते हैं। जैसे सभी अभिभावक चाहते हैं कि उनके बच्चे मोबाइल का उपयोग बहुत कम करें, तो सबसे पहले अभिभावकों को स्वयं मोबाइल का उपयोग कम करना होगा। हमारा आचरण ही सामने वाले को संदेश देता है। हर इंसान दूसरों को बदलने का प्रयास करता है, जबकि पहली शुरुआत स्वयं से करनी चाहिए। बदलाव शिकायत करने से नहीं बल्कि शुरुआत करने से आता है, और अच्छे कार्य की शुरुआत स्वयं से की जाए तो बेहतर होता है। गांधी जी ने कहा था कि जो बदलाव दुनिया में देखना चाहते हो तो सबसे पहले वही बदलाव खुद में लाना होगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल। वही एक श्रोता लिखते हैं कि किसी भी अच्छे कार्य की शुरुआत सबसे पहले स्वयं से करें। जैसे एक दीपक पहले स्वयं जलता है तभी दूसरों को रोशनी देता है, उसी प्रकार व्यक्ति पहले अपने भीतर अच्छाई लाता है तब कहीं अच्छाई समाज में फैलती है। कुछ उदाहरण है, जैसे यदि हम चाहते हैं कि लोग सड़क पर कचरा न फैलाएं तो सबसे पहले हमें स्वयं कचरा डस्टबिन में डालना होगा। दूसरा, यदि हम चाहते हैं कि परिवार में प्रेम और सम्मान बना रहे तो पहले हमें अपने व्यवहार में मधुरता लानी होगी। और तीसरा, ये कि अगर हम दूसरों से समय की पाबंदी की अपेक्षा करते हैं तो पहले हमें स्वयं समय का सम्मान करना होगा।
1: बिल्कुल। और हमारे एक साथी लिखते हैं कि अच्छे काम की शुरुआत खुद से ही करना बहुत अच्छा विषय है। जब हम स्वयं करेंगे तो बाकी लोगों को प्रोत्साहित कर सकते हैं। जैसे कि हम मोबाइल लैपटॉप पर जब खाली होते हैं बैठ जाते हैं और बच्चों को मना करते हैं। वास्तव में हम तो काम के कारण बैठते हैं, बच्चे तो छुट्टियां हैं, क्या करें। कितनी भी अन्य गतिविधियों में व्यस्त रखें पर खाली होती है वे मोबाइल चलाते हैं, उनको मना करते हैं और समझाते हैं। बड़े बच्चे तो समझ जाते पर छोटे, उनके मन में यही रहता है कि हम चला रहे हैं तो वे नहीं। फिर उनका समय तय किया है, बस इतने ही समय। ये तो एक छोटी सी बात है, और भी बहुत कुछ अच्छी बात हम शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, उदाहरण तो आपको ही देना होगा। आप कहिए कि देखो हम एक घंटे चलाएंगे,
0: बिल्कुल
1: तुम लोग छोटे हो तुम लोग आधे घंटे चलाओगे। तो इस तरह उनका टाइम थोड़ा कम कीजिए।
0: जी बिल्कुल, तो सही कहा। ये तो एक बहुत बड़ी समस्या है मोबाइल और बच्चे। तो बच्चे हाथ में मोबाइल लेकर दिन भर घूमते हैं,
1: अपनी मम्मी से बच्चे कंपटीशन करते हैं। हाँ। मम्मी तुमने एक घंटे चलाया मैं भी चलाऊंगा।
0: हाँ।
1: तो वो फिर गलत है। या फिर आप अपने कान बगल में रख के सो रहे हैं तो बच्चे वही मोबाइल पकड़ के सोने लग जाते हैं। हमें चाहिए,
0: वो सीखते हैं ना, जैसा आप बताएंगे वैसा अनुसरण तो बच्चे करेंगे ना। तो हमें अपना पहले खुद ही उदाहरण पेश करना होगा। कम से कम मोबाइल का इस्तेमाल हमारे लिए भी बहुत अच्छा है, करके तो देखिए। कहते भी हैं कि रात के सोने से पहले 2 घंटे पहले आप मोबाइल बंद कर दीजिए, ऐसा कहते हैं। और सुबह उठने के 2 घंटे बाद ही मोबाइल देखिए, तो आप देखिए आपके जीवन में धीरे धीरे आपके विचारों में सुख शांति आने
1: बिल्कुल
0: लग जाती। क्योंकि उठते ही जब हम खोलते हैं तो हजारों नकारात्मक बातें, नकारात्मक समाचार मोबाइल में दिखते हैं और हमारे दिमाग में घूमते हैं कि अरे ऐसा है, तो हम नकारात्मक होते चले जाते हैं। तो शुरुआत खुद से करें अच्छे काम की, कि आप कोई किताब पढ़ें, बच्चों को किताब पढ़ने का मौका दें। एक श्रोता लिखते हैं कि जीवन में यदि सकारात्मक बदलाव लाना है कि अच्छे काम की शुरुआत स्वयं से होनी चाहिए। जब हम अपने आप को उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत करते हैं तो लोग हमारा अनुसरण करते हैं। जब हम अपनी आदतों, अपने विचारों में सकारात्मकता लाते हैं तो हमारे आसपास का वातावरण भी बदलता है। दूसरों से अपेक्षा रखने से बेहतर है स्वयं से अपेक्षा रखें। कहा भी गया है, पर उपदेश कुशल बहुते रे, तो जे आच रही तेनर न घनेरे।
1: क्या बात है। और एक लिखते हैं कि अच्छे काम की शुरुआत खुद से, ये बड़ा प्रेरणादायी विचार है। यदि आप समाज, परिवार या अपने आप में जीवन में कोई सकारात्मक प्रभावशाली बदलाव लाना चाहते हो तो उसकी शुरुआत खुद से ही होनी चाहिए। अगर हम दूसरों का इंतजार किए बगैर खुद पहल करते हैं तो बड़े से बड़ा काम भी संभव हो जाता है। बस और कुछ नहीं, शरीर रूपी इंजन को एक किक की जरूरत होती है। क्या बात है, बहुत सुंदर बात लिखी है।
0: बिल्कुल।
1: तो हमारे सभी साथियों ने बहुत अच्छे अच्छे संदेश लिखकर भेजे हैं, तो उन्हें धन्यवाद कहते हुए एक गीत सुन लेते हैं।
0: बिल्कुल सुनते हैं।

0: तो देखिए भाई, ये गाना कितना सटीक है ना मंदाकिनी जी?
1: हाँ, बिल्कुल।
0: हम लोगों की सूरत एक जैसी नहीं मिलती, कुछ तो बदलाव है,
1: है ना?
0: तो ये सफल, आप हंस रहे ना इसी बात पर कि मंजरी ने बस छेड़ दी बात। हाँ, है ना?
1: और तो, ये ऐसी बातें हैं जिस पर घंटों चर्चा करें तो भी कम पड़ जाती है, क्योंकि जिस खूबसूरती से गीतकार ने बात कही है उस पर घंटों चर्चा की जा सकती है।
0: बिल्कुल। चलिए हम अपने अगले विषय की ओर बढ़ते हैं। हमारी सफल महिला उद्यमी है राधिका अग्रवाल। राधिका अग्रवाल भारत के उन प्रेरणादायक महिला उद्यमियों में गिनी जाती हैं जिन्होंने भारतीय ई कॉमर्स जगत में अपनी अलग पहचान बनाई। वे shopclues.com की सह संस्थापक को फाउंडर है। उनकी सफलता इस बात का उदाहरण है कि दृढ़ संकल्प, नई सोच और मेहनत से महिलाएं व्यापार और तकनीकी की दुनिया में बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकती हैं।
1: तो राधिका गई की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये एक इंटरनेट उद्यमी है और यूनिकॉर्न क्लब में प्रवेश करने वाली भारत की पहली महिला है। और ये सिलिकॉन वैली में 2011 में स्थापित ऑनलाइन मार्केट प्लेस shopclues की सह संस्थापक है। वर्तमान में ये कंपनी की मुख्य व्यवसाय अधिकारी के रूप में भी कार्यरत
0: जी। और राधिका का जन्म एक शिक्षित और अनुशासित परिवार में हुआ। उनके पिता भारतीय सेना में अधिकारी थे, इसलिए बचपन से ही उन्होंने अनुशासन, मेहनत और आत्मविश्वास सीखा। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा भारत में पूरी की और आगे की पढ़ाई के लिए विदेश गई।
1: बिल्कुल। उन्होंने अमेरिका की प्रसिद्ध वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी इन सेंट लुइस से MBA की डिग्री ली और पढ़ाई के दौरान उन्होंने मार्केटिंग, बिजनेस मैनेजमेंट और उपभोक्ता व्यवहार को गहराई से समझा भी, और यही ज्ञान आगे चलकर उनके व्यवसाय में बहुत काम भी आया
0: जी। और व्यवसाय शुरू करने से पहले राधिका अग्रवाल ने कई बड़ी कंपनियों में काम किया। उन्होंने फैशन और रिटेल क्षेत्र की अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों में अनुभव प्राप्त किया। इस दौरान उन्हें ये समझ आया कि ऑनलाइन व्यापार का भविष्य बहुत बड़ा है और भारत में इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं।
1: हाँ, और अगर 2011 की बात करें ना मंजरी, तो राधिका अग्रवाल ने अपने पति संजय सेठी और सहयोगी संदीप अग्रवाल के साथ shopclues की स्थापना की, और उस समय भारत में ऑनलाइन शॉपिंग का बाजार तेजी से बढ़ ही रहा था, लेकिन छोटे दुकानदारों और स्थानीय व्यापारियों को ऑनलाइन मंच नहीं मिल पा रहा था। shopclues ने इन्हीं छोटे व्यापारियों को इंटरनेट के माध्यम से ग्राहकों तक पहुंचाने का काम भी किया
0: जी। और कंपनी की खासियत यह थी कि उसने छोटे शहरों और मध्यम वर्ग के ग्राहकों पर विशेष ध्यान दिया। यहां ग्राहकों को कम कीमत

0: पर विभिन्न प्रकार के उत्पाद उपलब्ध कराए जाते थे। धीरे धीरे शॉपक्लूज भारत की प्रमुख ई कॉमर्स कंपनियों में शामिल हो गई। कंपनी ने लाखों ग्राहकों और हजारों व्यापारियों को जोड़ा। एक समय ऐसा आया जब शॉपक्लूज का मूल्यांकन $1 बिलियन से अधिक हो गया और ये यूनिकॉर्न स्टार्टअप कहलाने लगी।
1: और राधिका अग्रवाल की जब हम बात कर रहे हैं तो भारत की पहली महिला उद्यमों में वो शामिल हुई जिन्होंने यूनिकॉर्न स्टार्टअप खड़ा किया और ये उपलब्धि भारतीय महिलाओं के लिए प्रेरणा का कारण भी बनी। और राधिका अग्रवाल की जब हम बात कर रहे हैं तो उनकी यात्रा इतनी आसान नहीं थी मंजरी, उन्हें बड़े प्रतिस्पर्धियों से मुकाबला करना पड़ा। शुरुआत में निवेश जुटाना, ग्राहकों का विश्वास जीतना और व्यापार को तेजी से बढ़ाना उनकी बड़ी चुनौतियों में शामिल भी था। लेकिन हाँ, उन्होंने हार नहीं मानी और उन्होंने नई रणनीतियों की, ग्राहक सेवा और सस्ती कीमतों के माध्यम से अपनी कंपनी को बहुत आगे तक बढ़ाया।
0: बिल्कुल, और राधिका अग्रवाल हमेशा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का और अपने सपनों को पीछा करने के लिए प्रेरित करती थी। उनका मानना है कि महिलाएं यदि आत्मविश्वास और धैर्य के साथ काम करें तो किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकती हैं। और वे ये भी कहती थी कि असफलता से डरना नहीं चाहिए क्योंकि हर असफलता हमें कुछ न कुछ नया सिखाती है। और राधिका अग्रवाल को कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सम्मानित किया गया है। उन्होंने भारत की प्रभावशाली महिला उद्यमियों को में गिना जाता है। कई बिजनेस पत्रिकाओं और मंचों ने उन्हें प्रेरणादायक महिला नेतृत्वकर्ता के रूप में सराहा है। और राधिका अग्रवाल को कई पुरस्कार भी मिले, जैसे आउटलुक बिजनेस अवार्ड में आउटलुक बिजनेस वुमेन ऑफ वर्थ 2016 में और एंटरप्रेन्योर इंडिया अवार्ड में वुमेन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2016 में, सीएमओ एशिया अवार्ड 2016 में वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला उद्यमी का पुरस्कार प्राप्त किया आपने, और सीईओ इंडिया अवार्ड 2016 में सीईओ ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला। एसोचैम का वर्ष सर्वश्रेष्ठ उद्यमी पुरस्कार 2017 में। वे महिलाओं को उद्यमिता और नेतृत्व में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। और राधिका अग्रवाल की कहानी मेहनत, नवाचार और आत्मविश्वास की कहानी है। उन्होंने ये साबित किया कि यदि सोच बड़ी हो और इरादे मजबूत हो तो कोई भी व्यक्ति नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। वे आज भारत की युवा पीढ़ी, विशेषकर महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताई कि वे आज भी हमारी प्रेरणा का स्रोत है। एक छोटा सा ये संदेश सुन लेते हैं। अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी।
1: तो मंजरी, अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।

रूठ के हमसे हाँ, देखो कसम से कहते हैं तुमसे हाँ, तू भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ

तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ हाँ देखो कसम से कहते हैं तुमसे हाँ तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ।

0: हाँ तो मंजरी, हम भी आपसे यही कहते हैं, देखो कसम से अगर तुमने भी किसी की बात को मान लिया और हमसे झगड़ा कर लिया तो हाथ मलोगी दोस्ती से, देख लेना।
1: लेकिन आपको पता है कि मंजरी ऐसी है नहीं,
0: कान का कच्चा होना बहुत गलत बात है,
1: कान की कच्ची है भी नहीं। और बहुत से लोगों में ऐसी आदत होती है कि वो अपना प्रभाव बनाने के लिए, दूसरे की उभरती हुई प्रतिभा को दबाने के लिए, वो अगले सामने वाले से ऐसी बातें कर देते हैं कि कान की कच्ची वाली आदत हो जाती है। फिर वो उससे नहीं पूछता है कि भाई ये वाकई में ऐसी है या नहीं, वो जानने की कोशिश नहीं करता, वो उसकी कहने पर ही चलते
0: विश्वास
1: हैं।
0: कर लेते
1: तो ऐसा नहीं होना चाहिए।
0: ऐसे कान के कच्चे लोग बहुत हमारे आसपास होते हैं कि जिनको कुछ भी कह दो वो मान लेते हैं, उसका सही गलत की गणना उनको आती ही नहीं है
1: जी। और कान के कच्चा होना मुहावरे का अर्थ है कि कान का कच्चा होना का अर्थ है कि बिना सोचे समझे किसी की बात पर जल्दी विश्वास कर लेना या सुनी सुनाई बातों में आ जाना। तो मंदाकिनी जी, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आपको किसी के बारे में जानना है तो आप उसी से बात कर लीजिए। वो कैसा है आप अपनी नजरों से उसको परखने की कोशिश कीजिए ना। कोई दूसरा कुछ कहता है ये ऐसी वैसी, तो क्यों आप उसके उस पे जाते हैं।
0: बिल्कुल। और दुनिया में ऐसे बहुत से लोग मिलते हैं जो बैक बाइटिंग करते हैं, लेकिन अगर आपको किसी की सच्चाई जानी तो पहले तो आपके अंदर कुव्वत होनी चाहिए, वो दमगम
1: बिल्कुल,
0: आप खुद अच्छे बने, है ना, खरा सोना, फिर आप दूसरे को परखें। और जब आप परखते हैं तो आपकी नजरों में वो पारखीपना होना चाहिए कि आप उसको परख ले अपनी नजरों से, दूसरों की बातों से, बैक बाइटिंग से, दूसरों की हिंट मिलने पर आप अगर कोई धारणा बनाते हैं किसी के प्रति, ये बहुत गलत बात है।
1: बिल्कुल सही बात है।
0: तो एक श्रोता लिखते हैं कि कान का कच्चा होना अर्थ सुनी सुनाई बातों पर तुरंत विश्वास कर लेना या बिना सोचे समझे किसी की बात मान लेना। ये वीडियो कान का कच्चा होना मुहावरे का अर्थ और उदाहरण समझाता है कि कान का कच्चा होना का अर्थ है कि आप, अच्छा कुछ लिखते हैं ये कि रवि पर भरोसा मत करना, वो बहुत कान का कच्चा है, कोई भी उसे भड़का सकता है। सीता सबकी बातों में मत जाओ, कान का कच्चा होना अच्छी बात नहीं है। और ऐसे व्यक्ति जो स्वयं अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करते

0: दूसरों की बातों में जल्दी आ जाते हैं, उन्हें अक्सर काम का कच्चा कहा जाता है।
1: जी, और एक लिखते हैं कि बिना सोचे समझे या बिना सच्चाई जाने दूसरों की बातों पर तुरंत विश्वास कर लेना, जो व्यक्ति सुनी सुनाई बातों में जल्दी आ जाता है उसे कान का कच्चा कहा जाता है। समझदार व्यक्ति को कभी भी कान का कच्चा नहीं होना चाहिए बल्कि सच का पता लगाना चाहिए। कान के कच्चे होने की आदत से लोग अक्सर नुकसान में रहते हैं। और वाकई भी जो कान के कच्चे होते हैं तो उनका अपना व्यक्तित्व भी उस तरह से खराब होता है कि वो इस तरह से अगर करते हैं तो उनके व्यक्तित्व पर भी असर पड़ता है।
0: बिल्कुल पड़ता
1: है। तो सबसे पहले तो इंसान को मंदाकिनी जी अपने व्यक्तित्व को बचा के रखने की सोचना चाहिए कि नहीं, मैं जैसी हूँ मैं वैसी रहूंगी, कोई मुझे कुछ भी कहे
0: डिगा नहीं सकते
1: जिसे कहते हैं।
0: मतलब अपने किरदार को हमें मजबूत बनाना चाहिए, ना कि उथल पुथल वाला इधर इधर ढुल गए उधर ढुल गए,
1: थाली का बैंगन जिसे कहते हैं, वैसा नहीं होना चाहिए।
0: उधर उसकी बात सुन ली, उधर उसकी बात मान ली, तो आपका अपना व्यक्तित्व क्या रहा?
1: बिल्कुल
0: कुछ नहीं रहा। तो आपका जो व्यक्तित्व में एक खूबी होनी चाहिए जो देखते ही लोग आपकी तारीफ करेंगे, नहीं ये व्यक्ति कान का कच्चा नहीं है, ये व्यक्ति अटल है, मजबूत है, और ये किसी की बातों में तुरंत नहीं आता, तब जाकर आपका कोई व्यक्तित्व बनता है। एक श्रोता लिखते हैं कि कान का कच्चा होने का अर्थ बिना सोचे समझे किसी की बात पर यकीन कर लेना। ये हमारी जिंदगी में बहुत लोग कहते हैं और अक्सर किसी न किसी मुसीबत में फंस जाते हैं, अपना ही नुकसान करा लेते हैं। इसका वाक्य प्रयोग आजकल की दुनिया में काम का कच्चा होना नहीं होना चाहिए, मतलब होना नहीं चाहिए ऐसा।
1: और एक मेरी साथी लिखती है कि कान का कच्चा काम का कच्चा भी बन जाता है, क्योंकि वो पूरा समय अलग भ्रम में जीता है, हर कही सुनी बात पर भरोसा करता है और खुद भरोसे लायक रहता नहीं। क्योंकि जब आप हर किसी की बात पर बस यूं ही भरोसा कर लेते हैं बस इसलिए कि आपकी जान पहचान है, तो आप कोई भी अपने इशारों पर भी नचा सकता है। इसलिए कान का कच्चा होना व्यक्तित्व को धूमिल कर देता है। जबकि एक इंसान जो कान का कच्चा नहीं है वो अपने करीबी की बातों को भी जांचे परखे बिना यूं ही विश्वास करके कदम नहीं उठाता और अपने काम का पक्का होता है, जिससे कोई पीठ पीछे भी उसके किसी निर्णय पर उंगली नहीं उठा सकता। तो कान का कच्चा नहीं काम का पक्का होना चाहिए। हमारी सखी ने बहुत अच्छी सी बात लिखकर भेजी,
0: बिल्कुल बहुत अच्छा। वही एक लिखते हैं हमारे श्रोता कि बार दूसरों की चुगली या अफवाहों पर आंख मूंद कर भरोसा करने से आपसी रिश्तों में दरार या विवाद की स्थिति पैदा हो जाती है। दोस्ती में दरार या परिवार में कलह का मुख्य कारण यही कान का कच्चा होना भी होता है।
1: बिल्कुल सही बात लिखी है। और एक लिखे हैं कि कान के कच्चों से दूर रहना ही बेहतर है, आपके संबंध खराब करते हैं वे उनके लिए बहुत मित्र नहीं होते। बिल्कुल सही बात है, लेकिन कितनी भी कोशिश कर लो ना, आप समूह में सबके साथ में है तो कौन कान का कच्चा है ये भी हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। और एक लिखते हैं कि कान का कच्चा वह व्यक्ति जो बातें इधर से उधर करता हो, ऐसे व्यक्ति आपकी जरूरत की बात गोपनीयता खराब कर देते, यानी आपकी जरूरत की बात को भी वो किनारे करके अपना मतलब निकालना कहना चाहिए।
0: मतलब ऐसे लोग जो बातों की होती है दोस्तों के बीच में उसको भी वो हटा देते हैं।
1: मतलब दोस्ती तो को किनारे कर देते हैं और अपना मतलब निकालने के लिए, अपने को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए दूसरे के व्यक्तित्व को गिरा देते हैं। वो चीज नहीं होनी चाहिए।
0: बिल्कुल। वही एक श्रोता ने बहुत अच्छी बात लिखी है कि कान का कच्चा यानी बिना किसी सबूत के दूसरों की बातों पर भरोसा कर लेना आज के समय में ये मुहावरा हर किसी को समझने की जरूरत है ताकि गलतफहमियों से बचा जा सके। विविध भारती पर हमेशा ऐसे ही ज्ञानवर्धक और मजेदार विषय सुनने को मिलते हैं, इसके लिए ये बहुत बहुत बधाई देते हैं।
1: जी, सबको धन्यवाद देते हैं, बहुत अच्छे से संदेश लिखकर भेजे। एक गीत सुनते हैं, फिर हम लोग मजेदार किस्से जनवासी के सुनते हैं।
0: वाह।

0: हमारे देखिए श्रोताओं ने लिखा है कि तेरी सूरत से नहीं मिलती वाला गाना जो है बहुत समय बाद सुना है तो उन्हें बड़ा अच्छा लग रहा है सुनकर।
1: अच्छा, क्या बात है।
0: तो देखिए अब हम बढ़ते हैं जनवासे की ओर, जो हमारे यादों से जुड़े हुए किस्से। और जनवासे में देखिए ऐसा होता था ना कि लड़की वाले जो थे लड़के वालों को रुकने का एक स्थान देते थे, वहां ठहरते थे सब लोग, और उनके लिए खाने पीने का इंतजाम रखा जाता था, घड़े का पानी उस समय रखा जाता था। आज तो चलो आप ठंडा पानी की बोतलें रखते हो, लेकिन उस समय घड़ा ही रखा जाता था। शरबत के पाउचेस पैकेट रख दिए जाते थे कि चीनी और नींबू रख दिया गया कि शरबत घोल के बनाएंगे। खरबूजा तरबूज इन समय में ये सब रखा दिए जाते थे, मौसमी फल, बर्फ रखी है। तो कुछ बराती लड़के लड़कियां बहुत शैतान टाइप के होते थे, तो वो जा करके उसमें से नींबू गायब कर दे तो चीनी गायब कर दे। अब जब वो बना रहे हैं आके लड़की वाले बेचारे, तो वो चीजें कम पड़ गई हैं, तो अब उनको कह भी रहे हैं कि इसमें तो खट्टा नहीं है, इसमें नींबू और डालिए। बेचारे इतना तो नींबू लाए थे, कहाँ चला गया। तो मतलब इस तरह के किस्से जनवासे में अक्सर होते थे।
1: बिल्कुल।
0: और
1: ये एक रोचकता बनाए रखते हैं और बड़ा अच्छा माहौल होता है शादी विवाह में,
0: बहुत अच्छा माहौल होता था,
1: छुटपुट मजाक होती है।
0: और वो चारपाई गद्दे नहीं पड़े तो शीशा नहीं है तो कंघा, और शैम्पू नहीं है तो बालों में तेल लगाना,
1: सादगी से वो जनवासा होता था, दिखावटी
0: नहीं होता। मतलब अगर चीजें कोई भी कम हो गई तो नुक्स निकालने वाले भी होते थे, और बड़ा झगड़ा भी होता था कि हमारे लिए तो चारपाई नहीं रखी, हमारे लिए तो गद्दा नहीं रखा। और जब वो मिठाई की नाश्ते के लिए मिठाई के डब्बे दिए जाते थे तो सब लोग खोल के देख रहे हैं कि अरे इसमें तो 5 पीस हैं, इसमें तो 6 पीस हैं, ये ज्यादा कैसे हुआ या कम कैसे हुआ। इस तरह के भी नोकझोंक आपस में ही होने लग जाती थी। तो उसका भुगतान जो कहते हैं ना वो लड़की वालों को करना पड़ता
1: थे। बिल्कुल सही कहा।
0: और हमारे एक साथी लिखते हैं कि हमारे यहाँ बारात को पहले गाँव से बाहर बड़े आम के बाग में ठहराया जाता था, वहीं जलपान कराया जाता था, फिर गाँव के बीच में एक बड़ा हॉल होता था उसमें बारात को ठहराया जाता था और उसको जनवासा कहते थे। तो मंदाकिनी जी बड़ी यादें हैं सबकी।
1: बिल्कुल, आपने कहा और ये याद आते ही पुराने वो दिन याद आ गए जब शादी विवाह का मौसम होता था। मुझे याद है हम लोग बच्चे होते थे और हम अपने पापाओं की जिद करते थे, पापा वहाँ लेके जाओ जनवासी में कौन कौन आया है, और वो हमें लेके जाते थे। तब इस तरह की शरारतें हम समझते भी थे और कई बार हंसते भी थे कि अरे कैसी कैसी बातें यहाँ होती हैं, लेकिन जो व्यवस्था होती थी वो बहुत अच्छी होती थी।
0: वो अपने हिसाब से देखिए सब लोग अच्छा ही करते थे
1: और मन से
0: करते थे, और जिसको कमी निकालना वो तो निकालता ही है। और भाई एक बड़ा मजेदार इसमें होता था कि भाई दूल्हे का जीजा जी रूठ गए, दूल्हे के फूफा जी रूठ गए, दोस्त रूठ गए, इस तरह के भी उनको सुविधाएं
1: मनाने की जो बातें भी बहुत होती थी, कोई नाराज हो जाता था उसको मनाया जाता था।
0: और खाने पीने की भी कोई चीज व्यवस्था नहीं है तो उसमें भी जनवासे में रूठे पड़े कि हमें तो ठीक से मान मनोवल नहीं किया गया, बुलाया नहीं गया, तो बहुत सारी चीजें होती थी।
1: बिल्कुल सही कहा। इसलिए तो फूफाओं को मामाओं को बड़ा संभाल कर रखना पड़ता था क्योंकि वो बहुत जल्दी नाराज हो जाते थे।
0: और एक हमारे साथी लिखते हैं कि पुराने समय में बारात के रुकने के लिए किसी बड़े भवन या स्कूल आदि में व्यवस्था की जाती थी जिसे जनवासा कहते हैं। यहाँ पर वधू पक्ष दूल्हे और बारात को आदरपूर्वक मुख्य विवाह स्थल मंडवे पर चलने का न्योता देते हैं। वधू पक्ष की महिलाएं और सखियां ढोल मंजीरे के साथ जनवासे के बाहर या आंगन में जुटती हैं और वे दूल्हे, समधी, दूल्हे के पिता, फूफा और जीजा का नाम लेकर विशेष रूप से तैयार किए गए गाली गीत गाती हैं। इन गीतों में समधन के सीधेपन या बरातियों के खाने पीने की आदतों पर बेहद मीठे अंदाज में मजाक उड़ाया जाता जिसका वर पक्ष कभी बुरा नहीं मानता था। लेकिन ऐसा नहीं है, कभी कभी इन गीतों से वो लोग बुरा भी मान जाते थे क्योंकि उस समय देखा था ऐसे होता था, बड़ा मजा आता था, लेकिन वो गाने बहुत अच्छे थे।
1: ये गीत हमारे शादी विवाह की जान होते थे।
0: सही बात।
1: एक श्रोता लिखते हैं कि शादी में जनवासा यानी बारात ठहरने की जो जगह है केवल एक कमरा या हॉल नहीं है बल्कि ये बारात की जान और हंसी मजाक का मुख्य केंद्र होता है। यहाँ बिताई गई रातें और बारातियों के कारनामे सालों साल तक परिवार की कहानी और चुटकुलों का हिस्सा रहते हैं। जनवासी में सबसे पहले आप और मजेदार किस्सा आधी रात के बाद चाय का होता है। जब सारे बाराती तैयार होकर दूल्हे के साथ मंडप में जाने का इंतजार करते हैं तब जनवासी का माहौल किसी हॉस्टल के कमरे जैसा हो जाता है। 3 बजे रात में चाय की डिमांड होना और किसी की चाय न मिलना, फिर पूरी बारात का खुद ही उठकर चाय बनाने की जुगत करना, ये भी एक आम दृश्य होता है।
0: बिल्कुल। और एक साथी लिखते हैं कि शादी में जनवासे का बड़ा महत्व है। यहाँ पर इतिहास रचे जाते हैं, किस्से कहानियां बनते हैं। बारात के ठहरने के स्थान को जनवासा कहते हैं। पहले के समय में ज्यादातर किसी स्कूल या धर्मशाला को जनवासा के लिए निश्चित किया जाता था। ऐसे में मन मुताबिक सुविधा उपलब्ध करवाना मुश्किल होता था। वैसे में कोई रूठने वाले बारातियों तब तो विवाद होना आवश्यक होता था, पर उनमें से ही कुछ लोग बीच बचाव करने वाले लोग भी होते थे जो मामले को शांत कर देते थे।
1: बिल्कुल। और एक श्रोता लिखते हैं कि जनवासा सिर्फ बारातियों के ठहरने की जगह नहीं बल्कि रिश्तों की गर्माहट, हंसी मजाक और यादों का एक अनमोल हिस्सा है जो शादी को और भी यादगार बना देता है। मेरी शादी में बारात एक रात जिस धर्मशाला में रुकी थी उसी धर्मशाला से लगा हुआ सिनेमा हॉल था। छत पक्की थी लेकिन कुछ हिस्सा टीनशेड से ढका था, जिसमें से जनवासी में ठहरे बारात में गए बच्चे फिल्म देखते रहे जिसे आज भी वो याद करते हैं।
0: बिल्कुल। और ये लिखते हैं कि जन्माष्टमी ये नियत स्थान विवाह में लड़की वालों द्वारा ऑपरेट होता है या यूं कहें दोनों के सहयोग से हो सकता है, लड़का और लड़की के परिवार वालों की ओर से, जिसमें दोनों को सुविधा हो जाती थी और अधिक भार लड़की वालों पर नहीं आता। जन्माष्टमी वो स्थान है जहां पर दूल्हा और बराती बेफिक्र होकर आराम करते हैं। यह स्थान विवाह मंडप के आसपास ही होता है। बहुत सी अच्छी सी बात है। और जन्माष्टमी भी देखा जाता था कि कितनी पास है कितनी दूर है और वहां पर उनके स्वागत के लिए कोई खड़ा है नहीं खड़ा, ये सब भी चीजें होती थी। और लाइट की व्यवस्था है या नहीं है, या फिर
1: मतलब सही समय पर उन्हें खाना पीना हर चीज प्रोवाइड कराना, हर पूरा एक जिम्मेदारी।
0: बड़ा मजा भी आता था कि भाई अगर पत्तल में उनको खाना परोसा गया है तो पूरी गर्म क्यों नहीं है, रसगुल्ले ज्यादा क्यों नहीं मिल रहे, रायता सही से क्यों नहीं परसा जा रहा है। तो इस तरह की जो थोड़े बहुत चूहलबाजी टाइप की भी होती थी, तो बड़ा यादगार दिन है वो।
1: बिल्कुल।
0: अभी तो जैसे कि अभी व्यवस्था होटलों में हो जाती है।
1: हाँ,
0: तो
1: सब अब वो जनवासी का महत्व थोड़ा सा कम हो गया है क्योंकि होटल भी दूर दूर होते हैं और अभी कई चीजें बदल गई
0: होटल में एक साथ खाना खा रहे हैं,
1: शादी होटल में हो गई है, घरों में वो स्थान ही खत्म हो गया है जहाँ बैठकर गीत गाए जाते थे, पूरा हल्दी से लेकर सारे कार्यक्रम किए जाते थे, तो ये चीजें अब बहुत कम हो गई है।
0: लेकिन मुझे तो वो जनवासी वाले दिन बहुत याद आते हैं।
1: बिल्कुल याद।
0: चलिए हम लोग एक गीत सुनते हैं फिर बाकी बात करते हैं।
1: बिल्कुल।

0: तो मंजरी, मुझे तो लग रहा है कि जनवासे में तुम तो रूठ के नहीं बैठ गई हो।
1: नहीं, हम नहीं रूठ के बैठ गए, लेकिन मुझे याद है कि एक बार जनवासे में मुझे अकेला छोड़ के लोग खाने चले गए तो हमने आँख बंद कर लिया, अंधेरा था चारों तरफ। तो इस तरह के हमारे साथ भी हादसे हो चुके हैं। बाद में जो भैया लोग छोड़ के गए तो उन्हें बहुत डांट पड़ी। तो इस तरह की यादें भी हैं। और हमारे साथी लिखते हैं, जनवासा जिसे जनवासा भी कहा जाता है, बिताए गए ये पल दिखावे से दूर सच्चे और आत्मीय होते हैं। यहाँ अनजान लोग भी दोस्त बन जाते हैं और पुरानी दुश्मनी या गिले शिकवे भी हंसी मजाक से दूर हो जाते हैं। शादी के बाद जब भी रिश्तेदार आपस में मिलते हैं तो जनवासे के यही किस्से उनकी बातचीत की सबसे बड़ी रौनक बन जाते हैं।
0: बिल्कुल सही बात है। मैं एक श्रोता लिखते हैं कि शादी ब्याह का मौसम है पुराने जमाने का, यानी मेरी माँ की शादी के समय का, 1951 की बात कर रहे हैं ये। उन्होंने बताया कि किस्सा जनवासा यानी वो जगह जहां बारात और दूल्हे को दुल्हन के परिवार द्वारा स्वागत करके विश्राम के लिए ठहराया जाता है। छोटे गांव में महीने में शादी थी। एक बड़ा घर व्हाइट वॉश कराकर उस जमाने की सुख सामग्री के साथ तैयार रखा गया। गर्मी का मौसम था तो खस के पर्दे लगा दिए गए। रात का सीमांत पूजन भोजन ये कार्यक्रम हो गए। शादी के दिन देखा तो सभी बारातियों के तन पर बड़े बड़े लाल धब्बे और सूजन दिखाई दे रही थी। पूछने पर पता चला कि रात को ठंड जगह की आकर्षण से लाल चींटियों ने बहुत समय में वहां आसरा कर लिया था और बारातियों को काट खाया और अपना आतिथ्य दिखाया। तो बड़े बड़े होटल से शान चौकत में अब तो जनवासा होता है, लेकिन उस समय की घर की बात बताइए कि चींटियां वगैरह थी, उन्होंने काट खाया तो हर बाराती के उस शरीर में लाल निशान बने।
1: बिल्कुल, जनवासे में ये भी देखा जाता था कि भाई उनके लिए पंखा रखा गया कि नहीं, हाथ का पंखा होता था उस समय, तो वो है कि नहीं है। और एक हमारे साथी लिखते हैं, अब तो जनवासा के नाम से कुछ भी नहीं है, एक बारात घर में सब कुछ हो जाता है। अब तो बाराती रात में रुकते भी नहीं है। और ये जनवासे में चाय की बड़ी वो होती थी कि चाय चाहिए चाय चाहिए, अब सुबह चाय चाहिए तो मालूम पड़ा दूध नहीं आया है, तो वो बड़ी समस्या हो गई है, अब क्या किया जाए। तो उसमें भी कुछ लोग शैतानी करते थे कि भाई कम दूध डाल के, जैसे जितना भी दूध है उसी में चाय बना दी, अब तो यही है, पी लो पी लो। तो कुछ पीते थे, कुछ सोचते थे अरे गर्म पानी समझ के ही पी लो। तो बड़ी चीजें अलग अलग तरीके की उस समय में थी, लेकिन उनका भी एक अपना एक मजा था।
0: वही एक श्रोता लिखते हैं कि जनवासा में बताए गए ये बल दिखावे से दूर सच्चे और आत्मीय होते हैं। यहाँ अनजान लोग भी दोस्त बन जाते हैं और पुरानी दुश्मनी या गिले शिकवे भी हंसी मजाक में दूर हो जाते हैं। शादी के बाद जब भी रिश्तेदार आपस में मिलते हैं तो जनवासी के यही किस्से उनकी बातचीत की सबसे बड़ी रौनक भी होते हैं।
1: बिल्कुल, और एक लिखते हैं शादी में जनवासी के किस्से, ये एक बहुत ही अच्छा विषय है और आज कल भी ऐसा होता है, ये जिज्ञासा बनी रहती है। वैसे देखा ये जाता है कि लोगों के पास समय अभाव है और इस दृष्टिकोण से फॉर्मेलिटी ही निभाते हैं।
0: अब तो फॉर्मेलिटी ही निभाते हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि पहले जनवासा गांव के स्कूलों में, पंचायत घर में या शामियाना लगाकर भी, या आम के बगीचे में भी तैयार किया जाता था।
1: और जब आम के बगीचे में होता था ना मंदाकिनी, तो वो तो किसी और का बगीचा है। अब आम लगे हैं, अब बराती लगे तोड़ने में, अब वो फिर झगड़ा मच रहा है। तो मतलब आप बरातियों को बोल भी नहीं सकते कि भैया आम ना तोड़ो, तोड़ लिया है तो बाग वाला गुस्सा रहा है। तो इस तरह के बड़े
0: रोचक किस्से जनवासी की दुनिया से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, आज हमने इन किस्सों को याद किया, हमारे श्रोताओं ने भी अपने वो खूबसूरत किस्से साझा हमसे किए हैं। और अब हम सुन लेते हैं एक प्यारा सा गीत। जी,

0: कभी कभी हमारे साथी लिखते हैं कि जनवासा गुजराती में से उतारो कहा जाता है, मतलब जान यानी बरातियों का उतार का ठहरने की जगह।
1: महक रही है सांसों की रागनी में कभी कभी।
2: तो मंजरी आज तो बहुत सारी बातें हमने अपनी सखियों और सखाओं से कर ली और पुराने दिनों की याद ताजा हो गई है ना, वो किस्से जो हम भूल गए थे
0: वापस यादें हो गई ताजा। तो सभी को धन्यवाद देते हुए नमस्कार करते हैं। तो सभी को मंजरी वर्मा और
2: मंदाकिनी जोशी का नमस्कार।

0: जी केंद्र है। और अब आइए इस समय हम आपको सुनवाते हैं प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची में आज दूसरे दिन भी विभागों की समीक्षा बैठक करेंगे। वे आज स्कूली शिक्षा, साक्षरता और महिला एवं बाल विकास तथा सामाजिक विभाग की योजनाओं की समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज विभिन्न सरकारी विभागों के काम का लेखा जोखा भी लेंगे। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने में नया रिकॉर्ड बनाया है। आयोग के अध्यक्ष मनोज कुमार ने नई दिल्ली में बताया कि वित्त वर्ष 2024-25 में खादी का कारोबार 1,87,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी पशुपतिनाथ मिश्रा ने आज गढ़वा जिले के 35वें उपायुक्त के रूप में पदभार संभाल लिया है। पदभार लेने के बाद उन्होंने कहा कि जिले का विकास और सुशासन उनकी पहली प्राथमिकता होगी। विश्व हिंदू परिषद के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मुलाकात की। विहिप के महामंत्री वीरेंद्र साहू के नेतृत्व में एक ज्ञापन सौंपकर राज्य में गौवंश की हत्या पर पूरी तरह रोक लगाने की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि राज्य में साल 2025 से ही इस पर प्रतिबंध लागू है। झारखंड रेल पुलिस के आईजी माइकल राज एस और डीआईजी आलोक प्रियदर्शी ने चांडल रेल थाने का औचक निरीक्षण किया। अधिकारियों ने थाने के कागजात, मालखाना और हाजत को देखा। उन्होंने पुराने मामलों को जल्दी निपटाने के

0: निर्देश दिए। रांची में आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मुलाकात की। संगठन ने झारखंड राज्य फार्मेसी काउंसिल में फैले भ्रष्टाचार और अनियमितताओं की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है। मौसम विभाग ने आज गढ़वा, पलामू और चतरा में भीषण लू चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं धनबाद, बोकारो और रांची समेत कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश होने और 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की आशंका व्यक्त की गई है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: सितारे कार्यक्रम में आखिर कौन से बांसुरी वादक आए हैं? आज हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने बांसुरी वादक पारसनाथ। ये है पारसनाथ से आपके इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत का पहला भाग।

0: क्या बात है बांसुरी की इस मधुर तान को सुनकर आप मुझे पूरा यकीन है कि बहुत अभिभूत और वशीभूत हो गए होंगे। तो चलिए विविध भारती के स्टूडियो में स्वागत करते हैं बनारस घराने के जाने माने बांसुरी वादक पारसनाथ जी का। कैसा लग रहा है आपको यहाँ आकर?
1: मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद करता हूँ कि इतने संगीतमय माहौल में आपने मुझे याद किया, इसके लिए मैं आपका दिल से आभारी हूँ। और विविध भारती, तो हम आकाशवाणी विविध भारती हमारा आज से नहीं, मेरे दादाजी के समय से नाता है
0: जी।
1: मेरे दादाजी भी पंडित शिवनाथ जी, वो शहनाई प्लेयर आकाशवाणी में थे एज ए स्टाफ आर्टिस्ट, और मेरे पिताजी पंडित अमरनाथ जी जो मेरे गुरु भी हैं, मेरे दादाजी और मेरे पिताजी, वो पिताजी मेरे एज ए स्टाफ आर्टिस्ट ज्वाइन हुए थे, फिर एज अ फ्लूट प्लेयर बनारस घराने के बांसुरी वादक, फिर उसके बाद उन्होंने ऑर्केस्ट्राइजेशन भी की कई सालों तक, फिर म्यूजिक एज ए म्यूजिक कंपोजर म्यूजिक कंडक्टर, और फिर ऑल ओवर इंडिया की यूनियन प्रेसिडेंट भी थे बहुत सालों तक। तो उनके साथ हम जाते थे आकाशवाणी में, और हमें जो बचपन की जो याद थी, जिस समय से हम अपना जीवन शुरू किया है, वो आज मुझे वापस देख के आकाशवाणी का वो जो खुशबू है, और वो जो आकाशवाणी के स्टूडियो की जो एकुस्टिक, वो जो है एक जो नॉस्टैल्जिक फील है ना, वो आज मेरे को वापस देख के बड़े सालों बाद बहुत अच्छा लगा।
0: क्या
1: सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दैट।
0: अपने ही परिवार में वापसी है आपकी एक तरह से,
1: बिल्कुल कह सकते हैं, इट्स अ होम कमिंग बैक।
0: बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ एक चीज जो है वो मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ कि आपके पिताजी पंडित अमरनाथ जी गायक पंडित अमरनाथ जी से अलग
1: अलग है, बांसुरी वादक
0: जी, बिल्कुल बांसुरी वादक पंडित अमरनाथ जी, जिनका ताल्लुक आकाशवाणी से भी रहा, आकाशवाणी के वाद्य वृंद के लिए उन्होंने बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया।
1: जी जी, पिताजी ने तकरीबन 61-62 डिफरेंट रागास पे अपनी वाद्य वृंद की रचनाएं की।
0: क्या बात है।
1: और जो प्योर, जिसमें से बहुत प्रचलित राग भी नहीं थे, जिसमें से कई ऐसे राग थे जिसमें जो बहुत अक्षोभ राग भी हैं, अक्षोभ राग जैसे जो लोग ज्यादा सुनते नहीं, बजाते नहीं, गाते नहीं, करते नहीं, और बहुत डिफिकल्ट राग भी हैं, जैसे बिलास खानी तोड़ी। बिलास खानी तोड़ी राग, गाना बजाना ही उसको, उस राग को संभालना ही मुश्किल है
0: जी।
1: और गोरख कल्याण, ये सब राग संभालना ही मुश्किल है, मारू विहाग और फिर केदार, ये सब रागों को सिर्फ संभाल लेना ही काफी है,
0: और इन रागों में वाद्यवृंद
1: वाद्य वृंद बनाना, वो भी और भी चलन के आधार पे
0: जी।
1: अब सारे गामा पदा नीजा नीदा पमा गरेजा, अब ये जब आप ऑर्केस्ट्राइजेशन करते हैं 80 लोगों के साथ,
0: 80 लोग,
1: हाँ
0: ये मायने रखता है,
1: 80 आर्टिस्ट, वो भी 80 आर्टिस्ट सिर्फ आर्टिस्ट नहीं है, वो एक एक चुन के हिंदुस्तान के
0: नगीने
1: हैं, जो अपने अपने अपने वाद्य के अपने अपने घरानों के खलीफा, आप समझ लीजिए जिनको, जो अपने घराने के गुरु हैं और गुरु के सुपुत्र हैं, जो जनरेशन से चले आ रहे हैं, उनको दिल्ली में हम सुनते थे कि जो उनको अपने घरानों का खलीफा बोलते हैं, अपने घरानों का गुरु, महागुरु ऐसा समझ लीजिए। तो वो सब उस रूम में मौजूद हैं और पिताजी की कंपोजिशन वो बजा रहे हैं, और जो नोटेशन जो पिताजी करते थे हिंदुस्तानी नोटेशन, सारे गामा पा धा नी सा और SRGM, सारे
0: गामा पा धा, दोनों नोटेशन करते थे वो
1: पिताजी करते थे। हाँ, सो स्टाफ नोटेशन नहीं लिखते थे वो, हिंदी नोटेशन लिखते थे, बट उसको SRGM में लिखते थे
0: जी जी।
1: सो वो नोटेशन जो जब पिताजी बनाते थे कंपोजिशन, सो मैं और मेरे बड़े भाई पंकज नाथ जी, हम वैसे तीन भाई हैं, मेरे सबसे बड़े भाई हैं श्री पवन कुमार नाथ जी, वो म्यूजिक में नहीं है, और मुझसे बड़े जो हैं श्री पंकज नाथ जी, वो बांसुरी वादक हैं, और मैं उनके बाद सबसे तीसरा छोटा पारसनाथ। तो हम तीन भाई हैं और दो म्यूजिक में हैं, एक म्यूजिक में नहीं है
0: जी।
1: तो मैं और पंकज नाथ जी, हम लोग पिताजी के साथ रात भर बैठ के उनके साथ नोटेशन लिखा करते थे, वो बनाते रहते थे, सुर बनाते रहते थे और कंपोजिशन बनाते रहते थे, तो हम दोनों नोट करते रहते थे, नोटेशन करते रहते थे, तो वहां से हम नोटेशन सीखने को भी, एक जो इंडस्ट्री में काम करने के लिए मुंबई इंडस्ट्री में
0: बुनियाद पक्की हुई
1: एक तरीके से बोल लीजिए, वो एक ट्रेनिंग भी थी
0: जी,
1: और एक तरीके से काम भी होता रहा।
0: मैं ये देख पा रहा हूँ कि इतना अनुशासित और सख्त बचपन था, तो उसमें बदमाशी की जगह कितनी थी?
1: वो निकल ही जाता है बचपन में. बचपन ऐसा होता है ना कि थोड़ी सी भी जगह या मौका मिले तो बदमाशी कर ही लेता आदमी.
0: कौन कौन सी बदमाशियां की कुछ याद कीजिए.

0: आम चुराए हैं और हमने अपने टीचरों को भी बहुत परेशान किया है, प्रिंसिपल को भी थोड़ा परेशान किया है,
1: थोड़ा
0: इतना थोड़ा कि उन्होंने
1: घर शिकायत भेज दी।
0: घर शिकायत नहीं, घर वालों को स्कूल ही बुला लिया था।
1: अरे बाप रे। फिर
0: पिताजी आए, उन्होंने, अच्छा एक्चुअली मैं आपको बता दूं,
1: लेकिन किया क्या था आपने ऐसा? कुछ तो खतरनाक वाला किया होगा।
0: आपने मुझे पकड़ लिया रंगे हाथों पकड़ लिया आपने मुझे।
1: जी जी जी।
0: मैं बचपन में भी नहीं पकड़ा था मुझे तो टीचर ने।
1: अच्छा।
0: इसको कर्मा बोलते।
1: वापस आ गया।
0: मुझे लगता है कोई ना कोई टीचर आया आपके रूम। हाँ, तो बदमाशी की है सर। हाँ, कभी कभी स्कूल से, जैसे कभी होमवर्क नहीं कर पाना, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ आपको
1: जी,
0: कि मुझसे होमवर्क नहीं हो पाता था।
1: अच्छा।
0: और जिस स्कूल में हम थे, मैं बॉयज स्कूल में था, सो वहाँ के टीचर्स बहुत स्ट्रिक्ट थे
1: जी,
0: बहुत स्ट्रिक्ट थे,
1: और जमाना भी सख्ती का था,
0: बहुत ज्यादा था, और मतलब लिटरली पिटाई पड़ती थी बहुत ज्यादा। सो उस पिटाई से बचने के लिए हमने थोड़ा स्कूल कभी कभी घर से निकले हैं पर पहुंचे नहीं।
1: कहीं और पहुंच गए।
0: तो ऐसी बदमाशियां रही, फिर खेलने चले गए
1: जी,
0: गेम खेलने चले गए, क्रिकेट खेलने चले गए, तो ये मस्तियां की हैं। और पिताजी को पता नहीं होता था, और ये डर भी होता था उनको अगर पता चल गया
1: तो क्या हाल होगा।
0: बाप रे, दुनिया अलग और मैं अलग।
1: कितना सख्त अनुशासन, आप सबसे छोटे थे तो लाड़ भी उतना ही रहा होगा, अनुशासन भी उतना ही।
0: अनुशासन के टाइम पे बिल्कुल लाड नहीं था
1: जी,
0: कोई छोटा बड़ा देखा ही नहीं। सो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि बचपन में मैंने, मेरे भाई ने, हम प्रॉपर नींद सोए नहीं है, मतलब वो इसलिए नहीं सोए हैं, शायद उसकी वजह से ही मैं आज आपके सामने बैठा हूँ
1: जी। ये एक साधना का हिस्सा रहा कि नींद में कटौती होती रही और सीखने का मामला चलता रहा।
0: वो मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ कि वो एक करेक्ट एज है
1: जी,
0: अनुशासन में रहने का, जीवन अगर बनता है तो उसी एक करेक्ट एज में, वो भले ही बच्चा प्रैक्टिस भी नहीं कर रहा हो या भले ही बच्चा कुछ नहीं भी कर रहा हो, अगर वो अच्छे माहौल में है ना, तो उसकी मेमोरी और मसल मेमोरी में वो बात जा रही है।
1: क्या प्यारी बात बोली है जी।

0: अगर उसका माहौल अच्छा है तो भले ही कई चीजें मैंने जब मैं काम करने लगा प्रोफेशनली, बहुत सारी चीजें मैंने तब रियलाइज की कि कुछ चीजें जो मैंने प्रैक्टिस नहीं भी की पर मैं रियाज जब करता था या बजाने जाता था या बजाता था बांसुरी, तो मुझे महसूस हुआ कि ये एक जो बचपन में जो मैंने सिर्फ सुना है उस वजह से एक एडॉप्शन हो गया है, वो उसको ग्रास्पिंग वो मेरे ब्रेन ने मेरे मसल ने कर लिया है उसको, तो वो एक बहुत जरूरी है। तो ऐसा होता था सर कि सुबह के वक्त से मैं आपको बताता हूँ, जैसे सुबह 4-4:30 बजे के वक्त पे हम अपने दादा दादी जी के साथ, बड़ा हमें लाड प्यार मिला है, मेरे दादाजी पंडित शिवनाथ जी, लेट पंडित शिवनाथ जी शहनाई प्लेयर भी थे। और अच्छा, मैं आपको दादाजी की बात आई तो ये मैं बता दूं, ये मेरे दादाजी की बांसुरी है।
1: अरे गजब, तो ये कितने साल पुरानी होगी?
0: मेरे दादाजी व्हेन ही लेफ्ट हिज बॉडी, जब वो शांत हुए, उनकी एज थी 104 साल।
1: ओहो हो, गजब।
0: ही वाज अ मिलिट्री गाय।
1: जी जी।
0: और उन्होंने जो सबसे पहली जॉब थी उनकी वो मिलिट्री में थी, और इंडिया और चाइना की जो वॉर हुई थी
1: 62 वाली,
0: वो पार्ट थे उसके।
1: ओके।
0: इंडिया वो चाइना के वॉर के, और उनको फिर क्योंकि इंजर्ड हो गए थे, उनको उसने छुआ था, गोलियां लगी थी, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वो उस हालत में इंजर्ड नहीं हुए थे कि मतलब आदमी डेथ के उसमें चला जाए, बट ही वॉज इंजर्ड, हिज सीरियसली इंजर्ड।
1: लेकिन वो शहनाई भी बजाते थे?
0: शहनाई छोड़ी नहीं उन्होंने, रियाज नहीं छोड़ा उन्होंने
1: फौज में होते हुए।
0: हाँ,
1: वाह वाह वाह।
0: शहनाई, और इस बांसुरी को बोलते हैं त्रिपुरा बांसुरी,
1: त्रिपुरा बांसुरी,
0: जो मेरे दादाजी ही बजाते थे पूरे खानदान में।
1: गजब।
0: सिर्फ दादाजी बजाते थे त्रिपुरा बांसुरी। अच्छा, त्रिपुरा बांसुरी में क्या एक स्पेशलिटी है सर कि इसमें जैसे हम नॉर्मल बांसुरी है
1: जी,
0: हमारी ये नॉर्मल बांसुरी है, यहाँ पे कॉर्ग लगता है माउथ होल के पास।
1: जी बिल्कुल।
0: ये त्रिपुरा बांसुरी में कॉर्ग नहीं होता है, ये पूरी खाली होती है अंदर से।
1: अरे गजब।
0: एक बांस की नली है और उसमें जो सुरों के होल किए हुए हैं।
1: जी।
0: और यहाँ पे जैसे आपने बहुत सारे बांसुरी वादकों को देखा होगा, बहुत आजकल जो पीछे पंचम का होल है, ये तो हम बचपन से देख रहे हैं अपने बांसुरी, अपने घराने के बांसुरी में। हालांकि हम पंचम का होल यूज नहीं करते, हम जो कृष्णा बांसुरी है नॉर्मल वो वैसे ही बजाते हैं।
1: जी जी,
0: पंचम हम होल यूज नहीं करते। तो हमने तो अपने बचपन में दादाजी को त्रिपुरा बांसुरी, ये कम से कम नहीं तो 200 साल पुरानी बांसुरी है।
1: क्या बात है, ये तो अद्भुत
0: बांसुरी, उनका आशीर्वाद है।
1: जी,
0: मंदिर में रहती थी ये बांसुरी, हमेशा मंदिर में रहती थी। सुबह तो हमारा कैसा था कि दादाजी हमारे मिलिट्री के थे तो उनका अनुशासन शेड्यूल बहुत स्ट्रिक्ट था। 4 बजे हम तीनों को उठाते थे, वो हम तीनों का 4 बजे उठ के, मैक्सिमम 4:30 बजे उठ के, सिर्फ एक काम था कि राग भैरव में एक स्थाई गानी है, तीनों को गानी है, वो चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा, उसके पीछे वो उनका सोच ये था कि वो ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठना है, उस वो जो ब्रह्म मुहूर्त की जो एनर्जी है वो आपको महसूस करनी है, और उस मुहूर्त में जो राग है, रागों का जो, क्योंकि हमारे जो राग रागनी है ये हमारे देव देवताओं का उत्पन्न किया हुआ है। ये तो साक्षात आजकल जो म्यूजिक जो एंटरटेनमेंट है वो तो पहले पूजा और प्रार्थना के लिए यूज होता था।
1: जी जी,
0: सिर्फ और सिर्फ पूजा और प्रार्थना और सिर्फ साधना ही होती थी संगीत के सुर से। तो अभी क्या था कि वो ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे सिर्फ भैरव राग गवाने का एक ही उद्देश्य था कि वो आशीर्वाद ईश्वर का, वो भैरव राग का आशीर्वाद, सरस्वती माँ का आशीर्वाद उस मुहूर्त में हमें मिले।
1: वाह।
0: तो सा रे गा मा पा नी सा, एक हम बंदिश गाते थे तीनों भाई उठ के, जा

0: तो ये बंदिश हम सुबह गाते थे, उसके बाद हम तीनों नींद में गाते थे। अब ये तो हुई दादाजी की सोच, अब तीन बच्चों की सोच बताता हूँ कि हमें ऐसा लगता है क्यों क्यों उठाया जा रहा है 4 बजे सुबह, क्यों नहीं सोने दिया जा रहा है, ये क्या पनिशमेंट है, ये क्या है, क्योंकि नींद इतनी प्यारी होती है ना,
1: बिल्कुल
0: और
1: बचपन
0: वो
1: की
0: चार
1: नींद,
0: 4:30 बजे तो एकदम चरम सीमा की नींद होती है।
1: बिल्कुल
0: उस वक्त जगा दिया जाता था, दिल्ली आई बॉर्न एंड बॉटम इन दिल्ली,
1: जी,
0: तो दिल्ली की सर्दी भी खतरनाक होती थी उस
1: खतरनाक जी।
0: पर वो जगाते थे। फिर उसके बाद वो हो गया, फिर 5:30 बजे के बाद हमें अलाउड नहीं था कि बेड से उठना ही है और फिर बाहर निकलना है घर से, एंड जस्ट हैव टू गो वॉक, डू व्यायाम, जो प्राणायाम वट एवर। ये मैं अपने बचपन की बात बता रहा हूँ सर, जब मैं 5th 6th स्टैंडर्ड की बात बता रहा हूँ।
1: जी,
0: एंड देन वो होने के बाद फिर घर आए, नहाया धोया, नाश्ता किया, 7:30 8 बजे हम लोग रियाज पे बैठ गए। 8 बजे रियाज पे बैठे हैं नाश्ता करके, उसमें दादाजी के साथ भी जब पूजा करते थे दादाजी तो ये बांसुरी बजाते थे।
1: अच्छा,
0: हाँ, तो पूजा के टाइम पे वो राग दुर्गा में एक स्थाई बजाते थे।
1: अरे गजब।

0: फिर इसके साथ सरगम उन्होंने कुछ कुछ बनाई थी, बताई थी हमें, तो सरगम बजाते थे हम लोग। तो एक हाजिरी होती थी हमारी, पिताजी भी होते थे, दादाजी होते थे, हम दोनों होते थे। उसके बाद फिर दादाजी अपने शेड्यूल में बिजी हो जाते थे, पिताजी जॉब में जाते थे, हम लोग रियाज करते थे दोनों भाई। सो हमारा रियाज होता था तकरीबन 8 बजे से 8:30 बजे से लेके दोपहर को 12:30-1 बजे तक, 5 घंटे का एक टाइम का रियाज। फिर दिन में लंच के बाद 2 घंटे होते थे, उसमें आप कुछ और कीजिए, जैसे कुछ और सीखिए या बगीचे में कुछ कीजिए या कुछ भी घर में कुछ और सेवा कीजिए, घर का कुछ काम कीजिए, वैसा कुछ। फिर 4:30 बजे से 4:30-5 बजे से वापस रियाज, वो रात को चलता था 10-10:30 बजे तक। तो दिन में तकरीबन 11-12-13 घंटे का रियाज होता था। उसी 13 घंटे में पूरे दिन शिष्य आते थे, अपने टाइम से आते थे, जिनको जाना होता था वो चले जाते थे, वो चलता ही रहता था एक रोटेशन में, तो वो माहौल रहता था।
1: वाह वाह।
0: फिर रात को आप समझिए 10:30 बजे अगर हम लोग छोड़ा है रियाज करके दिन भर, आप सोने गए हैं 12 के आसपास, तो पिताजी आए रिकॉर्डिंग से और 1 बजे या कभी 2 बजे उनका कुछ मूड हुआ बताने का, कुछ सोचते हुए आए हैं, बच्चों को बताऊंगा।
1: और बच्चे तो सो रहे हैं,
0: बच्चे सो रहे हैं। अब बच्चे कौन, मैं और मेरे बड़े भाई पंकज जी। अब पिताजी ने हमें कभी बचपन में, मेरी माता ने, पिता ने, हमारे बुजुर्गों ने कभी मारा नहीं, हाथ नहीं उठाया, पर डर इतना था कि उनके आंखों से और आवाज से डर लगता था। तो ये था कि अब पिताजी आ गए 12-1 बजे, उन्होंने कहा चलो बाजरी लेके आओ। अब नींद से आधी नींद से उठे, मुंह में पानी डाला है, फिर दोनों बांसुरी लेके आ गए। अब सर वो सेशन चल रहा है सुबह 4-5 बजे तक।
1: ओहो हो, तो सारी रात जागना है,
0: पूरी सारी रात जाग गए।
1: और सुबह का तो फिर शेड्यूल तय है,
0: सुबह का शेड्यूल तय है। पर फिर कभी कभी पिताजी संडे, क्योंकि आकाशवाणी छुट्टी होती थी, दोस्त सैटरडे संडे पिताजी भी बैठते थे रियाज पे। फिर वो जब पिताजी बैठते थे तो और लंबा डिटेल क्या रियाज होता था दादाजी के साथ भी, तो होते होते फिर वो बचपन पूरा वैसे ही उसी
1: रियाज अनुशासन करते से, हुए
0: रियाज करते हुए अनुशासन से इसी तरीके से गुजरा है।
1: क्या बात है।
0: मैं इतना ही बताना चाहूंगा कि इस जीवन में मुझे, मैं जितना ही अपने आप को ग्रेटिट्यूड महसूस करूं यूनिवर्स के लिए, ईश्वर के लिए, भगवान के लिए, या उस सोर्स के लिए जिसने मुझे लाइफ दी है, कि मुझे ऐसे परिवार में ऐसे दादा दादी जिन्होंने पूरा बचपन में हमें प्यार भरपूर दिया
1: जी,
0: संगीत दिया, जिसके वजह से हमारी जिंदगी बनी
1: जी,
0: मेरे माता पिता जिन्होंने कोई कमी महसूस नहीं होने दी, और फिर संगीत सिखाया, और फिर जीवन को कैसे जीना है उसके बारे में भी नॉलेज दी
1: जी,
0: ऐसे परिवार में मेरी जीवन की शुरुआत हुई। कोई भाग्यशाली मैं अपने आप को बहुत मानता हूँ कि ऐसे घराने का बच्चा हूँ और ऐसे घराने में पैदा हुआ हूँ। और भी बहुत एक बड़ी बात है कि जीवन को जीने के लिए कई बार ऐसा होता है, प्रोफेशन आप पैसा कमाने के लिए चुनते हो जिससे आप पैसा कमाते हो, पर आपकी आत्मा तृप्त नहीं होती है। और पैशन आपका कुछ और होता है, पर आप पैशन के लिए काम कर ही नहीं पाते हो।
1: बिल्कुल।
0: जीवन जीने का आत्मा के लिए आप क्या कर रहे हैं, तो वो पैशन है आपका, वो कुछ भी हो सकता है, खाना बनाना हो सकता है,
1: बिल्कुल
0: ट्रैवल करना हो सकता है, कुछ भी, मतलब म्यूजिक हो सकता है। और तो मेरा तो पैशन भी यही है, जीवन भी यही है, ऐसा नहीं लगता है ये मेरा साज है, ऐसा लगता है मेरे शरीर का एक अंग है,
1: बिल्कुल
0: ये और मैं एक ही है। सो मैं इस जन्म में आर्टिस्ट बन के पैदा हुआ हूँ और एक साज की सेवा कर रहा हूँ, कृष्ण भगवान के साज की सेवा कर रहा हूँ, जिन्होंने इस साज से पता नहीं कितने लोगों का कितना उद्धार हुआ है, तो मेरे लिए तो इससे बड़ी कोई बात ही नहीं है।
1: क्या बात है पारस जी। हम अब ये रिक्वेस्ट करेंगे कि वो जो दादाजी वाली बांसुरी है, त्रिपुरा बांसुरी
0: जी,
1: उस पर कोई धुन बजाएं, और उसके बाद हम एक फिल्मी गाना सुने आपकी पसंद
0: जी,
1: का।
0: मैं दादाजी की बजाई हुई धुन में आपको सुनाता हूँ
1: जी,
0: पर त्रिपुरा बांसुरी मैंने बजानी, मेरे लिए ये एक बहुत ड्रॉबैक है मेरे लाइफ का
1: जी,
0: कि ये बांसुरी मैं कोशिश की थी मैंने बजानी
1: जी जी,
0: पर दादाजी जब तक उनके दांत थे और वो इस तरीके से होल्ड कर पाते थे
1: जी जी जी,
0: देखो ऐसे बजाते हैं,
1: समझ गया।
0: देखिए तो एक होती है सीधी बांसुरी,
1: हाँ।
0: आपने देखी होगी ऐसे शहनाई की तरह बजाते हैं
1: जी जी जी।
0: एक होती है ये जो हम बजाते हैं कृष्णा बांसुरी
1: जी,
0: इसको कृष्णा बांसुरी बोलते हैं, तो ने कृष्ण भगवान की मूर्ति देखी होगी थी
1: हमेशा
0: ऐसी, तो इसको बोलते हैं आड़ी बांसुरी।
1: हाँ
0: आड़ी बांसुरी भी बोलते हैं, कृष्णा बांसुरी भी बोलते हैं, और इसको हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का वाद्य भी बोलते हैं।
1: जी
0: फिर ये हो गए त्रिपुरा बांसुरी, इसको बजाते हैं ऐसे। इसका ये पंचम का हुल है
1: जी,
0: और ये बाकी आगे नॉर्मल जैसे बांसुरियों पे होता है
1: उस तरह के।
0: उस तरीके का है। और इसमें एक और खास बात है कि आप देखिए, इसमें जो कृष्णा बांसुरी है, इसमें जो एक मध्यम तीव्र माँ, जो क्योंकि आजकल बहुत सारे फ्लूट मेकर्स अपनी नाम बढ़ाने के लिए, बहुत सारे फ्लूटिस्ट अपने नाम बढ़ाने के लिए वो चीजें अपने आप को, क्योंकि अपना नाम आजकल के जीवन में क्या हो गया ना सर, भोगना भोगना ग्रीडीनेस
1: जी,
0: इतना ज्यादा बढ़ गया है कि झूठ पे झूठ बोलते हैं लोग।
1: जी
0: आप सोचिए, ये मैं 200 साल पुरानी बांसुरी मैं आपको दिखा रहा हूं।
1: जी बिल्कुल,
0: इसमें दो चीजें दिखा रहा हूं मैं आपको, इसमें एक तो पंचम होल दिखा रहा हूं,
1: हाँ बिल्कुल,
0: और दूसरा एक ये मध्यम तीव्र मध्यम का ये
1: हाँ
0: नोट है।
1: बिल्कुल है
0: ठीक है,
1: आखिर में
0: ठीक है। अब ये दोनों चीजें बहुत सारे सब बोलते कि ये हमारा है हमारा है हमारा है,
1: ये तो 200 साल पुरानी बांसुरी है।
0: हमने तो बचपन से देखा है,
1: जी
0: हमने कभी बोला ही नहीं ऐसा, क्योंकि हमें उस तरीके से कभी ना, हमने कभी ना देखा, ना कभी पिताजी का कभी वैसा विचार रहा, ना कभी दादाजी का वैसा विचार रहा कि ये हमारा है हमारा है, हमने किया है हमने किया है हमने किया है। पिताजी और दादाजी का सिर्फ एक ही उद्देश्य रहा है हमेशा से, पिताजी का आज भी है, कि ये ईश्वर का दिया हुआ साज है, ईश्वर का दिया हुआ आशीर्वाद है, हमारा नहीं है ईश्वर का है, ईश्वर ने हमें चुना है। तो आपके थ्रू जो अच्छा जितनों का हो सके, अगर हो पा रहा है तो वो भी ईश्वर ने आपको चुना उसके लिए।
1: आप माध्यम है,
0: आप अपने आप को मत मत समझिए कि आप भगवान है,
1: जी
0: आप भगवान नहीं है। आप भगवान होते तो आपने अपने लिए कुछ कर लिया होता सबसे पहले। जिन लोगों की वजह से आपका हो रहा है वो आशीर्वाद ईश्वर का दिया हुआ है।
1: बहुत सही,
0: तो हमने तो बचपन से ये देखा है सर। मैं ये बांसुरी बजा पाता हूं, मैं जो
1: जी
0: भी है मेरे पास उन्हीं का आशीर्वाद है, पर ये बांसुरी मैं बजा नहीं पाता,
1: कोई बात नहीं, तो आप
0: इसका साउंड क्रिएट नहीं कर पाता।
1: जी तो आप
0: ये
1: अपनी
0: मैं
1: कृष्णा
0: लाया इसलिए
1: बांसुरी
0: हूं,
1: बजाइए।
0: मैं
1: जी
0: लाया इसलिए हूं कि उनका आशीर्वाद हमें, खैर
1: साथ
0: मेरे
1: चले।
0: मेरे साथ, मेरे हमेशा साथ रहता है ये,
1: वाह
0: हमेशा,
1: क्या प्यारी बात।
0: हाँ ये मेरे फ्लूट किट में रहता है।
1: जी।
0: अब मैं आपको एक चीज बता रहा था, जो तीव्र माँ का ये है
1: जी,
0: अब ये बांसुरी पे तीव्र माँ का यहाँ होल है,
1: हाँ
0: है ना
1: जी।
0: इसलिए आप कभी गूगल यूट्यूब में सर्च करेंगे ना, आपको ज्यादा रिकॉर्ड नहीं मिलेगा दादाजी का,
1: जी।
0: पिताजी का भी ज्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि ना वो
2: आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है, FM 102.1 MHz पर। पेश है प्रायोजित कार्यक्रम NCRT एपिसोड 1292।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
2: स्वागत है आप सभी श्रोताओं का उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता, डिंपल देवांगन जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: मनुष्य को हमेशा मौका नहीं ढूंढना चाहिए, क्योंकि जो आज है वही सबसे अच्छा मौका है। आज को ही मौका बना लीजिए।
0: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा, पुष्कर, लेहान, जिज्ञासा, विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया जी का।
2: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का। वो लिखते हैं,
0: अजीत जी और विमलेश जी नमस्कार। आज उमंग कार्यक्रम में दो बहुत ही सुंदर, प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम प्रसारित किए गए। पेड़ की बात शीर्षक से जगदीश चंद्र बसु पर केंद्रित कार्यक्रम ने संवाद के माध्यम से उनके कार्यों, उपलब्धियों, प्रयासों और विज्ञान जगत में उनके अभूतपूर्व योगदान को बहुत सरलता से चर्चित किया।
2: जी।
0: योगेश ठाकुर जी आगे लिखते हैं,
2: ये कार्यक्रम बच्चों को बसु जी के कार्यों के बारे में एक संक्षिप्त झलक प्रदान करता है। भारत की पहली महिला पायलट सरला ठकराल पर आधारित कार्यक्रम बहुत ही शिक्षाप्रद और मनोरंजक था। इस कार्यक्रम के माध्यम से सरला ठकराल के द्वारा प्राप्त की गई अभूतपूर्व सफलता की गाथा का पता चलता है। इतने सुंदर कार्यक्रम को श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ।
0: योगेश जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सुंदर प्रतिक्रिया देने के लिए। अगला संदेश हमें मिला है राधेनगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी का।
2: चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा
0: और ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अबान अब्बासी,
2: धन्यवाद आपके संदेशों के लिए। और अब प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओं आपका हम आभार प्रकट करते हैं कि आपने हमारे कार्यक्रमों की इस श्रृंखला को सराहा है,
0: क्योंकि इस श्रृंखला में आपके लिए हम लेकर आते हैं ढेर सारी मनोरंजक और रोचक जानकारियाँ। तो विमलेश जी इस सप्ताह हम क्या जानकारी साझा करने जा रहे हैं, जरा श्रोताओं को तो बताइए।
2: अजीत जी इस सप्ताह हम चर्चा करेंगे दुनिया के कुछ प्रसिद्ध फूलों पर।
0: जी मुझे याद आया, इसी श्रृंखला में हम भारत के कुछ प्रसिद्ध फूलों की चर्चा भी तो कर चुके हैं।
2: बिल्कुल।
0: तो आज किस फूल की चर्चा की जाए?
2: अजीत जी आज हम बात करेंगे विश्व प्रसिद्ध फूल चेरी ब्लॉसम की।
0: तो क्यों ना शुरुआत की जाए आपसे।
2: जी श्रोताओ, चेरी ब्लॉसम दुनिया के सबसे प्रसिद्ध फूलों में से एक है। इसका मूल है जापान, यानी इसकी उत्पत्ति जापान से मानी जाती है। जापानी भाषा में इसे सुकुरा कहा जाता है। यह फूल जापान की राष्ट्रीय और सांस्कृतिक पहचान माना जाता है।
0: जी विमलेश जी, ठीक वैसे ही ना जैसे भारत की राष्ट्रीय पहचान फूलों के संदर्भ में कमल है।
2: बिल्कुल सही। जब ये फूल खिलते हैं तो लगभग पूरा देश गुलाबी और सफेद रंगों की मनमोहक छटा से भर जाता है। पूरा वातावरण बेहद खूबसूरत हो जाता है। इसके खिलने के समय में बहुत से पर्यटक खास तौर से जापान आते हैं।
0: विमलेश जी आपने इन फूलों के खिलने के बारे में कहा।
2: जी।
0: तो ये हमारे श्रोता जरूर जानना चाहेंगे कि चेरी ब्लॉसम फूलों के खिलने का समय कब होता है।
2: अजीत जी, चेरी ब्लॉसम के फूल सामान्यतः मार्च और अप्रैल माह के बीच वसंत ऋतु में खिलते हैं। हालांकि स्थान और तापमान के अनुसार इसके खिलने के समय में थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है।
0: विमलेश जी एक और बेहद रोचक बात मैंने फूलों के विषय में पढ़ी थी, और वो ये कि चेरी ब्लॉसम के पेड़ों पर इस मौसम में पहले फूल खिलते हैं, बाद में पत्तियां निकलती हैं।
2: जी बिल्कुल सही। और इसके कारण पेड़ पूरी तरह से फूलों से ढका हुआ दिखाई देता है। श्रोताओं आपको बता दें कि जापान में चेरी ब्लॉसम फूलों के खिलने के समय

0: त्योहार जैसा माहौल होता है। इस समय जापान में एक विशेष उत्सव मनाया जाता है जिसे हनामी कहते हैं। अजीत जी, अब आपकी बारी।
1: जी श्रोताओ, हनामी को चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल भी कहा जाता है।
0: जी
1: आइए जानते हैं कि इस उत्सव के दौरान वहाँ लोग क्या करते हैं।
0: इस समय शहरों, गांवों और कस्बों में रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जिनमें चित्रकारी, गीत संगीत और जापानी संस्कृति की झांकियां दिखाई देती हैं। लेकिन हनामी परंपरा की एक सबसे बड़ी खास बात यह है कि
1: इस समय लोग चेरी ब्लॉसम पेड़ों के नीचे बैठकर परिवार, मित्रों और खासकर बच्चों और बुजुर्गों के साथ समय बिताते हैं।
0: जी
1: वे एक साथ बैठकर चेरी ब्लॉसम फूलों की अनोखी छटा का आनंद लेते हैं और प्रकृति को धन्यवाद देते हैं।
0: जी दूर दूर शहरों में रहने वाले परिवार के लोग इस समय एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं।
1: जी
0: और स्वादिष्ट भोजन करते हैं जिनमें विशेष है सकुरा मोची, ये मीठे चावल का केक होता है।
1: और दूसरा व्यंजन है डांगो, जिन्हें हनामी डांगो भी कहते हैं। ये पिसे हुए चावल के बने हुए गोल आकार के पकवान होते हैं। एक और व्यंजन है खास, उसका नाम है टेम्पुरा।
0: जी
1: इसमें तली हुई सब्जियां और मिठाई और विशेष जापानी चाय परोसी जाती है।
0: ऐसा नहीं है कि चेरी के फूल सिर्फ जापान में ही हैं। इन फूलों को विभिन्न देशों ने अपनाया, जैसे कोरिया, चीन, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत। इन देशों ने जापान से इसकी पौध को लेकर अपने देशों में विकसित किया है।
1: एक और खास बात आपको बता दें कि चेरी ब्लॉसम के फूल बहुत कम समय के मेहमान होते हैं।
0: जी
1: ये एक से दो सप्ताह तक ही अपनी पूरी सुंदरता में रहते हैं, फिर मुरझा जाते हैं। एक और खास बात आपको बता दें श्रोताओं कि चेरी ब्लॉसम वाले पेड़ों में जो चेरी के फल लगते हैं ना, वो बहुत छोटे और खट्टे होते हैं। इन पेड़ों में वो चेरी के फल नहीं लगते जो सामान्य तौर पर खाए जाते हैं।
0: खाने वाले चेरी के फलों के पेड़ अलग होते हैं। दरअसल चेरी ब्लॉसम के पेड़ सजावटी पेड़ माने जाते हैं। इनकी प्रजाति चेरी फल वाले पेड़ की प्रजाति से अलग है।
1: जी
0: इनका उद्देश्य सिर्फ सफेद और गुलाबी रंगों की अद्भुत छटा को बिखेरना है।
1: और इन फूलों के द्वारा ये संदेश मिलता है कि जीवन भी क्षणिक है, इसीलिए जब तक जीवन है इसे हम सुंदरता से बिताएं और समय का मूल्य समझें।
0: जी
1: शायद चेरी ब्लॉसम फूलों के हनामी उत्सव का ही प्रभाव है कि जापान में सौंदर्य और कला पर बड़ा जोर दिया जाता है और हाँ, वहाँ समय की बड़ी प्रतिबद्धता है।
0: जी बिल्कुल। तो श्रोताओ, अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। प्रश्न है,
1: चेरी ब्लॉसम के फूलों को जापानी भाषा में क्या कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: चेरी ब्लॉसम के फूलों को जापानी भाषा में क्या कहते हैं?
1: आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर भेज सकते हैं। साथ ही साथ हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भी आप अपने संदेश और हमारे प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। और हाँ,
0: आप एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। और अब बारी है हमारे कार्यक्रमों की, सुनते हैं कार्यक्रम।
1: हमारा पहला कार्यक्रम है वी आर गोइंग टू द जू। सिंगिंग द पोएम श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत इस गीत में मजेदार ढंग से बच्चों की चिड़ियाघर की यात्रा का वर्णन है। पशु पक्षियों की आवाजों को शामिल करके गीत को और भी अधिक रोचक बनाया गया है।
2: चिल्ड्रन, Have you ever visited a zoo?
3: A zoo?
2: Yes, a zoo.
3: Oh, yes.
2: All right. So tell me, what do you see in a zoo?
3: Tiger. Lion.
2: Yes.
3: Monkey. Birds of different kind.
2: Very nice.
3: Camel. Giraffe. And so on.
2: Oh, wow. So, here is a child like you who wants to go to a zoo. Now, let's recite this poem and you all repeat after me. Ready?
3: Ready!
2: The poem goes like this. We are going to the zoo to see a kangaroo.
3: We are going to the zoo to see a kangaroo.
2: And a lion too.
3: And a lion too.
2: We are going to the zoo.
3: We are going to the zoo.
2: The monkeys swing and climb.
3: The monkeys swing and climb.
2: They know it's feeding time.
3: They know it's feeding time.
2: The polar bear and seals.
3: the polar bear and seals
2: enjoy their fishy meals.
3: Enjoy their fishy meals.
2: Yes, we are going to the zoo.
3: We are going to the zoo.
2: The snakes all slide along.
3: The snakes all slide along.
2: The skunk just makes a pong.
3: The skunk just makes a pong.
2: The tiger gives a roar.
3: The tiger gives a roar.
2: He wants to eat some more.
3: He wants to eat some more.
2: We are going to the zoo.
3: We are going to the zoo.
2: Yes, we are going to the zoo.
3: We are going to the zoo.
2: So children, you all have listened to this poem just now. Hope you have enjoyed, isn't it?
3: Yes!
2: All right. So now, what will we do?
4: We will hum and we will sing along.
2: Yes, we will hum and sing along.
3: Yay!

0: Dear friends, you have just heard the sounds of different animals in this song. Now, listen to the sounds again and try to identify them by yourself. This was elephant. This was monkey. And this was tiger. This was polar bear. And this was skunk. And this was kangaroo. And friends, do you know that pets and animals are very important part of our lives and the environment as well? But how? Talk to your elders and teachers.
1: अभी आपने सुना ये संगीतमय कार्यक्रम और अब सुनते हैं कार्यक्रम बाल क्रांतिकारी जोरावर सिंह।
2: इस कार्यक्रम में बाल क्रांतिकारी जोरावर सिंह की वीर गाथा प्रस्तुत की गई है और जानकारी दी गई है कि कैसे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उसने अंग्रेजी शासन से लोहा लिया और देश की स्वतंत्रता के संघर्ष में अपना बलिदान दिया।
1: जी,
3: भारत वीरों और वीरांगनाओं की भूमि है। जब जब भारत माँ की आन बान और शान पर संकट आया, हमारे वीर और वीरांगनाएं अपने कर्तव्यों से कभी पीछे नहीं हटे। बात है अंग्रेजों के विरुद्ध छेड़े गए स्वतंत्रता संग्राम की, जब हमारे वीर और वीरांगनाओं ने अदम्य साहस, सूझबूझ और मातृभूमि के प्रति कर्तव्य को बड़ी बहादुरी से निभाया। इन वीरों और वीरांगनाओं में कई तो काफी कम उम्र में ही कुर्बान हो गए।
4: ऐसे ही एक वीर बालक थे जोरावर।

0: साथियों, हमें अपने शत्रु की हर चाल का, हर हथियार का और हर रणनीति का जवाब देना है। शत्रु को कभी भी कमजोर नहीं समझना है और हर पल हम सबको उससे चौकन्ना रहना है।
1: बिल्कुल ठीक
0: है। आप सब जानते हैं कि हम पर दोहरी जिम्मेदारी है। हमें अपनी रियासत के साथ साथ पड़ोस की रियासतों की भी मदद करनी है ताकि अंग्रेज हमारी मातृभूमि पर कब्जा ना जमा सकें।
2: वीर जोरावर की
3: जय।
2: वीर जोरावर की
3: जय।
2: जय जयरापुर, जय भारत।
3: जय जयरापुर, जय भारत।
4: राजा जोरावर सिंह। हैदराबाद जैसी बड़ी रियासत से सटी छोटी सी रियासत जीरापुर का महज 15-16 की उम्र का राजा, जिसने 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों से लड़ने के लिए अरब और रोहिल्ला पठानों की एक सैनिक टुकड़ी तैयार की थी।
5: अरे वाह, इतनी सी उम्र में जोरावर राजा बन गए।
4: दरअसल पिता की अचानक मृत्यु हो जाने पर उन्हें यह जिम्मेदारी कबूल करनी पड़ी, क्योंकि वो अपने पिता के उत्तराधिकारी थे और दूसरा, अंग्रेजों के बढ़ते हमलों से मुकाबले के लिए ऐसा करना जरूरी था। खैर, ये वो वक्त था जब 1857 की क्रांति में बुरी तरह मात खाने के बाद अंग्रेज नई नई चालें रचने लगे थे। इसी में एक खतरनाक चाल थी, डिवाइड एंड रूल, यानी फूट डालो और राज करो।
5: अंग्रेजी हुकूमत ने हम भारतीयों को जात पात, भाषा, धर्म और क्षेत्र के नाम पर लड़ाना शुरू कर दिया ताकि इसका फायदा उठाया जा सके।
6: महाराज, महाराज, हालात खराब हो रहे हैं, लोग आपस में ही लड़ने लगे हैं। हमें कुछ करना होगा महाराज। पड़ोस की दूसरी रियासतों को भरोसे में लेकर और मिलकर काम करना होगा ताकि इन अंग्रेजों को मनमानी का कोई मौका ही ना मिले।
0: ठीक कहते हैं मंत्री जी, मैं कल ही हैदराबाद जाता हूँ। वो हमारी सबसे बड़ी राजशाही रियासत है
6: जी।
0: वहाँ के निजाम अफजल उद्दौला से बात करूंगा और मुझे उम्मीद है कि वो हमारी बात को अहमियत देंगे।
6: जी महाराज। महाराज, अगर ऐसा हो जाए तो ये आपकी यात्रा की एक बड़ी सफलता होगी।
0: बिल्कुल,
6: आपकी सूझबूझ का जवाब नहीं महाराज। वाकई आप अपनी मातृभूमि और जनता की रक्षा के लिए कितने समर्पित हैं। हम तैयारी शुरू करते हैं महाराज।
0: जी मंत्री जी।
6: जी महाराज।
4: जोरावर ने अगले ही दिन एक नेक मकसद के साथ निजाम के दरबार में दस्तक दी।
2: होशियार, खबरदार, रियासत जयरापुर के महाराज जोरावर सिंह दरबारे खास में जलवा अफरोज हो रहे हैं।
7: जोरावर सिंह महाराज आ रहे हैं। महाराज जोरावर सिंह,
8: आइए हमारे दोस्त। तहे दिल से आपका इस्तकबाल है, तशरीफ रखिए और बताएं कि आपने कैसे तकलीफ की, क्या खिदमत की जाए आपकी।
0: निजाम साहब, हम आपसे एक गुजारिश करने आए हैं।
8: जी जरूर, हुक्म करें, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं।
0: देखिए निजाम साहब।
8: जी फरमाइए।
0: फिरंगी हुकूमत की बर्बरता और साजिशें एक बार फिर बढ़ रही हैं। गदर में मिली नाकामी के बाद अब वो हमें आपस में लड़ा रहे हैं
8: जी।
0: इसलिए हमें मिलकर काम करना होगा ताकि वो किसी साजिश में कामयाब ना हो पाए।
8: राजा जोरावर, हम भी ऐसा ही चाहते हैं। हम कल सुबह तफसील से बात करते हैं
0: जी।
8: तब तक आप हमारे खास मेहमान की तरह इस किले में रहें। हमारे वजीर सालार जंग आपके आराम और कल की बातचीत के सारे इंतजाम कर देंगे।
9: जो हुक्म मेरे आका, हम महाराज और उनके सैनिकों का पूरा ख्याल रखेंगे। आइए महाराज।
4: अफजल उद्दौला उर्फ मीर तहनियत अली खान 1857 से 1869 तक
8: हैदराबाद के निजाम यानी शासक थे और यहाँ के पहले शासक कमरुद्दीन खान आसफ जाह के पांचवें वंशज थे। दरअसल भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान हैदराबाद रियासत पर नवाबों की हुकूमत रही। खैर, निजाम के दरबार में अपने शानदार स्वागत से जोरावर खुश थे। वहीं निजाम भी उनकी देशभक्ति और सूझबूझ को देखकर हैरान थे।
5: जी हाँ, जीरापुर की जनता के लिए हैदराबाद का साथ बहुत जरूरी था और जोरावर यहाँ काफी उम्मीद से आए थे।
9: ए, सुनो, सारी तैयारियां पूरी है ना?
7: बिल्कुल।
9: देखो, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। एक तो जोरावर खुद बहुत बहादुर है, दूसरे उसके अंगरक्षक साये की तरह उसके साथ रहते हैं, और तीसरी बात यह है कि अगर हमारी साजिश कामयाब ना हुई तो फिरंगी हुकूमत हमसे नाराज हो जाएगी और इनामो इकराम की जगह मिलेगी लानत मलामत।
10: हुजूर, आप फिक्र ना करें, सब कुछ वैसे ही होगा जैसे आपने कहा है।
9: लेकिन जरा होशियारी से।
10: जो हुकुम सरकार।

0: चार तरफ से घिर चुके हो।
1: ये क्या है?
0: यू आर अंडर अरेस्ट।
1: एक सोते हुए निहत्थे इंसान को आधी रात में ऐसे कायरों की तरह गिरफ्तार करते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? हिम्मत है तो हमसे लड़कर दिखाओ, आओ सामने।
0: बाउट हो गई तुम्हारी बहादुरी। फौजियों,
2: हुजूर,
0: बांधो इस बच्चे को जंजीर से।
2: जी।
1: छोड़ो मुझे, हाथ मत लगाओ मुझे, मुझसे हाथ हटाओ। मैंने कहा छोड़ो मुझे, हटो यहाँ से।
0: शाबाश, शाबाश, सारल जंग, मैं खुश हुआ। तुम्हें मोटा इनाम दिलवाऊंगा।
1: अच्छा, तो ये सब इसकी कारस्तानी है। एक बुजदिल ही दूसरे बुजदिल का साथ दे सकता है। लानत है तुम पर सालार जंग, लानत है। लालच में तुम इतने गिर जाओगे हमने सोचा ना था।
0: चलो इसको, चलो
1: मुझे, चलो, छोड़ो मुझे।
3: बाद में अंग्रेजी फौज ने जोरावर पर बहुत अत्याचार किए। उनकी सैनिक तैयारी के बारे में पूछा गया, उनसे क्रांतिकारियों के नाम और ठिकाने पूछे गए, तरह तरह के लालच भी दिए गए, लेकिन वो जरा भी कमजोर नहीं पड़े और बार बार यही कहते रहे कि मातृभूमि से विश्वासघात नहीं कर सकते, चाहे जान ही क्यों ना गंवानी पड़े।
4: जोरावर से सारे राज उगलवाने के लिए थक हार कर कर्नल मेटोस टेलर नाम के एक नए अफसर को नियुक्त किया गया, लेकिन वो जितना ही सख्त था उतना ही दोस्ताना मिजाज का भी था। उसके मन में जोरावर के प्रति हमदर्दी थी। वो और जोरावर जल्द दोस्त बन गए और जोरावर उसे प्यार से अप्पा कहने लगे।
5: देखो जोरावर, अगर तुम प्यार से बचाओगे तो तुम्हें सजा की जगह आम माफी मिल जाएगी और मैं रेजिडेंसी से कहकर तुम्हें मालामाल करवा दूंगा।
1: अप्पा, ये नहीं हो सकता।
5: देखो देखो, तो मैं हमारी दोस्ती की कसम, बात मान लो, मैं तुम्हें कोच नहीं होने दूंगा।
1: ये नामुमकिन है।
5: Why?
1: हमें माफ कीजिए, हम अपनी रियासत और मुल्क दोनों से दगा नहीं कर सकते। हम देशद्रोह नहीं करेंगे, हरगिज नहीं करेंगे।
5: Yeah.
1: अप्पा साहब, अब हम मौत का सामना करने के लिए तैयार हैं। हमें जो भी सजा होगी अब हमें मंजूर है।
5: तो नहीं मानोगे। देखो देखो, आजीवन कारावास या फिर मौत की सजा हो सकती है तुम्हें। ये सजा,
1: अप्पा साहब, हमारी बस एक विनती है कि हमें फांसी पर मत चढ़ाइएगा। हमने ऐसा कोई अपराध नहीं किया है जिसके लिए हमें शर्म आए। हमने जो किया हमें उस पर गर्व है। कैद, फांसी या काला पानी, इनमें से कोई भी इतना भयंकर नहीं जितना कि विश्वासघात है। इसलिए हमें फांसी के बजाय तोप से बांधकर उड़ा दीजिएगा। हम कुछ नहीं कहेंगे और जरा भी नहीं डरेंगे, जरा भी नहीं।
5: एक्चुअली यू आर अ फूल।
3: जोरावर की ये बात सुनकर कर्नल टेलर का दिल भी सिहर उठा। बाद में उनकी गुजारिश न मानकर जोरावर को काला पानी की सजा सुनाई गई।
4: काला पानी की सजा?
3: हाँ, काला पानी की सजा। भारत की भूमि से सैकड़ों किलोमीटर दूर अंडमान निकोबार का एक द्वीप है, जहां अंग्रेजों ने स्वतंत्रता सेनानियों को यातनाएं देने के लिए एक जेल बनाई थी।
4: जोरावर को भी अंग्रेज सैनिक नाव से काला पानी की जेल ले जाने लगे।
3: और समुद्र में बीच रास्ते जोरावर ने एक अंग्रेज पहरेदार से रिवॉल्वर छीन ली।
1: काले पानी की सजा से मौत को बेहतर समझता हूँ मैं। भारत माँ का बहादुर बेटा हूँ। इस सजा को मेरी रियासत का सामान्य सा व्यक्ति भी नहीं पसंद करेगा। फिर मैं तो राजा हूँ।
4: एक छोटी सी रियासत के छोटी उम्र के राजा ने देश के लिए बड़ा काम कर दिखाया और मातृभूमि की रक्षा के लिए मौत को गले लगाकर अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज किया।
2: तो श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाल क्रांतिकारी जोरावर सिंह, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
6: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
7: नमस्कार। अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सभी शैक्षणिक योजनाओं का लाभ समय पर विद्यार्थियों तक पहुंचे। बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 की उपलब्धियों और नए वर्ष 2026-27 की कार्य योजना पर भी चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने आज रांची में आदिनिवास डिजिटल ऐप का शुभारंभ किया। मौके पर उन्होंने कहा कि यह ऐप देश भर के आदिवासी समुदाय को एक सूत्र में जोड़ने का काम करेगा। इससे आदिवासियों की संस्कृति, भाषा, भूमि और परंपरा के संरक्षण के साथ रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। रांची में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के मेडिकल कॉरपोरेशन में नियमों को ताक पर रखकर चहेते अधिकारियों को सेवा विस्तार दिया गया है। बकरीद त्यौहार को शांतिपूर्ण और सुरक्षित माहौल में संपन्न कराने के लिए पाकुड़ जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। उपायुक्त मेघा भारद्वाज और पुलिस अधीक्षक अनुदीप सिंह के नेतृत्व में पुलिस जवानों ने शहर के मुख्य मार्ग और संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया। खूंटी पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान के तहत लोगों को खोए हुए मोबाइल फोन बरामद कर उन्हें वापस लौटाए हैं। जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में एसपी ऋषभ गर्ग ने कुल 56 लोगों को उनके गुम हुए मोबाइल फोन सौंपे। जामताड़ा पुलिस ने लूट और छिनतई की घटनाओं में शामिल एक कुख्यात अपराधी को गिरफ्तार किया है। जिला पुलिस अधीक्षक शंभू कुमार सिंह ने बताया कि पकड़े गए अपराधी के पास से एक देसी पिस्तौल, एक जिंदा कारतूस, मोटरसाइकिल और लूटा गया सामान बरामद हुआ है। जमशेदपुर के गोविंदपुर इलाके में भीषण गर्मी के बीच पिछले 48 घंटे से पानी की सप्लाई पूरी तरह ठप है। जलापूर्ति ठप होने से नाराज ग्रामीणों और महिलाओं ने जिला परिषद सदस्य डॉ. परितोष सिंह के नेतृत्व में पानी टंकी परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
8: आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। संध्या के 5:02 हुए हैं। पेश है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी।

0: कार्यक्रम किसान वाणी सुनने वाले सभी किसान भाई सबके कार्यक्रम में स्वागत है। साथ है नाम तबाइन देने से सभी के जोहार प्रणाम। और आज हमारे साथ है तीन वीरेंद्र भाई, तो वीरेंद्र भाई तोरो जोहार
1: जोहार जोहार नमता बहिन और कार्यक्रम किसान वाणी सुने सभी किसान भाई बहन के जोहार प्रणाम। और देखा कि एकर जे हथिन प्रायोजक हथिन कृषि एवं कल्याण मंत्रालय भारत सरकार, एक जो प्रायोजक हथिन कृषि किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। और देखा कि अब आज हम जो चर्चा करबे खास करके खरीफ फसल के बारे में, लेकिन एक पहले एक सुनो ये जरूरी संदेश।
0: एकदम देखला कि हम इन जो है एक के चीज पर आज ने चर्चा कर बे आर भी
1: बहुत
0: है,
1: कुछ है चर्चा
0: एकदम सही तो एक एक करके तनी बता दो कि भाई काका पर हम इन चर्चा
1: कर। सबसे पहले तो आज चर्चा कर खरीफ फसल के तैयारी और उसके बाद जरूरी संदेश हरा चारा उत्पादन एवं संरक्षण। और देखा कि एक जहमिल नानले ही है जैविक कीटनाशी और जैविक जीवामृत बनावे के तरीका के बारे में किसान बतेथिन। और इस तरह बहुत कुछ जानकारी आज हम चर्चा करबे
0: एकदम। तब सबसे पहले हम इन सुनाऊ है एक जरूरी संदेश, उकर बाद हम इन कार्यक्रम में आगो भी बनल रहे।
1: हाँ।
2: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना।

0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: तो देखला कि जरूरी संदेश के बाद एक बार फिर से हम इन कार्यक्रम में हाजिर हुए और बात करबे सबसे पहले खरीफ फसल के तैयारी के बारे में। खरीफ फसल जैसन कि हम इन जानो हुए कि धान हो गए, मक्का है, सोयाबीन, अरहर, तो इस सब के का है कि बेस पैदावार के लेल और बेस मुनाफा हम इनके मिले एकर लेल जरूरी का है कि समय पर खेत के तैयारी हो जाए और ओकर साथे उन्नत बीज के चुनाव हम इन कर लिए। आर भी बहुत कुछ एकर में जरूरी है लेकिन शुरू में ही देखला कि सही योजना से काम करे पर का हो है कि लागत हम इनके कम लगो है और फसल के शुरुआती जो रोग हो है ओकरा से हम इन बचा सको ही अपन फसल के। आर एकर लेल है कि मई के आखिरी सप्ताह में या फिर जून के जो पहला सप्ताह हो है एकरा में खेत के गहरा जुताई करल के करल जाए है और एक में कहा है कि खेत के जो माटी हो है पलटे वाला हल से गहरा जुताई करे के बहुत जरूरी हो जाए ताकि जे जमीन के भीतर जितना भी कीड़ा मकोड़ा जे नुकसान पहुंचाए वाला रहो है वो छिपल रहो है तो वो सब ऊपर आ जाए है और फंगस वगैरह जितना रहो है सब ऊपर आ जाए माटी के ऊपर और जब तेज रौद लगो है तो वो सब मर जाए है।
4: देखा ना, मतलब इन तो बहुत बढ़िया बात के लिए कि गहरी जुताई बहुत जरूरी चीज़ है। जैसे किसान है कि रोटावेटर से कल्टीवेटर से जुताई करो थी लेकिन आज के समय में मिट्टी पलटे वाला हर से भी जुताई करे, तावा हर से भी जुताई करे चाहिए क्योंकि जमीन का हुआ है ना कि जिससे तू ऊपर जोतवा तो करीब 7-8 इंच के नीचे जब तो थाली जैसे रो परत जैसे वैसे एकदम पूरा सील हो जाए जेकर चलते पानी मतलब क्षमता जो सूखे को कम हो जाए और अगर मिट्टी पलटे वाला हर से तू अगर जुताई करो तो उगर से कहा हुआ है कि पानी सोखे के क्षमता बढ़े। अगर क्षमता बढ़े कारण है जब भी किसान के जुताई करे चाहिए सबसे पहले कि अगर खेत में घास रोटावेटर से जोत के घास के काट के छोड़ दा 2-4 दिन 8 दिन के लिए और उकर बाद जैसे कांटा हर यानी कल्टीवेटर हर से थोड़ा 3-4 बार जुताई करके एक बार मिट्टी पलटे वाला हर से भी जुताई करे चाहिए और तावा हर से भी जुताई करे चाहिए। कहे का मतलब है कि खेत में का बहुत तरह के कीट पतंग देखल जा है तो अभी जो धूप होने ऐसा धूप में जब भी किसान जोताई करते वो कीट सब व्याधि सब मर जाए और देखा खेत के जैसे तैयारी करे खो जैसे वाले खरीफ के आप तैयारी जैसे करे खो धान मक्का इस सब के जो तैयारी हो वो है मोटा अनाज के तो उगर तैयारी सबसे पहले किसान के करे चाहे कि अगर 1 एकड़ खेत के तू तैयारी करे था तो उकर में 5 से 6 टन यानी 3 से 4 ट्रॉली गोबर ट्रैक्टर के ट्रॉली से खेत में दे के और बढ़िया से छिटाई करके और उकरा बढ़िया से जोताई कर दिए जोताई एक चलते कर दिए चाहिए ताकि जैसे बारिश होती तो गोबर ना बहता। और एक और बड़ा बात हम बतेबो कि अगर बढ़िया उत्पादन तू लियल चाहो हा तो अभी के समय में का है ना कि जैसे तुहर जब बहुत तरह खेत में बीमारी लगल हो तो बीमारी से बचे खातिर गोबर जब तू लान ला है गोबर के सबसे पहले अगर गीला गोबर हो सूखे दा सूखे के बाद ओकर में पानी तू हल्का डाल दा पानी दिया हल्का तिरपाल से ओकरा ठग दा 2-3 दिन 4 दिन खातिर तो देखो धीरे धीरे भुरभुरा हो जितो। अब देखा हाथ में अगर चिपकत पानी ना छोड़े थो नमी ना बराबर हो तो ओकर में ट्राइकोडर्मा अगर एक तुहर ट्रॉली गोबर यानी 5-4 ट्रॉली गोबर हो तो ट्राइकोडर्मा कम से कम किसान के 3 से 4 किलो 5 किलो कर दे के मिला के और एक मतलब जालीदार बोरा ढक दिए चाहिए ऊपर में बीच बीच में हल्का हल्का नमी ऐसे 8-10 दिन जब हो जो देखो पूरा जब जाली बन जो गोबर में एकदम भुरभुरा हो जो तो खेत में जैसे प्रयोग करवा तो बहुत ही फायदेमंद हो किसान के। तो हम इन खरीफ फसल में कुछ तैयारी अगर बढ़िया से करिए तो अपन फसल के उत्पादन बढ़िया से ले सको।
3: एकदम सही बात बताला वीरेंद्र भाई काहे कि तो देखला कि गोबर कभी कभी हो पुरान गोबर न मिलो है और खेत के लिए फसल के लिए सबसे बढ़िया हो है पुराना सड़ल गोबर जेकर में मतलब कि कीड़ा दीमक लगे के डर न रहो है और जरा सा भी अगर कहला कि ताजापन ओकर में रहो है तो खेत में डाले लग न रहो है लेकिन तू ये जे उपाय बताएला ये बड़ी बेस उपाय है कि अगर सड़ल गोबर न मिले है तनी अगर ताजे ही है तो ओकरा ये उपाय करके हम

0: ओकरा हम इनके का है बीज के उपचारित भी करे के चाहिए। और हम इनके देखला कि स्वास्थ्य बीज बहुत जरूरी हो है बेस फसल के लिए।
1: तो ये बहुत बढ़िया बात तू कर रहा है, बोल रहा है कि जैसे कि भी धान, धान के जब देखा कि अभी जो महीना अब खत्म है तो पांचवा महीना छठा महीना जब जैसे है तो जून तो ओकर में कहा 15 जून से किसान जो थे 20 जून से धान के बुआई करे लगो थे। तो सबसे पहले बीज के चुनाव अभी हम कर ले चाहे बीज के चुनाव ये करे का करे चाहे सबसे पहले देखा पर अगले साल हमारे ज्यादा उत्पादन कौन धान के हले कौन मक्का खेले वो बिहन आदमी के पहले परचेज करे के चाहिए। अगर जैसे परचेज करे से पहले करना का हो कि अगर तुहर जो 10 दाना ले के जर्मेशन चेक कर ला 10 से 20 दाना अगर 20 दाना तू डाल ले और 18-17 के जर्मेशन हो 16 के जर्मेशन हो समझे बढ़िया ओकर जर्मेशन है तो ओकरा तू बीज डाले के तैयारी कर सको। अब जैसे धान में एक बहुत बड़ा आज के डेट में ट्रेंड चल रहा हो कि ओकर सही बीज हम कैसे ओकर से निकाल सको ये तो अभी कहा जैसे अगर 5 किलो धान के बिहन हो तो 100 से 150 ग्राम नमक घोल के अगर तू मिला दे हल्का सुसुम पानी गर्म करके नमक और धान में डाल दा जे धान थोड़ा खखरी टाइप हो तो ऊपर छपील जाए तो निकाल दा जब बैठ लो बढ़िया धान हो तो ओकर से भी तू अपन बीज के बढ़िया चुनाव कर सको हा। और देखा कि अभी क्या का हो कि खास कर अगर धान के भी जो खेती करो पहले लोग कि एक पेट भरे खातिर खेती करो लिए बाद धीरे धीरे उत्पादन बढ़ अभी क्या सेंटेड धान भी आ गए लंबा दाना वाला बासमती टाइप के उस सबके भी धान के अगर तू खेती करो थोड़ा अच्छा बाजार भाव मिलते
0: एकदम। और देख ले कि सही अगर हम इनके खरीफ फसल जो है लिए के है ओकर अच्छा उत्पादन चाहे हम इनके तो हम इनके तैयारी अब धर से शुरू कर दिए के चाहिए। और हम इनके जैसे कि योजना बढ़िया रहता है तैयारी बढ़िया रहता है तो हम इनके फसल उत्पादन जो है बढ़िया होता है। तो कार्यक्रम में हम इन आगो भी बनल रहे अब धर सुना ये जरूरी संदेश।
1: हाँ, सुनल जाए।
2: अरे अरे अरे क्या कर रहा है इधर इधर इधर हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का
3: कला बोल रहा
2: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं
3: मतलब
2: देख बेटा तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी। अरे पहले ऐसा नहीं था पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी शुद्धता झलकती थी माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहा
3: पर हम तो सब ही डाले
2: सब नहीं आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं पर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
3: सच है
2: रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
3: ठीक है भाई मैं भी आज से खेती शुरू करूंगा।
4: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
0: तो देख लो ये जरूरी संदेश के बाद फिर से हम इन कार्यक्रम किसान वाणी में आगे लिए है। और अब जो बात कर पे वो है कि हम इन के जानवर के भी देखे के है उखर खान पियन कैसन रहे और जे कि हम इन दूध व्यवसाय के हिसाब से जानवर पालो हुए तो उखर में हम इनके फायदा हो कहीं से कोई तरह का नुकसान नहीं हो तो ये सब चीज के हम इनके देखे के है। और जैसे हम इन अगर दुधारू पशु के पालो हुए तो उखर आहार के लिए हम इन देखो कि बढ़िया बढ़िया हम इन खाना संतुलित आहार दे ही है तो सबसे बढ़िया जो है सस्ता और बढ़िया चारा जो हो है वो हरा चारा हो है। तो आज हम इन बात कर पे हरा चारा के बारे में कि भाई कौन कौन हरा चारा बढ़िया हो है और कब कब उगावल जाए है उसका संरक्षण करके हम इन सालों भर कैसे खिला सके ही अपन जानवर के। तो जाड़ा के समय में जैसे हम इन देख लिए तो बरसीम हो गए जय है और रिजका ये सब हरा चारा के हिसाब से हम इन लगा सको ही है। और गर्मी के समय में जैसे मक्का हो गए ज्वार बाजरा लोबिया ये सब हम इन लगा सको ही है। और बारहमासी अगर देखल जाए तो बारहमासी घास जो है वो नेपियर घास सबसे बेस हो है कि एकरा एक बार लगा दिया जाए है और कई साल तक एकरा काट काट के हम इन जानवर के खिला सको ही है मतलब काटबे और फिर से वो बढ़ जाते बार बार एकरा लगावे के जरूरत नहीं है।
1: तो देखा है ना मतलब बहुत ही अच्छा तो बात कर रहा है कि कौन घास कब लगवा चाहिए और कौन घास कितना दिन चलो है। और हरा चारा में जैसे कि हरा चारा में जैसे ओकर में अगर ओकर उत्पादन ले ओकर से सूखा चारा भी निकल जाए तो ओकरा रखा जाए जैसे कि मक्का मक्का में हम इन जब शुरू में तो हरा में भी अगर जानवर के खे लिया और जब मक्का ओकर से निकाल लिया ओकर जो डंठल बचले ओकरा हम इन एक सूखा चारा के रूप में घर में ओकरा संरक्षण करके

0: रख सको ये। और ओकर बाद जैसे कि एकर में भी बहुत ट्रेंड चलल हो कि देखे थे तो कि मतलब स्वीट कॉर्न मक्का के ज़्यादा भी प्रचलन चलल हो। तो स्वीट कॉर्न में सबसे बड़ा खासियत का है कि तू देखवा कि अभी के समय में ओकरा बाजार में अगर उत्पादन करके तू बेचे चाहे ओकर डंठल के अगर मक्का बेचे के बाद वो भी 4 रुपये से 3 रुपये किलो बिको। काहे कि ओकर में इतना मिठास हुआ है जेके चलते दूध अधिक दे। तो ओकरा करो का थी जे भी थी डेयरी वाले ओकरा लेके घर सुखा के फिर संरक्षण करके बढ़िया से होती है और कटिंग करके बीच बीच में जानवर के ओकरा देते रहते हैं। जैसे कि अभी एकदम गर्मी पड़े थोड़ा देखा कहीं आहार बाहर में अभी थोड़ा हरा चारा ना मिले तो वैसा स्थिति में वो सब आहार दे के अधिक दूध लियल जाए। इसी के चलते आदमी के कोशिश करे के चाहिए कि जैसे धान से जब वेस्टेज पुआल हुआ है तो ओकरा भी रख के हमें जानवर के खिलाओ है तो ओकरा कहल जाए संरक्षित करे के उपाय। तो एक तरीका से हुआ है
1: एकदम सही कहला कि जैसे पुआल के तो बात कर ला तो गांव देहात में हमें देखो ये कि माचा बनवल जाए है। धान के जे नीचे डंठल बचा है ओकरे पुआल के रूप में रखल जाए है और कुट्टी भी ओकरे से बनावल जाए है। बिचाली पहले बांध बांध के रखा जाए है फिर ओकरा काट के कुट्टी बनावल जाए है। तो इस तरह से संरक्षित करके हमें है कि अपन जानवर के सालों भर खिला सको ही है। और देख ला कि हम भाई एगो किसान से मिले हलिए जे कि बहुत बढ़िया खेती करत है। जैसे कि उनकर का है कि जैविक खेती के वो ज्यादा बढ़ावा दे हथिन और हमेशा से बहु फसल जो हो है मतलब 3-4 फसल एक साथ लगावे के वो करो हथिन। तो इनकर जो अनुभव है हम इन चाहो है कि मतलब और भी किसान भाई बहन तक पहुंचे इनकर अनुभव। तो इनकरे जुबानी हम इन सुनो है और सबसे पहले तो ये आज जो बतेथिन वो है कि जैविक कीटनाशी और जीवामृत जो बनाए के का तरीका है कौन तरी से बनाओ हथिन ओकर बारे में ही अपने जुबानी बतेथिन। पहले इनखरी
0: तो देखा कि किसान जे थो राम प्रसाद कुशवाहा और हम इन से बात करते थोड़े नामता परवीन। तो ये जानकारी हम इन सुनो ये और समझो ये।
1: किसान भाइयों हमारे साथ है राम प्रसाद कुशवाहा जी। नमस्कार।
2: हाँ नमस्कार, मैं राम प्रसाद कुशवाहा हूँ, ग्राम अमनारी सदर ब्लॉक हजारीबाग जिला से निवासी। अभी कीटनाशक हम लोग अगर प्रयोग करना ही हो बाई लक अगर मेरे फसल में कीड़ा आएगा तो हम लोग निमासिन बना लेते हैं। ठीक है,
1: ये कैसे बनाते हैं?
2: निमासिन होगा, नीम से हो गया, नीम का पत्ता ले लिए, मैंने जो भी 5 किलो या 1 किलो ले लिए नीम का पत्ता, जो जानवर ना खा पाए उस पत्ता को अरेंज कर लेते हैं। जैसे नीम का पत्ता, करंज का पत्ता, एकोन का पत्ता, इस तरह का जो भी पत्ता आता है हमको उसको टीना में गर्मी के दिन में रख दिया, अगर धूप में तो अपने आप गल जाएगा, और अगर ठंडा के दिन में थोड़ा उसको गर्म कर दिया जाएगा, उसको निचोड़ के फिर उसका रस निकाल लेते हैं। ठीक है, अगर उसको और कड़क बना है तो लहसुन अदरक का जूस उसमें मिला देते हैं,
1: लाल मिर्ची भी लोग डालते हैं।
2: हाँ, लाल मिर्ची भी, मैंने और जितना कड़क बनाना है आप पर निर्भर है। हाँ, तो लाल मिर्ची के तीखा मिर्ची का उसका भी उपयोग उसमें डाल के उपयोग कर लेते हैं। मैंने सब को निचोड़ कर मैंने निचोड़ के क्या कर सूती कपड़ा में छान लेते हैं और छान के फिर बोतल में भर के 6 महीना के लिए आपका सेफ हो जाएगा। 6 महीना के बाद हम अपना धीरे धीरे 5 ml प्रति लीटर के हिसाब से हम जमीन अपना प्रयोग कर सकते हैं। और ये मेरा हो गया अभी किसान भाई से।
1: अच्छा, इसको जैसे सूती कपड़ा से छान कर रखते हैं तो फिर डालने समय तो उसमें पानी भी?
2: हाँ, पानी का मात्रा 5 ml प्रति लीटर के मात्रा से
1: आप उसको बढ़ा दें, पानी में 5 ml डालते हैं
2: तो इसके मात्रा से अब किसान भाई खेती का बहुत जोर दे रहे हैं। कभी कभी कीटनाशी और इस तरह का बीजामृत बनाने का ग्रोथ प्रोमोटर जिसको बोला जा सकता है, तो किसान भाइयों से कहता हूँ कि आप लोग भी तैयार कीजिए। हम बाजार में 1 लीटर अगर हम कीटनाशी खरीदने जाएंगे हमको लगता है कि 3000 पड़ जाएगा।
1: बिल्कुल, एक तो दाम ज्यादा पड़ेगा, दूसरा चीज है कि हम फसल पे डाल रहे हैं तो और कल मन करेगा कि अरे कल चलो उसको हमको खाना है, तोड़ के ले आए तो वो तो हानि पहुंचाएगा।
2: लेकिन हम वही कीटनाशी अगर किसान भाई खुद उत्पादन करके वो 3000 के जगह हम 1000 रुपया में भी 500 रुपया में उतार दूंगा, 500 रुपया भी लागत नहीं लगेगी हमको लगता है, 300-400 रुपया
1: में।
2: लेकिन अपने फसल के साथ अपने फसल का उपयोग के बाद भी हम कीटनाशक बाजार में और किसान को दे सकते हैं। उससे क्या होगा कि हमारा जो ये रासायनिक और कीटनाशक का प्रयोग से हम लोग बच पाएंगे।
1: बिल्कुल। और इसमें लागत की तो बात ही नहीं है कि अकवन का पत्ता है, नीम का पत्ता है,
2: जानवर
1: का पत्ता है,
2: और जानवर
1: नहीं खाते, तो ये तो आपको जंगल झाड़ में ऐसे ही आसानी से मिल जाता है,
2: किसान के खेत के आसपास ही है।
1: बिल्कुल, अकवन का तो रोड किनारे कितना ऐसे ही मिल जाता है झाड़ी, तो इसमें कोई तक खर्च है ही नहीं है। आप गर्मी के दिन में बताए कि उसको सिर्फ ड्रम में डाल के छोड़ देना है,
2: हाँ, गर्मी
1: तो
2: में
1: कोई मेहनत नहीं है, और ठंडी के दिन में है उसको उबाल देना,
2: हाँ, उबाल
1: है
2: दीजिए,
1: तो कोई मेहनत इसमें है नहीं। हाँ, थोड़ा सा आपका खर्च बैठेगा अगर उसमें लहसुन अदरक और लाल मिर्च डाल,
2: वेस्ट लहसुन है ना जो खराब,
1: हाँ,
2: है
1: खराब
2: उसका भी आप,
1: तो ये समझिए आपका जो कीटनाशी बन रहा है एक तरह से इसको बोल सकते हैं जीरो बजट का ये,
2: हाँ, जीरो बजट में
1: नहीं, बहुत अच्छे
2: मेरे पास ना, हम खाद में पैसा लगाता हूँ ना कीटनाशी में लगाता हूँ, और बहु फसलीय की तरह हम एक फसल से दो फसल हम दोहरा लाभ कर लेता हूँ।
1: ये तो बहुत ही अच्छी बात है और मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं तो ज्यादातर यही सबसे कहती हूँ, जितने किसान से भी मिलते हैं तो यही कहती हूँ कि ऐसा ही फसल होना चाहिए कि एक तो ये एक तरह से जीरो बजट की खेती ही होती है, कि मतलब पशु का वेस्टेज है वो हम खेत में डाल रहे हैं, खेत का वेस्टेज है वो पशु को भोजन के रूप में दे रहे हैं, आहार के रूप में दे रहे हैं, तो कहीं से हमें कोई चीज की जरूरत नहीं पड़ती। कीटनाशी भी हम जो आसपास के पौधे हैं उससे हम बना लेते हैं, तो आपके से बात करके ना बहुत ही अच्छा लगा ये चीज।
2: हाँ, यही तो है, हम कुछ क्या करें, अकेले खेती तो हम पूरे समाज को ऑर्गेनिक खेती पर जोर दे रहे हैं, लेकिन हमें हर किसान से विनती है कि समेकित कृषि प्रणाली और जैविक खेती और ये बहुफसलीय और वैल्यूएबल वेजिटेबल पर काम करें, ताकि लो बजट में, जीरो बजट में अपने आय बढ़ा सके।
1: बिल्कुल,
2: ये बात है,
1: बिल्कुल। जैसे कि होता क्या ना, अभी तो बहुत किसान रासायनिक खाद रासायनिक कीटनाशी पे जोर दे रहे हैं, तो अभी का फसल अच्छा हो रहा है, लेकिन यही जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ते हैं, एक साल दो साल, हाँ, तो जमीन और ज्यादा खाद मांगता है,
2: जमीन का ताकत खत्म हो रहा है,
1: ताकत खत्म हो,
2: हम क्या करते हैं, अभी हम लोग का ताकत कमजोर हो, क्यों, जो आदमी रासायनिक खा के कीटनाशी खा के खा तो लेता है, लेकिन तो ताकत नहीं, बोलता मेरा ताकत, वही हमारे पूरे पूर्वज है, हमारे पुराने लोग है जो घट्ठा खा के, मकई का घट्ठा और ये अनाज मड़ुआ खा के जो है, मोटा अनाज खा के आज तंदुरुस्त है।
1: बिल्कुल,
2: और हम लोग आज बहुत अच्छे अच्छे खा तो रहे हैं, हाँ, लेकिन कमजोर, मेरा बच्चा कमजोर है, अब लोग कमजोर है, मेरा उम्र तो है 55+ है, तो 55+ में हमें कोई बीमारी नहीं है, ठीक है, ना शुगर है ना प्रेशर है, कोई बीमारी नहीं, और अपना आराम से खेत में काम करता हूँ। इससे किसान से क्या है, किसान क्या करते हैं कि अपना तो उत्पाद खाते ही हैं, लेकिन फिटनेस का जगह हुआ है। आप टाउन वाले क्या करते हैं, आप लोग जॉगिंग करते हैं, पूरा कसरत करते हैं, कसरत करने वाले
1: किसान का तो क्या खेत में ही सारा,
2: वहाँ पैसा भी देना पड़ता है, और हम लोग को पैसा क्या देना पड़ता है, हम लोग उल्टे व्यायाम कर लेते हैं, खेती में काम करके व्यायाम कर लेते हैं, इससे भी फिटनेस का, हर बीमारी तो हम लोग से दूर ही रहता है, किसान जो है असली किसान जो है उससे बीमारी बहुत दूर में रहती है।
1: बिल्कुल, लेकिन आपके बात से तो हम ये भी चाहेंगे कि और भी जितने किसान हैं आपसे प्रेरित हो और समेकित कृषि प्रणाली जैविक खेती पे जोर दे, क्योंकि आने वाला समय में अगर हम रासायनिक खेती ही करते रहे तो आने वाला समय में ये मिट्टी बंजर हो जाएगा, जमीन बंजर हो जाएगा।
2: किसानों को कहते हैं अपना जमीन ठीक है, मानते हैं कि गाय मेरी पास कम है, ठीक है, कीटनाशी तो मेरे पास है आसपास, इसको उगाने में कोई खर्च नहीं है, अब बाकी रहे कम गाय है, तो गोमूत्र और गाय का गोबर से जीवामृत हम लोग बना सकते हैं
1: जी, बिल्कुल,
2: ठीक है, गुड़ है, बरगद का मिट्टी है, ठीक है, ड्रम है आसपास लेके,
1: इसको थोड़ा ना अच्छे से विस्तार से बताइए, जीवामृत कैसे,
2: जैसे जीवामृत का है कि 5 किलो गोबर, गाय का गोबर हो, देसी गाय का गोबर बहुत बेहतर हो गया, 5 लीटर गोमूत्र हो गया, ठीक है, गुड़ 1/2 kg या वेस्टेज माने मीठा गुड़ मिल जाएगा, बेसन है 1/2 kg, ठीक है, और ये बरगद के नीचे का मिट्टी, ये पांचों चीज को लेके 200 लीटर या 50 लीटर में मात्रा कम बेसी किया जा सकता है, इसमें अगर हम एक सप्ताह सुई घड़ी के सुई तरह से हम घुमाए और घुमाने पर ये खुद तैयार, एक सप्ताह में मेरा तैयारी आ जाएगी,
1: अच्छा।
2: तो जीवामृत जिसको हमको ग्रोथ प्रोमोटर बोला जा सकता है, इससे क्या होता है कि फसल भी सुरक्षा, ग्रोथ प्रोमोटर हो गया। हम खाद क्यों, अभी क्या होता है कि गोबर जो खाद है, गोबर खाद कोई डालता नहीं है, कुंड होएगा भाई, ट्रैक्टर लेबर कहाँ मिलता है, घर के भी नहीं मिल पाता है, इसीलिए हम लोग जीवामृत बोतल में भी, लीटर में, बाल्टी में 2-5 लीटर से, और ड्रिप के माध्यम से हम लोग पटवन कर सकते हैं, और स्प्रे के माध्यम से देख सकते हैं।

0: दोनों हमारा सहूलियत है, इसमें कोई दिक्कत नहीं।
1: अच्छा, इसमें पूछना चाहेंगे कि आप बोले बरगद के जड़ के पास की मिट्टी, तो हाँ, वो मिट्टी क्यों लेते हैं?
0: बरगद के जड़ के नीचे जीवाणु होती है।
1: अच्छा,
0: वहाँ जीवाणु रहता है, इस जीवाणु को इस पानी में डालेंगे तो जीवाणु फैलता है। अब जीवाणु क्यों फैलता है? जीवाणु के लिए गुड़ मिल गया, बेसन मिल गया, जल्दी ग्रोथ कर जाएगा। ठीक है, गोबर है ठीक, गोमूत्र, सभी चीज मिलने से जीवाणु जल्दी फैलेगा, और वो जल्दी फैलेगा तो उर्वरा शक्ति हमारी बरकरार रहेगी और बढ़ेगी
1: जी। हाँ, तो चलिए, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया।
0: हाँ, हम ये आपके माध्यम से हमें खुशी लगी कि हम जनता और किसानों को अपना राय शेयर किए।
1: तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे किसान?
0: हम यही के संदेश की जनता और किसान भाइयों को कि आप भी जैविक खेती, समेकित कृषि प्रणाली, बहुफसलीय की ओर कदम रखें, ताकि हमारा समाज कीटनाशी और रासायनिक से दूर हो जाए और अपना स्वस्थ जीवन व्यतीत करें। धन्यवाद, नमस्कार।
1: धन्यवाद आपका भी, और इतने अच्छे जानकारी आपने साझा की हमारे साथ, किसान भाइयों के साथ। धन्यवाद।
2: तो अभी हम लोग बहुत ही अच्छी जानकारी सुने, जैविक कीटनाशक और जीवामृत के बारे में जो बताए,
3: एकदम बहुत बड़ी बेस जानकारी है।
2: तो आरी जो जानकारी बतावे थलथिन राम प्रसाद कुशवाहा और हम इंद्र से बात करते हैं नमाता परवीन। और अब हम जो बात करबे आज खास करके जो बाजार भाव है आज के मौसम के बारे में, तो सबसे पहले आज बाजार भाव के बारे में हम इन चर्चा कर रही है। 15 से 18 रुपया प्रति किलो लाल आलू है, और सफ़ेद आलू 12 से 14 रुपया प्रति किलो, प्याज 15 से 20 रुपया प्रति किलो, फूलगोभी 30 से 40 रुपया प्रति किलो, पत्ता गोभी 15 से 20 रुपया प्रति किलो,
3: और पटल 30 से 35 रुपये प्रति किलो, भिंडी वहीं रह ले 10 से 12 रुपये किलो, नेनुआ रह ले 10 से 12 रुपये किलो, कद्दू रह ले 5 से 10 रुपये किलो, और हरा मिर्चा 50 से 60 रुपये किलो,
2: और शिमला मिर्चा 60 से 70 रुपये प्रति किलो, गाजर 15 से 20 रुपये प्रति किलो, बीट 25 से 30 रुपये प्रति किलो, सीम 60 से 70 रुपये प्रति किलो, बीन्स 40 से 50 रुपये प्रति किलो,
3: और वही मुराय रहले 15 से 20 रुपये किलो, धनिया पत्ता रहले 40 से 50 रुपये किलो, अदरक रहले 100 से 110 रुपये किलो।
2: हाँ, आर्दिखा की खीरा 15 से 20 रुपया प्रति किलो, टमाटर 15 से 20 रुपया प्रति किलो, लाल साग 15 से 20 रुपया प्रति किलो, पालक साग 15 से 20 रुपया प्रति किलो, ई रहले आज के बाजार भाव। और अब हम इन चर्चा करबे आज के मौसम के बारे में, तो देखा कि अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस,
3: आज के जो आर्द्रता रहले वो रहले 24%, और कल के जो मौसम के पूर्वानुमान है, मतलब रहे के आशा है, अधिकतम जो तापमान है वो है 39 डिग्री सेल्सियस, और जो कम से कम तापमान रहे के आशा है वो है 23 डिग्री सेल्सियस।
2: और देखा कि मौसम कल साफ रहतो है ना, और अब यही सब जानकारी के साथ अब हम इन बातचीत कर भी देखिए फसल बीमा के बारे में।
3: हाँ,
2: प्रधानमंत्री फसल बीमा के बारे में, तो देखा किसान जब हम इन खेती करें नमाता बहिन, तो अपन खेत के बीमा जरूर करावे के चाहिए हमें।
3: एकदम सही कहला कि जैसे कि फसल के बीमा, तो कहला खेत के बीमा बहुत जरूरी हो जाए है, जैसे कि फसल के बहुत तरह से नुकसान हो जाए।
2: हाँ,
3: और कभी है कि बहुत ज्यादा बारिश हो गए तो हम इनके फसल खराब हो जाए है, बर्फबारी हो गए तो हम इनके फसल खराब हो जाए,
2: या सुखाड़ हो जाए,
3: सुखाड़ हो गए तब फसल खराब हो गए, मतलब कि कहला प्राकृतिक तरीका से अगर कोई भी तरह से हम इनके फसल के अगर नुकसान भे गए है तो ओकरा भरपाई करे ले और मुआवजा जे दे है सरकार, ओकर लेल प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कराए के बहुत जरूरी हो।
2: हाँ, देखा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जैसे बीमा करावे खातिर एक में 3-4 तरह के मतलब डॉक्यूमेंट लगो है, जैसे कि सबसे पहला है तुम्हारा जमीन के रसीद, और देखा कि दूसरा में तुम्हारे हो गलो बैंक पासबुक, ओकर बाद देखे आधार कार्ड, और देखा कि ये सब चीज मिला के और तुहरा फिर बंसावली बना के जमीन के अपन किसान मित्र के माध्यम से है ना, या तो फिर जैसे प्रज्ञा केंद्र हो ओकर माध्यम से एकरा फार्म के भर के और तू फसल बीमा अपन करा सको। जैसे कि फसल बीमा में आ गलो मक्का, ओकर बाद तुहर धान हो गलो है ना, ज्वार हो गलो।

0: बाजरा हो गलो, ये सब सबके बीमा हो। ओकर बाद देखा कि तुहर सब्जी में भी बीमा हो, जैसे कि टमाटर हो, है ना, फूलगोभी हो, पत्ता गोभी हो, बैगन हो, मिर्च हो, तो बीमा कंपनी से संपर्क में रहबा तो सबके बीमा होता। लेकिन खास करके हमने ज्यादा से ज्यादा बीमा हुआ है धान और मक्का के ऊपर हुआ है
1: एकदम। और हम इनके ये भी जाने के चाहे कि खरीफ फसल में कितना प्रतिशत बीमा इनके मिला है, रबी फसल में कितना प्रतिशत मिला है। तो खरीफ फसल में जो है कि 2% है और रबी फसल में 1.5%, और व्यवसायिक और बागवानी फसल जो हो एक में 5%।
0: तो देखा इस तरीके से तुम्हारा लाभ मिलतो। खास करके किसान के एक बात के हमेशा ध्यान रखे के चाहिए, कभी भी अमीन खेती करो कोई भी चीज, जैसे जानवरे रख ले ओकर भी बीमा करावे के चाहिए। हो सको तू खेत में हर जोते गला और अचानक वज्रपात से जानवर के मृत्यु हो गलो या किसाने के मृत्यु हो गलो, तो तुम्हारा अगर बीमा हो तो ओकर से तुम्हारा कुछ न कुछ भरपाई मिल जितो। तो आदमी के हमेशा बीमा करावे के चाहिए।
1: एकदम सही कला के भाई, चाहे फसल बीमा है या पशु बीमा है, जरूर करावे के चाही। और एक साथे तो देखला कि ये सब तो सरकार के एगो योजना है, और योजना के बारे में हम इनके जागरूक रहे के बहुत जरूरी है। कहे कि अगर हम इन जागरूक के नहीं रहबे कोई भी योजना के बारे में तो ओकर लाभ हम नहीं उठा सको।
0: तो जरूरी हो अपन फसल बीमा करावे के चाहिए। फसल बीमा के अलावे जैसे किसान के हैं एक दो चीज कुछ कभी कभी योजना का भी लाभ लिए के चाहिए। जैसे अभी देखे थोड़ा कि खेत में थोड़ा ड्रिप इरीगेशन लगावे के चलते अभी पंचायत सेवक तोहर किसान मित्र और देखा बहुत से ऐसा हथों की तोहरा जानकारी देते तो लगावे के चाहिए, योजना के लाभ किसान के लिए के चाहिए, है न। जैसे कि मान ले कोई भी चीज़ के अगर तू लाभ ले तो तुम्हारा ज़्यादा ज़्यादा फायदा। तो अभी का हो कहीं कहीं प्रशिक्षण भी दे जा लागल हो खेती बाड़ी में, प्रशिक्षण भी लिए के चाहिए। तो प्रशिक्षण लेके अगर तू खेती करो हा तो तोरा हर चीज के जानकारी बढ़िया मिलतो और तू बढ़िया से उत्पादन और अच्छा उत्पादन करो तो बाजार भाव भी बढ़िया मिलतो।
1: एकदम सही कहला कि हम इनके योजना के बारे में जागरूक रहे के चाहिए और खेती बाड़ी के बारे में भी जागरूक रहे के चाहिए। जैसे कि हम इन आज के जो कार्यक्रम है लेकर में हम सुनलिए भी कि भाई जैविक कीटनाशी और जीवामृत बनाए के का तरीका रहो है, तो ये देख ला कि कितना आसान तरीका है और एकर में खर्च भी न है। एकदम कहला कि नए के बराबर खर्च है, बहुत कम एकदम खर्च है। तो और जैविक मतलब रासायनिक कीटनाशी की बात अगर हम इन करिए तो अगर बाजार में जाइए हम इन लिए ले तो कितना महंगा पड़ जाए। तो ये चीज देख ला कि हम इन जागरूक रहबे, हर चीज एक दूसर से सीखबे, तभी जाके हम इन है कि मतलब बढ़िया कम कर जो है उत्पादन ले सको ही है और कम लागत में ले सको।
0: हाँ, अब देखा कि यही सब जानकारी के साथ कार्यक्रम किसान वाणी से हमरा वीरेंद्र भाई के
1: और हमरा नाहमता के अनुमति देते
0: जोहार।

अभी आप सुन रहे थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम खेती बाड़ी।

0: कार्यक्रम खेतीबाड़ी सुन रहे सभी ग्रामीण भाई बहनों का स्वागत है कार्यक्रम में और साथ ही नाहमता की तरफ से सप्रेम नमस्कार
1: नमस्कार सभी।

0: किसान भाई बहनों को मेरे तरफ से और नम्रता आपको भी मेरे तरफ से नमस्कार जोहार। आप जैसा कि अभी जान रहे हैं कि जो जो हम लोग का मौसम अभी है एकदम अत्यधिक गर्मी एकदम चरम सीमा पर है, तो सबसे पहले फसल के साथ किसान या आम आदमी कैसे अपना बचाव करेंगे, तो आज उस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे।
1: बिल्कुल, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है ना वीरेंद्र जी की, मतलब समझिए कि ऐसी गर्मी में अपना तो ध्यान रखना ही है, घर में हमारे बच्चे हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका ध्यान रखना है, साथ में जो हमारे जानवर है, हमारे फसल लगे हुए हैं, हर चीज़ का ध्यान रखना है। क्योंकि ये जो गर्म झोंका चलता है, लू जो होता है, तो ये इससे क्या है कि हर किसी को नुकसान पहुँचता है। तो हम लोगों को भाई क्या ध्यान रखना है कि देखिए, अगर हम लोगों का पहले तो हम लोग खुद का ध्यान के बारे में बात करते हैं कि जैसे हम लोगों को क्या है, खाली पेट दिन भर बाहर नहीं रहना है और पानी हमेशा पीते रहना है। ऐसा नहीं कि धूप में है तो एकदम ठंडा ठंडा पानी पी रहे हैं, ये भी नहीं करना है। पानी नॉर्मल रहना चाहिए, पीना चाहिए, उसके साथ ग्लूकोज पीना चाहिए, गुड़ का शरबत पीना चाहिए, मतलब गन्ना का जूस है, मतलब जितना भी लिक्विड चीज होता है तो सभी हम लोगों को पीना चाहिए। खाने के मामले में देखिए, खीरा है, ककड़ी है, तरबूज है, खरबूजा हो गया, तो ये सारे चीज जो है हम लोगों को खाना चाहिए जिसमें ज्यादा पानी का अंश हो।
0: हाँ।
1: तो इस तरह का चीज हम लोगों को खाना चाहिए। रोटी थोड़ा सा कहें कि मतलब कम खाए तो ज़्यादा अच्छा है, चावल हम लोग खा सकते हैं। और गर्मी के दिन में सही में पूछे ना तो जितना सब्जी और चावल नहीं खिलाता है ना सब्जी भात, उतना अच्छा लगता है पानी और भात खाने में।
0: तो अगर इन छोटी बातों पे अगर हम ध्यान देते हैं तो हम लोग लू से भी बच सकते हैं। और अब चलते हैं एक मनोरंजन के लिए, गीत भी सुनते हैं।
1: बिल्कुल, इस पे हम लोग आगे भी चर्चा करेंगे।
0: हाँ।
1: और अभी सुनवाते हैं एक जरूरी संदेश और साथ ही खूबसूरत सा गीत।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: तो देखिए, इस खूबसूरत से गीत के पहले जो हम लोग बात कर रहे थे वो थी कि मतलब किस तरह से लू से हम लोग बच सकते हैं। तो हम लोग तो बात किए कि गर्मी में जो है हम लोगों को खाली पेट नहीं रहना चाहिए, और अगर लू लग गया हो तो इसका जो देसी तरीका है, इसका उपचार है, वो क्या है? कच्चा आम को आग में पकाकर उसे अच्छे से मसल कर या मिक्सर जार जो होता है उसमें पीस कर, उसके बाद चाहे तो नमक वाला शरबत बनाना है पुदीना वगैरह डाल के, या फिर मीठा शरबत बनाना है और उसे पीना है। और साथ में जो है जो आम को पकाकर मसल के रखे, तो बिना नमक बिना चीनी वाला सिर्फ उसका जो गूदा होता है उसमें थोड़ा पानी डालकर और उसे पूरा बदन में लगाकर 5 मिनट के लिए छोड़ना है। उसके बाद सादे पानी से नहा लेना है। तो इससे क्या होता है, जो लू का असर होता है बॉडी पे पूरा वो खत्म हो जाता है, और 2 से 3 दिन अगर ये काम किया जाए ना तो पूरी तरह से लू का असर खत्म हो जाता है। और इसके साथ साथ है कि जैसे हम लोगों का जो फसल लगा हुआ है उसकी देखभाल कैसे करें, तो सबसे बढ़िया है कि पानी में कोई कमी नहीं हम लोगों को रखना है सिंचाई में, और सिंचाई करना है शाम के वक्त। शाम के वक्त सिंचाई करने से क्या कि रात भर उसे नमी मिलेगा, पोषण मिलेगा, और अगर सुबह के समय हम लोग करते हैं तो वो तो भाप बनकर उड़ जाता है, बहुत जल्दी पानी सोख लेता है। तो सिंचाई हम लोगों को शाम के वक्त करना है।
1: ये बहुत अच्छी बात आपने बताई नम्रता जी। शाम में तो सिंचाई करना चाहिए, लेकिन जब अगर ज़्यादा लू चल रहा है, ज़्यादा दिक्कत है, तो ऐसे स्थिति में किसान को एक और बात ध्यान देना चाहिए कि अगर हम शाम में तो चला ही रहे हैं लेकिन अचानक 9 बजे बाद टेम्परेचर बढ़ने लगता है, कोशिश करना चाहिए अगर ड्रिप इरीगेशन है 9 से 10 के बीच में भी एक बार आप पानी चला सकते हैं, है ना। जिससे क्या है कि वो आपका प्लास्टिक गर्म नहीं होगा, और जब गर्म नहीं होगा तो उसका जड़ जो है वो जलेगा नहीं, और जब नहीं तो पौधा वो हरा रहेगा। फिर शाम में हम पानी उसको चलाएंगे, शाम में कोशिश करेंगे 2-3 घंटा चला के बंद कर देंगे, सुबेरे फिर 8 से 9-10 बजे तक चला के फिर पानी बंद कर देंगे।
0: मतलब कम पानी देना है, लेकिन कोशिश करना है हम लोगों को कि मिट्टी में जो नमी होती है वो बनी रहे। और मिट्टी में नमी बने रहे इसके लिए एक और चीज है कि ज्यादा से ज्यादा हम लोग को गोबर खाद

0: का ही प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना कि मिट्टी स्वस्थ होगी तो पौधे स्वस्थ होंगे, पौधे स्वस्थ होंगे तो जाहिर सी बात है कि जो फसल होगा, जो हमारा फल लगेगा वो भी स्वस्थ होगा। और जैसे कि मिट्टी स्वस्थ होने से क्या है ना कि पौधा मजबूत होता है, उसमें रोग बीमारियां कम लगती है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोगों का शरीर स्वस्थ हो, हम लोगों का शरीर ताकतवर होता है तो हम लोगों के को बीमारियां भी कम होती है। तो उसी तरह से पौधे भी स्वस्थ होंगे तो पौधे में बीमारियां कम होंगी। तो इसके लिए ज़रूरी है मिट्टी का सेहतमंद होना। तो और मिट्टी का सेहतमंद के साथ साथ है गोबर खाद से क्या है कि नमी भी बने रहती है, तो हम लोगों को क्या है कि बहुत बार बार पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिंचाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर हमेशा हम अपने खेतों में गोबर खाद का इस्तेमाल करें तो बहुत हद तक ये सब चीज़ से हम लोग निजात पा सकते हैं।
1: चलिए अब तो हम लोग जानकारी की तरफ भी बढ़ेंगे। तो आज हम लोग बातें कर रहे थे, जो हम लोग मतलब चर्चा आज है हमारे बीच में, मसाले की उन्नत खेती, और ये जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर कृष्ण प्रकाश कुमार।
0: तो सुनते हैं पहले इनकी ये बातचीत।
2: किसान भाइयों, आज हम लोग बातें करेंगे मसाला की खेती एवं औषधीय एवं सुगंधित पौधों की खेती, लेकिन मुख्य तौर पे आज जो हम लोग बातचीत करेंगे मसाले के ऊपर। तो किसान भाइयों, आज हम आपको लिए चलते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान झारखंड गौरियाकर्मा हजारीबाग में स्थित है, और हमारे साथ वरीय वैज्ञानिक आज जो बातचीत करेंगे इनका नाम हुआ डॉक्टर कृष्ण प्रकाश। तो आपको स्वागत है, जोहार है सर।
3: सभी किसान भाइयों को हमारा जोहार।
2: तो सबसे पहले कि हमारे खासकर के जो झारखंड में उत्तरी छोटा नागपुर जो प्रदेश है या पूरे झारखंड की हम चर्चा करें, अदरक का खेती लगभग इदायत हर जगह पे होता है, लेकिन सबसे ज्यादा रांची एरिया में देखा गया है, नगरी क्षेत्र में। लेकिन अभी हर जगह थोड़ा थोड़ा होने लगा है अदरक का खेती। तो डॉक्टर साहब, हम उच्च गुणवत्ता अदरक की खेती के लिए सबसे पहले हम लोग बीज का जो चुनाव करेंगे उसको हम कैसे चुनाव करेंगे, कौन कौन सी वैरायटी, इसके बारे में आप संक्षेप में जानकारी दें।
3: जी, सबसे पहले तो ये जानिए कि पूर्वी भारत में खास करके झारखंड में अदरक की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त जलवायु यहाँ पे है। यहाँ पे किसान भाई जो अदरक की खेती के लिए जो मिट्टी है, जो वर्षा का कंडीशन होता है, वो भी यहाँ पे अच्छी है। खास करके आदिवासी क्षेत्रों में नॉर्मली अदरक की खेती होती आ रही है परंपरागत तरीके से, तो अदरक की खेती यहाँ पे कर सकते हैं। आज के समय में जो अच्छी किस्में हैं वो सुप्रिया, सुप्रभा, सुरुचि, ये सब नई किस्में हैं, और लोकल में जो प्रचलित किस्में हैं असम, जोरहाट, मारन, इस तरह की किस्में हैं, जो नादिया किस्में, इस तरह की किस्में हैं जो अच्छी पैदावार अदरक की यहाँ पे देते हैं, और नहीं अगर लगाते हैं तो किसान भाई इसको लगा सकते।
2: तो अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं डॉक्टर साहब कि अदरक की खेती करने में सबसे पहले कैसे मिट्टी का चुनाव करेंगे ताकि वहाँ अदरक का खेती हमारा अच्छा हो।
3: जी, अदरक की खेती को बलुई दोमट जो मिट्टी होती है उसमें अच्छी होती है, तो यहाँ उसके लिए इस तरह की कोई मिट्टी हो जिसमें कि जल भराव समय ज्यादा समय के लिए ना हो, मतलब पानी की निकासी की व्यवस्था खेत से होनी चाहिए। तो ऐसी जगह का चुनाव करके और उसमें खेत को तैयारी करते समय हम उसको 3-4 बार इसको खेत को जोत के और उसको बिल्कुल मिट्टी को भुरभुरी कर लें। खेत जुताई के समय हम उसमें 15-20 क्विंटल पर हेक्टेयर के हिसाब से हम उसमें गोबर की खाद का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कि मिट्टी ये हो अच्छी हो जाए अदरक के लिए, और उसमें खरपतवार बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इसमें जो है जहाँ तक रासायनिक खाद की बात है तो 100 kg 60 kg, तो खेत की तैयारी के लिए हम लोग 15-20 टन पर हेक्टेयर ये जो
2: गोबर का
3: इस्तेमाल करेंगे, गोबर खाद का इस्तेमाल करेंगे, और साथ में जो रिकमेंडेड डोज है एनपीके फर्टिलाइजर का, उसका भी आधा डोज नाइट्रोजन का और पूरा डोज फास्फोरस और पोटास का हम लोग खेत की तैयारी के समय इसमें खेत में डाल देंगे। तो इस तरह से मिट्टी को हम लोग खेत की तैयारी कर लेते हैं, और रिज मेथड पे लगाना चाहिए। तो इसको यहाँ पे झारखंड में कंडीशन में तो रिज बना के हम लोग खेत की तैयारी।

0: जैसे रीज मेथड की जो बात करें, जो हम लोग बेड बनाते हैं उसको आप रीज मेथड बोलते हैं, है ना। चलिए बहुत अच्छी बात बताए। अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि हमारे यहाँ खास करके अदरक लगाने का मुख्य समय कौन सा समय होता है?
1: झारखंड में अदरक लगाने का समय अप्रैल से जून तक होता है। मतलब इसको लगाने के समय में थोड़ा सा तापमान ज्यादा होना चाहिए, तो अप्रैल से मई महीने में इसका तापमान ज्यादा होता है, और जो जर्मिनेशन के लिए जो उच्च तापमान की जरूरत होती है तो ये मिल जाती है, और बारिश के मानसून आने तक हम लोग उसको शुरुआत के समय में, तो मतलब जून तक हम लोग लगा सकते हैं। तो मई और जून मान के चलिए कि पर सबसे उचित समय है झारखंड में अदरक लगाने के लिए।
0: जो अभी महीना जा रहा है हमारा, यानी कि एक तरफ से मई भी जा रहा है, जेठ महीना भी शुरुआत है, है ना, तो ये हम लोग इसको लगा सकते हैं।
1: बिल्कुल इसको अच्छा। लगा सकते हैं।
0: अभी जैसे आप किस्म की बात किए, 5-6 किस्म बताए, तो मुख्य तौर से कौन सा किस्म यहाँ किसान लगाएगा जो कि अच्छा होगा?
1: जो लोकल किस्म अगर लगाते हैं उसको अगर बीज की अच्छी क्वालिटी मिल जाती है तो आपको, तो जो नादिया किस्म है, असम की जोरहट किस्म है, तो इस तरह की किस्म आपको मिल जाएगी। अदरवाइज जो ICR का संस्थान है, भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान, उसके द्वारा विकसित की गई सुप्रिया, सुरभि, सुरुचि, ये किस्में है, रियो डी जेनेरियो, ये सब किस्में हैं जिसमें कि अच्छी पैदावार मतलब 25-30 टन पर हेक्टेयर तो ये उसमें मिलती है, तो ये सब किस्में किसान भाई इसको लगा सकते हैं।
0: ये तो बहुत अच्छी बात बताया डॉक्टर साहब, लेकिन जो ये प्रभेद जो आप बताए, ये क्या हमारे हजारीबाग की दुकानों में वो उपलब्ध है, बीज दुकानों में?
1: ये नहीं, बीज दुकानों में तो वो किस्में, मतलब अगर किसान भाई लगा रहे होंगे तो उनको अगर आ चुका होगा मार्केट में यहाँ पे, तो फिर वो बीज मिल जाएंगी। आप जानते हैं कि ये अदरक का जो लगाने का है वो राइजोम कंद जो होता है उसी से होती है, गांठ बोलते हैं, इसी से होती है, तो अगर एक बीज आ गई होगी तो यहाँ पे बाजार में मिलेगी।
0: या क्या संस्थान से फिर
1: हमारे संस्थान में हम लोग किसान भाई अगर संगठित रूप से अगर एक बल्क में ऑर्डर देता है तो हम लोग वहां से कह के मंगवाया जा सकता है किसानों के लिए, हम लाइनअप करवा सकते हैं आप वहां से किसान भाई, क्योंकि ये बल्की मटेरियल है तो आपको एडवांस में वहां ऑर्डर देना पड़ेगा, और वहां से क्योंकि वहां पे जो जहां मेन सेंटर है वहां पे प्रोडक्शन होती है, तो वहां एडवांस में वहां बुकिंग
0: मिल जाएगा
1: है, तो बुकिंग।
0: चलिए ये बहुत अच्छी बात है। अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं, 1 हेक्टेयर यानी कि 2.5 एकड़ यानी कि 250 डिसमिल में जो हम लगाएंगे अदरक की खेती जो करेंगे, तो उसमें कितना बीज लगेगा हमारा?
1: 1 हेक्टेयर के लिए 15-20 क्विंटल गांठ होता है उसकी जरूरत पड़ती है, 15-20 क्विंटल जो राइजोम हुआ उसकी जरूरत पड़ेगी, और वो अगर आप लगाने से की दूरी होती है तो लाइन से लाइन और प्लांट से प्लांट, तो लाइन से लाइन टू लाइन 30-40 सेंटीमीटर की दूरी, और प्लांट से प्लांट 15-20 सेंटीमीटर की दूरी रखते हैं, तो ये स्टैंडर्ड दूरी रखते हैं, तो आपको 15-20 क्विंटल पर हेक्टेयर में बीज की जरूरत पड़ती है।
0: अच्छा अच्छा, ये लगाने के बाद उसको क्या सिंचाई कितने दिनों में करना चाहिए ताकि हमारा खरपतवार कम हो, इसके लिए क्या करना चाहिए किसान?
1: इसको लगाने पे तुरंत पानी नहीं देना होता है, आपको 1 सप्ताह के बाद 15 दिन पे, और ये एक्चुअली ये जो डिपेंड करता है कि आपको वहां के मिट्टी और पानी की कंडीशन कैसे है, जो ऑलरेडी किसान रेनफेड कंडीशन में लगा रहे हैं तो वर्षा पे आधारित उनको रहना होता है, तो उसके लिए जो जरूरत है, अगर मिट्टी बहुत ही सूखी है तो आपको लाइफ सेविंग इरीगेशन देना होता है, अदरवाइज इसमें आप 7-10 दिन के अंतराल पे अगर पानी देते हैं शुरुआत में, तो फिर ये हो जाएगा। अंकुरण के बाद उसमें पानी, जब पौधे निकल आते हैं हरे हरे होते हैं, तो उसमें पानी की जरूरत आवश्यकता जरूर होती है, अगर उसमें वर्षा नहीं होती है तो आपको किसानों को पानी देना होता है।
0: जैसे खरपतवार के लिए बहुत जगह हम देखते हैं अदरक का जब किसान खेत में लगाता है, प्लास का जो पत्ता होता है उसको ढकता है, उसको क्यों ढकता है, उससे क्या क्या फायदा?
1: बिल्कुल, तो ये जो टेक्निक है इसको मल्चिंग टेक्निक कहते हैं, तो ये मल्चिंग टेक्निक्स या तो प्लास्टिक मल्च से लोग करते हैं, अदरवाइज जो पुराना सूखा खरपतवार है या पलाश के पत्ते हैं या कोई भी इस तरह का चीज से आप ग्रीन मल्च से इसमें मल्चिंग कर सकते हैं। उस मल्चिंग का मुख्य फायदा ये है कि आपको खरपतवार नहीं आते हैं, और दूसरा फायदा है कि उसमें नमी भी संरक्षित रहती है। तो ये मल्चिंग जरूर करना चाहिए, चाहे आप ड्रिप मेथड लगाए तो भी, और ड्रिप मेथड नहीं भी करते हैं तो भी किसानों को सलाह दी जाती है कि आप लगाने के बाद उसमें मल्चिंग करें।
0: चलिए, ये बहुत अच्छी बात बताए। अब डॉक्टर साहब ये जानते हैं लगाने के बाद उसका निकाई गुड़ाई कितने दिनों में अदरक को करना चाहिए?
1: हाँ, अगर जब लगा चुके हैं आप और उस खेत की तैयारी के समय अगर उसमें से जो जड़ के सहित अगर घास फूस जो नहीं लगे थे तो आपको काफी हद तक वो कंट्रोल होगा और कम जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर मान लीजिए उतनी अच्छी से मिट्टी की जुताई नहीं हुई है और बाद में सीजनल घास जो आते हैं वो अगर निकलते हैं तो उसको 15 से 20 दिन के अंतराल पे उसमें निकाई गुड़ाई की जरूरत पड़ती है, और उसके साथ साथ उसमें जब अंकुरत हो जाते हैं तो उसमें मिट्टी चढ़ाने की भी जरूरत पड़ती है। 15 से 20 दिन के अंतराल पे ये करना पड़ता है।
0: मतलब एक बार या दो बार?
1: दो बार, कम से कम दो बार तो चाहिए ही होता है।
0: अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। हम आपसे ये जानना चाहते हैं किसान जिसमें लगाता है तो क्या मतलब कुछ जैसे कि बीज उपचार के लिए उसमें क्या कुछ?
1: हाँ, बीज उपचार के लिए मैंकोजेब से ट्रीटमेंट करना चाहिए। बीज लगाने से पहले जो गांठ लगाते हैं राइजोम उससे पहले मैंकोजेब जो भी बीज जनित जो रोग है इसमें, जो इसमें मान ली रोजियम रॉट होता है जो सरा गला रोग कहते हैं, तो उसके लिए आपको मैंकोजेब से ट्रीटमेंट करना चाहिए तो ये ज्यादा अच्छा होता है।
0: ये तो चलिए हम लोग ट्रीटमेंट तो किए और पास भी दे दिए, मिट्टी चखा दी है, है ना। अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि हमारा अदरक लगाने से कितने दिन बाद वो हमारा हार्वेस्ट के लिए तैयार होता है, और बीच में कौन कौन सी बीमारी आता है उसका संक्षेप जानकारी दें।
1: अब ये अदरक की खेती में जो मेन मुख्य बीमारी है वही राइजोम रॉट है, रॉटिंग की समस्या, सरागला रोग होता है और एक बैक्टीरियल विल्ट भी होती है उसकी समस्या होती है। तो जो इसके लिए आप मैंकोजेब, जो सरागला रोग है उसके लिए मैंकोजेब का ट्रीटमेंट सही है, 0.3% मैंकोजेब का ट्रीटमेंट करना चाहिए। और जो बैक्टीरियल बीमारी है उसके लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा जो पत्तों पे जो दागदार धब्बे होते हैं तो वो माइनर बीमारी ही है, तो जिसका कंट्रोल आपको ये मैंकोजेब से या फिर कार्बेंडाजिम से करने पे इसका कंट्रोल हो जाता है। इसकी खेती में आप ये डिपेंड करता है कि आपका मार्केट कैसा है, कितने दिन में हम उसको हार्वेस्ट करते हैं। तो अगर से 3 महीने से किसान अगर लेना शुरू कर देते हैं, अगर हार्वेस्टिंग उसको कच्चे अदरक की इसका जरूरत पड़ता है तो वो निकालना शुरू कर देते हैं, अदरवाइज 4 महीने से 5 महीने में आप उसको निकाल सकते हैं।
0: यानी कि लगाने से 4 से 5 महीने के बीच में उसको निकाल सकते हैं। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात बताए कि अदरक का एक भंडारण हम कैसे करेंगे, जब हमारे यहाँ उत्पादन बाजार रेट नहीं है उसको भंडारण करके कैसे रखेंगे ताकि अच्छे रेटों में उसको हम बेच।
1: हाँ, अदरक के भंडारण के लिए अदरक की सबसे हार्वेस्टिंग तभी करते हैं जब वो कम्प्लीटली उसका जो लीफ पोर्शन है, ग्राउंड एवं ग्राउंड पोर्शन है, वो जब सूख जाता है, जब पत्तियां सूख जाती है तब उसको निकाला जाता है, और निकालने के बाद उसको प्रॉपर क्यूरिंग किया जाता है, मतलब कि उसको प्रॉपरली सुखाया जाना है। तो इस सुखाने के लिए भी साइंटिफिक मेथड्स भी अवेलेबल हैं जो हम लोग यहाँ ट्रेनिंग में बताते हैं, और उनके लिए आजकल प्रॉपर मशीनें भी आ चुकी हैं जो ड्रायर्स होते हैं, तो उसका इस्तेमाल करके अगर करते हैं साइंटिफिक तरीके से, जो बड़े पैमाने पर अगर बड़े किसान लगाना चाहते हैं तो उसको करके कर सकते हैं। अदरवाइज जो देसी तरीका है, परंपरागत तरीका है, उसमें किसान भाई उसको लेके उसको क्लीन करके अच्छे से उसको ठंडे में सुखाते हैं, फिर उसको प्रॉपर ये करके या बोरे में सूखी जगह पे, उसको नमी जहां पर नहीं हो थोड़ा सा ऊपर जगह पे उसको भंडारण कर सकते हैं घरेलू स्तर पर।
0: चलिए, ये बहुत ही अच्छी जानकारी दी है डॉक्टर साहब आपने बहुमूल्य समय देकर, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: तो देखिए, मसाले की उन्नत खेती के बारे में हम लोग सुन रहे थे और बता रहे थे
0: डॉक्टर कृष्ण प्रकाश कुमार,
2: और इनसे बातें कर रहे थे वीरेंद्र साहू। तो अब कार्यक्रम खेतीबाड़ी से जाने का समय भी हो चला है, तो कार्यक्रम खेतीबाड़ी से मुझे नाहमता को,
0: वीरेंद्र को
2: दीजिए इजाजत।
0: नमस्कार, नमस्कार।

नमस्कार। अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से देश की आबादी के ढांचे में हो रहे बदलावों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने

0: आया कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नौलेकर इस समिति के अध्यक्ष होंगे। गिरिडीह में आज जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति यानी दिशा की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में पानी, बिजली और शहर की सफाई का मुद्दा मुख्य रूप से छाया रहा। बकरीद त्योहार को शांति और भाईचारे के साथ मनाने के लिए राज्य भर में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। इस सिलसिले में खूंटी नगर भवन में जिला शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में डीसी मोहम्मद जावेद हुसैन और एसपी ऋषभ गर्ग ने सभी समुदायों के प्रतिनिधियों के साथ संवाद किया। गुमला में आज उपायुक्त दिलेश्वर महतो की अध्यक्षता में साप्ताहिक जन शिकायत निवारण दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान जिले के सुदूरवर्ती क्षेत्रों से आए नागरिकों ने अपनी समस्याओं को लेकर आवेदन सौंपे। उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को तय नियमों के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए। खूंटी जिले की कर्रा थाना पुलिस ने 18 मई को पदमपुर गांव में हेरमेन होरो को गोली मारकर घायल करने वाले दो अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने पकड़े गए अपराधियों के निशानदेही पर पदमपुर के जंगल से हथियार और कारतूस समेत कई चीजें बरामद की हैं। सरायकेला जिले के कपाली क्षेत्र अंतर्गत फॉरेस्ट एरिया में आज एक युवक का अधजला शव मिला है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। मृतक की पहचान कर ली गई है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। लोहरदगा के उपायुक्त संदीप कुमार मीणा ने आज अपने कार्यालय कक्ष में जनता दरबार का आयोजन किया। उपायुक्त ने जिले के विभिन्न ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों से आए नागरिकों की फरियाद सुनी और उनके निदान की पहल की। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। संध्या के 6:02 हुए हैं। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम युवानी।

कार्यक्रम युवानी सुन रहे हमारे सभी युवा दोस्तों का इस कार्यक्रम में स्वागत है, साथ ही शगुफ्ता का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, उम्मीद है आप सभी सकुशल होंगे और स्वस्थ होंगे, साथ ही इस बढ़ती हुई गर्मी में अपना खास ख्याल भी रख रहे होंगे। दोस्तों, गर्मी काफी बढ़ी हुई है और यह बहुत जरूरी है कि जहाँ तक संभव हो बिना किसी वजह, बिना किसी काम के हमें घर से बाहर निकलने से परहेज करना चाहिए, खासकर दोपहर के समय में। अगर बहुत जरूरी हो घर से निकलना तो साथ में छाता जरूर रखना चाहिए या फिर तौलिया, साथ में हमें पानी की बोतल तो अवश्य ही रखना चाहिए। इस बढ़ती हुई गर्मी में हमें अपने खान पान पर भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। यह ध्यान देना चाहिए कि घर से हमें कभी भी खाली पेट नहीं निकलना चाहिए, ऐसे में लू लगने की ज्यादा संभावना होती है। हमें भरपेट भोजन करने के बाद ही अपने पूरे तैयारी के साथ ही किसी काम के लिए घर से बाहर निकलना चाहिए और हमें अपने खाने पीने में ताज़ा खाना ही उपयोग में लाना चाहिए और भोजन में हरी पत्तेदार सब्जी और मौसमी फलों को जरूर शामिल करना चाहिए, खासकर खीरा हो, तरबूज, ये सब में पानी की मात्रा ज़्यादा होती है जो हमारे शरीर के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे फलों और सब्जियों को हमें अपने

खाने पीने में शामिल करना चाहिए। और ऐसी बढ़ती हुई गर्मी में हमें अपने बच्चों और खास करके बुजुर्गों का भी खास ख्याल रखना चाहिए। जैसा कि अभी गर्मी की छुट्टियां चल रही है, बच्चे घर में हैं और ऐसे में वो खेलने के लिए काफी उत्साहित होते हैं, तो हमें धूप में उन्हें खेलने से रोकना चाहिए और उनको ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, बातचीत का ये सिलसिला तो आगे भी जारी रहेगा, लेकिन आइए उससे पहले आपको सुनवाते हैं एक प्यारा सा गीत।

उम्मीद है दोस्तों आपको ये प्यारा सा गीत जरूर पसंद आया होगा। तो चलिए इस गीत के बाद हम अपनी बातचीत को बढ़ाते हैं आगे और जानते हैं कि क्या है प्लास्टिक प्रदूषण। दोस्तों पृथ्वी के पर्यावरण में प्लास्टिक के कचरे जैसे प्लास्टिक की थैलियां, बोतलें और रैपर का अत्यधिक मात्रा में जमा होना ही प्लास्टिक प्रदूषण कहलाता है। यह गैर बायोडिग्रेडेबल यानी जो कभी ना सड़ने वाला कचरा भूमि, जल और वायु को प्रदूषित करता है, जो वन्य जीवों और मानव स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा खतरा है। पर्यावरण से प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यह कभी नष्ट नहीं होता बल्कि छोटे छोटे माइक्रोप्लास्टिक में टूटकर मिट्टी, पानी और हवा को प्रदूषित करता है। यह जहरीले रसायनों को फैलाता है, वन्य जीवों व समुद्री जीवों की जान लेता है और मानव स्वास्थ्य को गंभीर नुकसान पहुंचाता है। दोस्तों प्लास्टिक प्रदूषण को रोकना पर्यावरण और जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। समुद्र और जमीन पर रहने वाले जानवर प्लास्टिक को ही अपना भोजन समझकर खा लेते हैं, जिससे उनके पेट में रुकावट हो जाती है और वे भूख से मर जाते हैं। पक्षी, कछुए और अन्य जलीय जीव अक्सर प्लास्टिक के कचरे जैसे जाल या पॉलीबैग में फंसकर दम घुटने से मर जाते हैं। प्लास्टिक प्रदूषण मानव स्वास्थ्य के साथ साथ पारिस्थितिकी तंत्र और हमारे पर्यावरण के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। माइक्रोप्लास्टिक और उसमें मौजूद जहरीले रसायन मछली व अन्य खाद्य पदार्थों के जरिए इंसानों के शरीर में पहुंच रहे हैं। प्लास्टिक कचरा मिट्टी में पानी और हवा के जाने के प्राकृतिक रास्ते को रोक देता है, जिससे कि मिट्टी की उपजाऊ क्षमता भी कम हो जाती है। नदियों व नालों में जमा हुआ प्लास्टिक जल जमाव की समस्या पैदा करता है और यह भूमिगत जल के रिचार्ज होने में भी बाधा डालता है। प्लास्टिक के निर्माण से लेकर उसे जलाने तक भारी मात्रा में ग्रीन हाउस गैसें जैसे कार्बन और मीथेन निकलती हैं, जो तापमान वृद्धि का कारण बनती हैं। प्लास्टिक कचरा जब महासागरों और जमीन पर फैलता है तो यह हमारे इकोसिस्टम के प्राकृतिक संतुलन को भी बिगाड़ता है, जो अंततः हमारे प्राकृतिक मौसम चक्र को भी काफी प्रभावित करता है।

0: न्याय स्कीम के टेली लॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर हमारे स्टेशन्स लाइव मन की

0: संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
2: अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया।
3: मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
1: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
2: तो फिर सही नंबर,
1: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
3: आपने तो बचा लिया दीदी।
1: काम से नहीं।
4: RBI कहता है,
5: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
6: दोस्तों, प्लास्टिक प्रदूषण हमारे पर्यावरण को भी काफी हद तक प्रभावित करता है, साथ ही प्राकृतिक मौसम चक्र को भी प्रभावित करता है। इसलिए प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए हमें सिंगल यूज यानी एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक का बहिष्कार करना बहुत जरूरी है। इसके स्थान पर हमें कपड़े के थैलों, कागज और बायोडिग्रेडेबल विकल्पों को अपनाना चाहिए।

दोस्तों, इस प्यारे से गीत के बाद आइए सुनते हैं वार्ता। औरत हूँ मैं कोई सामान नहीं। वार्ताकार है साक्षी मिश्रा।

मैं साक्षी मिश्रा आकाशवाणी के श्रोताओं के लिए एक वार्ता प्रस्तुत कर रही हूँ जिसका विषय है औरत हूँ मैं कोई सामान नहीं। लड़की हो तुम लिहाज करो, लोग क्या सोचेंगे, आंसू पोछो थोड़ा तो लिहाज करो, दूसरे घर जाना है तुम्हें थोड़ा तो बर्दाश्त करो। पर लड़की को हर वक्त सामान की तरह आंकने वालों थोड़ा तुम भी तो लिहाज करो। क्या वो औरत है तो उसे जीने का अधिकार नहीं? महाभारत में जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था क्या द्रौपदी कोई वस्तु थी जो कभी पांडवों में बांट दी गई और कौरवों के पास जुए में हार दी गई? या रामायण में माँ सीता ने अपने पूरे निष्ठा से पत्नी धर्म निभाया, भगवान राम के साथ 14 वर्ष का वनवास बिताया, फिर भी सीता हरण के बाद अपने पवित्रता को सिद्ध करने के लिए अग्नि परीक्षा की मांग कर दी गई, क्या यह जायज था? क्यों एक लड़की को ही हर वक्त परीक्षा देनी पड़ती है? आज भी कुछ घरों में लड़की को बाहर पढ़ने या नौकरी करने क्यों नहीं भेजा जाता? आखिर बेटियों को बोझ क्यों समझा जाता है? क्यों बेटियों को गर्भ में ही मार दिया जाता है? क्यों समाज की सोच लड़की पर आकर रुक जाती है? कहते हैं बेटियां पराई होती हैं। जब तक बेटियां अपने माँ बाप के घर होती है तब तक उसे ये समझाया जाता है कि तुम्हें तो पराए घर जाना है, और जब बेटी की शादी हो जाती है तो उसे ससुराल में ये समझाया जाता है ये तो पराए घर से आई है। क्या बेटियों का कोई घर नहीं? क्या पहचान है बेटी की? हमारे समाज में बेटियों को लक्ष्मी माना जाता है, फिर वहीं कुछ घरों में उसी लक्ष्मी को दहेज प्रथा में जलाकर मार दिया जाता है। ये बर्ताव बेटी के साथ ही क्यों? आज भी कुछ ऐसे घर हैं जहां लड़की को शिक्षा देना पाप माना जाता है, लेकिन माँ सरस्वती भी नारी है जो ज्ञान की देवी है। फिर लड़की को शिक्षा देना पाप कैसे हुआ? शिक्षा पे पहला अधिकार तो नारी का ही हुआ। लड़की की शादी के लिए पहले लड़की का चरित्र देखा जाता है, लड़की कैसी है, कहीं उसमें कोई दाग तो नहीं। लेकिन लड़कों को क्यों नहीं देखा जाता? क्यों उनके चरित्र को परखा नहीं जाता? आखिर इतना भेदभाव क्यों? मानती हूँ अब हमारा समाज अधिकांश ये मानता है कि बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं, लेकिन कहीं न कहीं ये फर्क तो आ ही जाता है। शादी से पहले बेटी को ये समझाया जाता है कि वर्तमान में तुम्हारा सब कुछ तुम्हारे माता पिता हैं और शादी के बाद तुम्हारे उस घर के माता पिता। क्या बेटियों की कोई इच्छा नहीं या कोई खुद की जिंदगी नहीं? आखिर औरत हूँ कोई सामान नहीं? जन्म लेते ही माँ अपनी बेटी के लिए शादी के गहने जुटाने लगती है। क्या सही है क्या गलत है ये सब

0: समझाने लगती है, लड़की हो अपना खास ख्याल रखना और कुछ भी हो तो मुझे पहले आकर बताना। आखिर क्यों हर बात पर हम लड़कियों को ये एहसास दिलाया जाता है कि लड़की हो तो तुम कमजोर हो? क्या लड़कियां खुद की रक्षा नहीं कर सकती? मानती हूँ हमारे माता पिता हमारी चिंता करते हैं, लेकिन यही बात लड़कों को क्यों नहीं बताया जाता है? क्यों लड़कियों को कमजोर समझा जाता है? जब एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है तब उस माँ से ज्यादा ताकतवर कोई नहीं होता, फिर ये बर्ताव औरत के साथ ही क्यों? बचपन से ही कभी रूप तभी तो तभी व्यवहार के लिए टोकी जाती है। कहने को तो लड़कों के बराबर है आज, पर मौका मिलते ही इनके ऊपर रिश्तों का भार डालकर पीछे कर दिया जाता है। लड़के और लड़कियों में कोई अंतर नहीं, ये सिर्फ शब्दों में ही रह जाते हैं। अभी के युग में ही कुछ घरों में लड़की होना पाप माना जाता है, लेकिन उन्हें कौन बताए कि बेटे तो भाग्य से होते हैं लेकिन बेटियां तो सौभाग्य से प्राप्त होती हैं। जिस घर में औरत अपने घर के लिए अपनी जिंदगी बदल लेती हैं, फिर भी उनकी कोई अपनी पहचान नहीं होती। आज भी कई ऐसी औरतें हैं जिन्हें दूसरे के हिसाब से चलना पड़ता है, जिसे भारतीय संस्कृति का नाम दिया गया है। क्या भारतीय संस्कृति में ऐसा लिखा है कि एक औरत को उसकी मर्जी से जीने का कोई अधिकार नहीं? कुछ घरों में आज भी नारी का कोई सम्मान नहीं। शायद यही कारण है कि हमारा देश उन्नति नहीं कर पा रहा। गवर्नमेंट ने तो काफी सारे नियम कानून बनाए हैं और काफी सारे समानताओं के अधिकार दिए हैं, लेकिन जब तक मानसिक तौर पर वो सम्मान और अहमियत नहीं देंगे तब तक हमारे देश का विकास कैसे संभव होगा? आखिर औरत इतना मजबूर क्यों है? खुद सारे दुनिया की जननी होकर वह अपने पहचान से दूर क्यों है? यूँ तो नारी पर लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन क्या वाकई में नारी को वो सम्मान दिया है? शादी के पहले तो लड़की को बहुत प्यार सम्मान मिलता है और उसके माता पिता बहुत धूमधाम से उन्हें विदा करते हैं, लेकिन क्या शादी के बाद भी वह लड़की उतनी ही खुश रहती है? क्या उन्हें उतनी ही आजादी मिल पाती है? क्यों सारे कर्तव्य लड़की को ही समझाए जाते हैं? आखिर औरत हूँ मैं कोई सामान नहीं। क्यों सारे नियम स्त्री के लिए ही बनाए जाते हैं? क्यों औरत की गलतियों की कोई गुंजाइश नहीं होती? क्या पुरुषों का फर्ज सिर्फ पैसे कमाना है? अगर देखा जाए तो स्त्री ही स्त्री की दुश्मन है। स्त्री ही स्त्री को सारे नियम मानने को बाध्य करती है। ऐसे हमारा देश पुरुष प्रधान हो रही जब महिलाएं खुद स्वीकार कर लेंगी यही जिंदगी है, सदियों से चला आ रहा है। पुरुष सब कुछ है और स्त्री कुछ भी नहीं। आखिर औरत हूँ मैं कोई सामान नहीं। अंत में मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ एक छोटी सी कविता जिसका शीर्षक है औरत हूँ मैं कोई सामान नहीं। सुख में सबके साथ होती हूँ, दुख में अकेली रह जाती हूँ। सुख में सबके साथ होती हूँ, दुख में अकेली रह जाती हूँ। सबके साथ खड़ी होती हूँ मैं, खुद अकेली रह जाती हूँ। औरत हूँ मैं कोई सामान नहीं। औरत हूँ मैं कोई सामान नहीं। लक्ष्मी का रूप मानी जाती हूँ, फिर दहेज की प्रथा में जला दी जाती हूँ। लक्ष्मी का रूप मानी जाती हूँ, फिर दहेज की प्रथा में जला दी जाती हूँ। सरस्वती का भी रूप मानी जाती हूँ, फिर भी शिक्षा से दूर कर दी जाती हूँ। औरत हूँ मैं कोई सामान नहीं। औरत हूँ मैं कोई सामान नहीं। दुनिया की नजरों में मैं कुदरत का करिश्मा कहलाती हूँ। दुनिया की नजरों में मैं कुदरत का करिश्मा कहलाती हूँ। परिचय किसी का मोहताज नहीं, खुद अपनी जुबानी कहती हूँ। महाभारत से रामायण में मैं अबला बन रह जाती हूँ। औरत हूँ मैं कोई सामान नहीं। मैं वो भिक्षा हूँ पांच पांडवों की जो आपस में बांट ली जाती हूँ।
1: इसी जानकारी के साथ कार्यक्रम युवानी से शगुफ्ता को दीजिए इजाजत।

आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। संध्या के 6:30 हुए हैं। पेश है कार्यक्रम फिल्म संगीत।

15 अगस्त अभी आपने सुना इस फिल्म का गीत अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज में। आइए कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में। फिल्म का नाम है बाबू।

हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म लव स्टोरी से। आवाजें हैं आशा भोसले और अमित कुमार की।

आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और जिले में आजकल का प्रसारण हमारे रांची केंद्र से।

0: घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: मेरे प्यारे देशवासियों, आज हर घर में मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट जैसी डिवाइसेस आम हो चली है। देश भर में इनकी संख्या बिलियंस में होगी। आज के लेटेस्ट डिवाइस भविष्य के ई वेस्ट भी होते हैं। अगर ई वेस्ट को ठीक से डिस्पोज नहीं किया गया तो यह हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर सावधानी पूर्वक ऐसा किया जाता है तो रिसाइकल और रीयूज की सर्कुलर इकोनॉमी की बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि अलग अलग प्रोसेस के जरिए इस ई वेस्ट से करीब 17 प्रकार के प्रेशियस मेटल्स निकाले जा सकते हैं। इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और निकल शामिल है। इसलिए ई वेस्ट का सदुपयोग करना कचरे को कंचन बनाने से कम नहीं है। आज ऐसे स्टार्टअप्स की कमी नहीं जो इस दिशा में इनोवेट काम कर रहे हैं। इस सेक्टर ने हजारों लोगों को सीधे तौर पर रोजगार भी दिया है। ये सभी भारत को ग्लोबल रिसाइकलिंग हब बनाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन ऐसे इनिशिएटिव की सफलता के लिए एक जरूरी शर्त भी है। वो ये है कि ई वेस्ट के निपटारे से सुरक्षित उपयोगी तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करते रहना होगा।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने अवैध घुसपैठ और आबादी में बदलाव की जांच के लिए की बड़ी पहल। राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक ढांचे पर खतरों से निपटने के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित। गिरिडीह में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी की अध्यक्षता में हुई दिशा की महत्वपूर्ण बैठक। विकास कार्यों में तेजी लाने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री ने की शिक्षा विभाग की समीक्षा। सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की संख्या बढ़ाने के निर्देश। महिला और बाल विकास विभाग की योजनाओं का भी लिया जायजा। राज्य के 11 जिलों में कल तेज आंधी और बारिश, वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट। 28 मई से भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना। और राज्य के 8 खिलाड़ियों के साथ भारतीय अंडर 18 हॉकी टीमें एशिया कप के लिए जापान रवाना। महिला टीम में 6 और पुरुष टीम में राज्य के 2 खिलाड़ी दिखाएंगे अपना दम। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से देश की आबादी के ढांचे में हो रहे बदलावों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नौलेकर इस समिति के अध्यक्ष होंगे। इस समिति में जनगणना आयुक्त सहित कई पूर्व प्रशासनिक अधिकारी और अर्थशास्त्री शामिल किए गए हैं। गृहमंत्री ने कहा कि अप्राकृतिक रूप से बदलती आबादी देश की संप्रभुता, राष्ट्रीय सुरक्षा और आदिवासी समाज के संरक्षण के लिए एक गंभीर चुनौती है। गिरिडीह में आज जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति यानी दिशा की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में पानी, बिजली और शहर की सफाई का मुद्दा मुख्य रूप से छाया रहा। केंद्रीय मंत्री ने जिले में चल रही विकास योजनाओं में तेजी लाने और अधूरी सड़कों के मामले की जांच करने के निर्देश दिए।
2: लगभग 7-8 सड़क और ये कई बार ये चर्चा हुई है और इसके तहत कमेटी इस बार जैसे डीसी को कहा गया है कि इसके जितना जल्द हो सके जांच करके आप भेजें रिपोर्ट। जो काम नहीं कर रही है वैसे जो कॉन्ट्रैक्टर है किसी को से उसे ब्लैकलिस्टेड करना चाहिए, वैसे लोगों को आइंदा से भविष्य में काम न मिले इस पर कार्रवाई करनी चाहिए।
1: बैठक के बाद राज्य के नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा कि विकास कार्यों की कमियों को जल्द दूर किया जाएगा।
3: तमाम योजनाओं की समीक्षा की गई, उस योजनाओं की प्रगति संतोषप्रद है। तमाम विभागों को निर्देशित किया गया और मैं यह मानता हूं कि इस बैठक के फलाफल जिले के लिए बेहतर है।
1: पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। रांची में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के मेडिकल कॉरपोरेशन में नियमों को ताक पर रखकर चहेते अधिकारियों को सेवा विस्तार दिया गया है। उन्होंने वर्ष 2026 में हुए 80 करोड़ रूपये के एम्बुलेंस टेंडर में भी भारी गड़बड़ी का दावा किया है। श्री मरांडी ने ट्रेजरी घोटाले का जिक्र करते हुए कहा कि जांच के बावजूद बड़े अधिकारियों को बचाया जा रहा है।
4: राज्य में जो बैठे हुए सरकार है काम नहीं करती बल्कि सरकार गंवाने में लगी। आप सबके ध्यान में है ट्रेजरी घोटाला जो लगातार जिसके चलते पैसे की जो निकासी हो रही है, सरकार जांच करा रही है, फलाफल क्या निकलेगा नहीं पता है, जो कि उम्मीद नहीं कर सकते इस सरकार से। जो कि ये जो वर्तमान सरकार जब वही सारे पदाधिकारी पदस्थापित रहेंगे उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करेगी तो फिर करप्शन कैसे समाप्त हो।
1: रांची में आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के एक प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मुलाकात की। संगठन ने झारखंड राज्य फार्मेसी काउंसिल में फैले भ्रष्टाचार और अनियमितताओं की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है। युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शशांक राज ने आरोप लगाया कि काउंसिल में छात्रों से नामांकन और परीक्षा के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है।
5: फार्मेसी एक्ट अगर 2015 से देश भर में फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से लागू हुआ है तो आखिर झारखंड में वो एक्ट क्यों नहीं लागू, इसका भी जवाब राज्य सरकार को देना चाहिए। और जिस प्रकार से झारखंड में जो चल रहा है, झारखंडी बच्चों के जो सपने बेचने का काम कर रहे हैं, हम उनकी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं।
1: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 की उपलब्धियों और नए वर्ष की 2026-27 की कार्य योजना पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने, शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया तेज करने और सीएम स्कूल ऑफ एक्सलेंस की संख्या बढ़ाकर 5000 करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने महिलाओं और बच्चों से जुड़ी कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सामाजिक सुरक्षा और कुपोषण उन्मूलन योजनाओं का लाभ समय पर जरूरतमंदों तक पहुंचाया जाए। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। केंद्र सरकार के 12 वर्षों के कार्यकाल में महिला सशक्तिकरण के तहत चलाई जा रही प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ग्रामीण महिलाओं के लिए वरदान साबित हो रही है। हजारीबाग जिले के इचाक प्रखंड की औलंजा पंचायत में इस योजना ने गरीब महिलाओं को लकड़ी के चूल्हे के धुएं से मुक्ति दिलाई है।
6: हमको प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ मिला है, उसमें हमको गैस सिलेंडर मिला है, चूल्हा भी मिला है, उससे हम लोग खाना बनाते हैं। और अब है कि गैस पे खाना बनाते हैं तो हम लोग का समय भी बचता है, बच्चे लोग को टाइम पर हम लोग कुछ भी बना के दे सकते हैं, लंच वगैरह भी देते हैं।
7: गैस अब मिल गया तो उससे समय भी बचता है, खाना जल्दी बनता है, बच्चा सबको समय से खाना दे पाते हैं।
8: जाते थे पहले लकड़ी झुड़ी तोड़ के आना पड़ता था, अब गैस मिल गया तो बहुत ही आराम है खाना बनाने में, बना के आराम से खा सकते हैं, खा रहे हैं।
1: इधर रांची में भी इस योजना के बाद महिलाओं को पारंपरिक चूल्हे की परेशानियों से बड़ी राहत मिली है। अब गैस पर खाना बनाने से महिलाओं का समय आधा से भी कम लग रहा है। इस बचे हुए समय का उपयोग महिलाएं अन्य कार्यों और स्वरोजगार में कर रही हैं।
9: हम पारो देवी और गैस भी हम उठाते हैं और सरकार घर दिया है, राशन देता है, सब सुविधा है। हम गैस उठाते हैं हर महीना, गैस पर खाना वाना बनाते हैं, लकड़ी में नहीं बनाते हैं, जब से गैस मिला है गैस बनाते हैं।
1: खूंटी पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान के तहत लोगों को खोए हुए मोबाइल फोन बरामद कर उन्हें वापस लौटाए हैं। जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में एसपी ऋषभ गर्ग ने कुल 56 लोगों को उनके गुम हुए मोबाइल फोन सौंपे। जन शिकायत सेल और टेक्निकल टीम की मदद से इन फोनों को खोजा गया था। बकरीद त्योहार को शांति और भाईचारे के साथ मनाने के लिए राज्यभर में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। खूंटी नगर भवन में आयोजित जिला शांति समिति की बैठक में उपायुक्त मोहम्मद जावेद हुसैन और एसपी ऋषभ गर्ग ने सभी समुदायों से संवाद किया। प्रशासन ने मस्जिदों में बिजली, पानी और साफ सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। दूसरी ओर पाकुड़ में उपायुक्त मेघा भारद्वाज और पुलिस अधीक्षक अनुदीप सिंह के नेतृत्व में पुलिस जवानों ने संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया। अधिकारियों ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और शांति बनाए रखने की अपील की है। और अब मौसम का हाल। राजधानी रांची सहित पूरे राज्य में 28 मई से भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी के कारण राज्य के कई जिलों में बारिश होगी, जिससे तापमान में गिरावट आएगी। मौसम विभाग ने कल राज्य के 11 जिलों में गरज चमक के साथ बारिश और 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राज्य के 8 खिलाड़ियों के साथ भारतीय अंडर 18 महिला और पुरुष हॉकी टीमें एशिया कप 2026 में हिस्सा लेने के लिए जापान रवाना हो गई है। जापान में 29 मई से 6 जून तक आयोजित होने वाले इस बड़े टूर्नामेंट में भारतीय टीमें खिताब जीतने के इरादे से मैदान में उतरेंगी। आपको बता दें कि भारतीय महिला टीम में झारखंड की 6 प्रतिभावान महिला खिलाड़ियों और पुरुष टीम में 2 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने अवैध घुसपैठ और आबादी में बदलाव की जांच के लिए की बड़ी पहल। राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक ढांचे पर खतरों से निपटने के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित। गिरिडीह में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी की अध्यक्षता में हुई दिशा की महत्वपूर्ण बैठक, विकास कार्यों में तेजी लाने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री ने की शिक्षा विभाग की समीक्षा, सीएम स्कूल ऑफ एक्सलेंस की संख्या बढ़ाने के निर्देश। महिला और बाल विकास विभाग की योजनाओं का भी लिया जायजा। राज्य के 11 जिलों में कल तेज आंधी और बारिश वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट जारी, 28 मई से भीषण गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद। और राज्य के 8 खिलाड़ियों के साथ भारतीय अंडर 18 हॉकी टीमें एशिया कप के लिए जापान रवाना, महिला टीम में 6 और पुरुष टीम में राज्य के 2 खिलाड़ी दिखाएंगे अपना दम। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
10: प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: झारखंड ने बताया कि वनरेबल विटनेस जो होते हैं वैसे केस जिनको सोसाइटी के सामने लाने से मना किया जाता है, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत पहले ही आदेश निर्गत किए थे।
1: यहाँ एक सबसे महत्वपूर्ण चीज का अभाव था, जो वल्नरेबल विटनेस जो होते हैं, ये उस तरह के विटनेस होते हैं, एक जो सोसाइटी के सामने जिसको लाने से मना किया गया, जैसे पॉक्सो एक्ट के विक्टिम्स या 376 जो ओरिजिनल था उसके विक्टिम्स, जिससे जिस जो अगर आ जाएंगे तो हमारा सोसाइटी अभी भी वो नहीं है जो कि ऊपर माने बहुत ज़्यादा ओपन है, वो अभी भी विक्टिम को ही एक्यूज समझता है।
0: न्यायालय में पेपरलेस वर्क एवं लंबित मामलों का त्वरित गति से निष्पादन जैसे प्रश्नों के जवाब में न्यायाधीश ने बताया कि पेपरलेस का काम अब न्यायालय में शुरू हो गया है। प्रत्येक जज अपने अपने कामों को अगर करे तो लंबित मामले घटेंगे।
1: पेपरलेस काम तो धीरे धीरे अब हो ही रहा है, शुरू हो गया है। लंबित मामले में मैं यही कहना चाहूंगा, हर एक जज अपना अपना काम करे तो लंबित मामले थोड़े घटेंगे। और दूसरा, केस तो घर से शुरू हो रहा है, हस्बैंड वाइफ का केस मैट्रिमोनियल 17% अभी पूरे हिंदुस्तान में, उसका सरकार भी कोई दोषी नहीं है और जजेस भी दोषी नहीं।
0: अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के अवसर पर रामगढ़ के सदर अस्पताल में पिछले दिनों रामगढ़ विधायक ममता देवी एवं सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार के द्वारा नर्सों को पुरस्कृत किया गया। इस मौके पर रामगढ़ सदर अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार ने बताया कि हमारे रामगढ़ जिले में प्रतिमा 300 से ज्यादा सिजेरियन ऑपरेशन होते रहते हैं, जिनका स्क्रीनिंग फर्स्ट हैंड में यह हमारी नर्सें ही करती हैं। हमारे अस्पताल को जितने भी पुरस्कार मिलते हैं उसमें इन नर्सों का महत्वपूर्ण योगदान होता है।
2: विश्व नर्सिंग दिवस के अवसर पर जो कार्यक्रम आयोजित किया गया, स्वास्थ्य विभाग अति संवेदना के साथ लोगों से बातचीत करते हुए उनकी तकलीफ में उनकी बातों को सुनना और सेवा देना, तो संवेदना के साथ सेवा देने वाले इस विभाग में जो कुछ भी हमने उपलब्धियां की, उस सेवा में जो सफलताएं मिली उसकी रीढ़, उसकी बुनियाद हमारी बहनें जो ANM है, GNM है, स्टाफ नर्स हैं, ये लोग हैं।
0: मौके पर पुलिस अधीक्षक मुकेश लुनायत ने बताया कि महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने सहित विभिन्न अपराधों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से पूरे जिले में प्रहरी पहल की शुरुआत की गई है।
3: इस पहल के तीन हिस्सा हैं, पैदल गश्ती, अड्डेबाजी के विरुद्ध अभियान एवं एंटी क्राइम चेकिंग।
0: रामगढ़ पुलिस अधीक्षक मुकेश लुनायत के ताबड़तोड़ कार्रवाई एवं विशेष पहल अपराध नियंत्रण में सहायक सिद्ध हुआ है। कौशल किशोर तिवारी, आकाशवाणी समाचार, रामगढ़।
4: अभी आप सुन रहे थे रामगढ़ जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम झनकार।

सनम तेरी कसम, अभी आपने सुना इस फिल्म का गीत दर्शन रावल, नीति मोहन और अकाशा सिंह की आवाज में। आइए कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं अलका याग्निक की आवाज में। फिल्म का नाम है आ अब लौट चलें।

आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 7:30 हुए हैं। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम ऑल टाइम हिट्स।

कार्यक्रम का पहला नगमा हम आपको सुनवाने जा रहे हैं मोहम्मद रफी की आवाज में। फिल्म का नाम है कर्ज।

0: ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे
1: कहाँ आ पाऊंगी मैं दिन में,
0: अमावस आ जाती है।

नींद हमारी ख्वाब तुम्हारी, अभी आपने सुना इस फिल्म का गीत आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाज में।

आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 8 बजे हैं। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम आपकी चाहत।

कार्यक्रम आपकी चाहत सुन रहे सभी श्रोताओं का इस कार्यक्रम में स्वागत है, साथ ही शगुफ्ता का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, तो चलिए आपके इंतजार को देते हैं पूर्ण विराम और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ।

आवाजें हैं लता मंगेशकर और कुमार सानू की। फिल्म का नाम है सलमा पे दिल आ गया और इस गीत को सुनना चाहा है झुमरी तिलैया से विजय शर्मा, भोला चौधरी, सुधीर कुमार। औरंगाबाद से हैं राजेश साबले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश और राशि राजेश। पटेल नगर मलोट पंजाब से हैं रमेश कुमार जजौरिया, गीता रानी जजौरिया, गगनदीप जजौरिया और बेबी आरजू जजौरिया। ओल्ड लिस्नर ग्रुप मगनपुर से हैं अमजद अली और अब्बास आलम। तो चलिए इन सब की पसंद पर सुनते हैं ये गीत।

फिल्म का नाम है ब्रह्मचारी, आवाज है मोहम्मद रफी की, गीत है हसरत जयपुरी की और इसे संगीत से सजाया है शंकर जयकिशन ने।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में अभी आपने सुना ब्रह्मचारी फिल्म का ये गीत। और इस गीत को सुनना चाहा था बेमेतरा नया पारा से ईश्वरी प्रसाद साहू, श्रीमती भावना साहू, नीलेश कुमार साहू और कुमारी श्रद्धा साहू। पुराना तालाब डुमराओं से वलीउल्लाह अंसारी, आसमानाज अंसारी और सोनम। सारिमपुर बक्सर से इसी गीत को सुनना चाहा था सरफुद्दीन अंसारी, फातिमा नाज। इंदिरा विहार दिल्ली से डब्लू अली अंसारी, वसीम अकरम और बेबी अंसारी। डुमराओं से लाल बाबू दीवाना, दिव्या भारती, हुसैनपुरा। निजामुद्दीन अंसारी, इश्तियाक अहमद और जैकी अहमद। छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झावेंद्र कुमार वर्मा।

आवाजें हैं अरिजीत सिंह और अंतरा मित्रा की। फिल्म का नाम है दिलवाले और इस गीत को सुनना चाहे पंच मंदिर रोड से आप हैं कलाम अहमद आरजू, नीलोफर परवीन आरजू, हबीबा खातून आरजू, कहकशा परवीन आरजू, इरफान अहमद आरजू, शबाना परवीन आरजू, फिरोज अहमद आरजू और शमा परवीन आरजू। सौदागर मोहल्ला रामगढ़ से हैं महबूब आलम, शबनम नूरी, मकसूद आलम, पाकिजा बेगम, महमूद आलम, शहनाज नूरी, महफूज आलम और शमशाद बेगम। इसी गीत को सुना चाहे शिवाजी चौक राजिम छत्तीसगढ़ से अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और क्रिश श्रीवास्तव। अमरपुर पेंड्रा छत्तीसगढ़ से दीपक कुमार, रोशन कुमार, वंशीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, सुरुचि देवी, दिशा और लंबी श्रीवास्तव।

अगला फरमाइशी कहते हैं गांधी चौक रोपड़ पंजाब से आप हैं हरदी उमिका बलविंदर बिरक जयदेव बिरक और मीका बिरक इन सब ने सुनना चाहा है अजय फिल्म का गीत। इसी गीत को सुनना चाहा है ग्राम बगबुड़वा पथरिया से नरेन नेताम और कुसुम नेताम। महादेव घाट अमलेश्वर से आप हैं डोमन ठाकुर सुमन ठाकुर मिथिलेश ठाकुर तारनी ठाकुर सूरज ठाकुर सुजला ठाकुर ज्योति ठाकुर और रियांश ठाकुर। सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से हैं कमरुल्ला नसीम बेगम आयसा खान हादिया खान आसमा सालिया सोएब खान मुस्तुबा खान रऊब और शाहिद। गांधीबाग अकोला से हैं रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर। तो आइए इन सब की पसंद पर सुनते हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज में अजय फिल्म का ये गीत।

कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं यशोदास की आवाज में। फिल्म का नाम है अलाप और इस गीत को सुनना चाहा है भिलाई छत्तीसगढ़ से। आप हैं मुकेश शर्मा, सरिता शर्मा, गौरव शर्मा और गरिमा शर्मा। डमडी हरली से हैं उमेश चंद पांडे, शंभुचंद पांडे, अनिल चंद पांडे, साकेत, शुभम, नर्मदा, अक्षता, प्रियंका, शमी, अपराजिता, अपूर्वा, टुकू एवं समस्त पांडे परिवार। मेन रोड बड़का गांव से हैं दिनेश मालाकार, नीरज मालाकार, आशीष मालाकार, विकास मालाकार, रंजना मालाकार, गुड़िया रानी, गोलू बाबू, भोला बाबू एवं उनके ढेर सारे साथीगण। रातुराज रांची झारखंड से हैं सचिदानंद दुबे, नटवर निर्मोही, कुमार दिवाकर और सत्यम सावरिया। तो आइए इन सबकी पसंद पर आपको सुनवाते हैं यशोदास की आवाज में अलाप फिल्म का ये गीत।

0: आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या, रात्रि 9 बजे सुनेंगे न्यूज 8:09 और 9:15 पर सुनेंगे स्पॉटलाइट हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से उत्पन्न जनसांख्यिकी परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी रोकने के लिए 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणालियां स्थापित कर दी जाएंगी। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी सहयोग की शुरुआत की। आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की निंदा की। सरकार ने प्याज का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य प्रति क्विंटल 1,270 रुपये से बढ़ाकर 1,580 रुपये किया। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भविष्य में ओलंपिक खेलों के लिए योगासन का समर्थन किया। पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप अगले महीने अहमदाबाद में होगी और एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान मोहित कुमार और चंद्र मोहन ने पुरुषों की फ्री स्टाइल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्रा, पूर्व आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉ. शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये समिति अवैध प्रवासन और अन्य अस्वाभाविक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकी बदलावों का व्यापक मूल्यांकन करेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: ये उच्च स्तरीय समिति अवैध अप्रवासन और अन्य अप्राकृतिक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का व्यापक आकलन करेगी। ये धार्मिक और सामाजिक समुदायों के स्तर पर असामान्य जनसंख्या स्थानांतरण का भी विश्लेषण करेगी और इसके लिए एक योजनाबद्ध और समयबद्ध समाधान प्रस्तुत करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष लाल किले से अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण में जनसांख्यिकीय परिवर्तन पर उच्च स्तरीय समिति की घोषणा की थी।
3: मैं आज देश के सामने एक चिंता चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूं। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है।
2: समिति 1 वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। वहीं आवश्यकता पड़ने पर समिति का कार्यकाल 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। अनुपम मिश्र के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए अगले 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणाली लगाने की प्रक्रिया में है। राजस्थान के बीकानेर जिले में सांचू सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने ये घोषणा की।
4: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में आज क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। सदस्य देश वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में निगरानी से जुड़ी पहल तथा दृश्यों के माध्यम से समुद्री गतिविधियों की साझा जानकारी उपलब्ध कराने पर भी सहमति व्यक्त की। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में डॉ. जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा।
5: इकोनॉमिक रेजिलियंस शुड बी प्रमोटेड।
6: बैठक में आर्थिक मजबूती बनाए रखने, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, विश्वसनीय और सुरक्षित तकनीकों का प्रसार करने तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने पर चर्चा हुई। हमारा लक्ष्य आपसी सहयोग को मजबूत करना तथा दूसरों की सहायता करना है। हम क्वाड देश आदान प्रदान से विकास और समृद्धि की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं।
5: अंडरटेक मोर एक्सचेंजेस एज वी इंटेंड टू डू।
1: बाद में विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के नागराज नायडू ने संवाददाताओं को बताया कि क्वाड देशों ने पहलगाम आतंकवादी हमले की भी निंदा की।
7: काउंटर टेररिज्म इज अ सिग्निफिकेंट पिलर ऑफ।
8: आतंकवाद से सख्ती से निपटना क्वाड सहयोग का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बना हुआ है। विदेश मंत्रियों ने सीमा पार आतंकवाद और आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। संयुक्त बयान में विशेष रूप से पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की गई और आतंकवादी गुटों, उनके वित्त पोषण और प्रायोजकों के खिलाफ निर्णायक अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया गया।
7: टेररिस्ट एंटिटीज, फाइनेंसेस एंड स्पॉन्सर्स।
1: विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत की व्यापक रणनीतिक साझेदारी ने नई गति पकड़ी है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ बैठक के दौरान ये टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए यूरेनियम की आपूर्ति सहित ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ रहा है। इस बीच ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस दौरान रक्षा, व्यापार, प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती सुनिश्चित करने जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों की व्यापक रणनीतिक साझेदारी के विस्तार पर चर्चा हुई। जापान की विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने भी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। उन्होंने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने में भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी की महत्वपूर्ण भूमिका की पुष्टि की। भारत ने चीन और पाकिस्तान के संयुक्त बयान में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के अवांछित संदर्भों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत का रुख स्वयं सुसंगत है और संबंधित पक्षों को इसकी जानकारी है। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न तथा अविभाज्य अंग थे, हैं और हमेशा रहेंगे। प्रवक्ता ने कहा कि किसी अन्य देश को इस टिप्पणी पर करने का अधिकार नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने प्याज के भंडार का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य 1,270 रुपए से बढ़ाकर 1,580 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। ये बढ़ोतरी राज्य सरकारों के अनुरोध पर की गई है। नई दरें आज से लागू हो गई हैं। इस संबंध में उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उपभोक्ता मामलों के विभाग, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग 83 के नागपट्टनम तंजावुर खंड पर 14 किलोमीटर से अधिक लंबे 4 लेन वाले तिरुवरूर बाईपास के निर्माण के लिए 1000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रीय राजमार्ग 129 और राष्ट्रीय राजमार्ग 134A पर 2 अतिरिक्त ओवरब्रिज भी बनाए जाएंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि ये मार्ग तिरुचिरापल्ली और कोयम्बटूर जैसे औद्योगिक केंद्रों को राईकाल और नागपट्टनम जैसे बंदरगाह शहरों से जोड़ेंगे। श्री गडकरी ने आज पंजाब में 4000 किलोमीटर से अधिक और दिल्ली तथा हरियाणा में 3000 किलोमीटर से अधिक की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की गुणवत्ता और रखरखाव की प्रगति की समीक्षा की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की पेमेंट गेटवे प्रणाली में सुधार के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के 4 प्रमुख बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की है। बैठक के दौरान श्री प्रधान ने विद्यार्थियों को असुविधा से बचाने के लिए निर्बाध और सुरक्षित भुगतान प्रणाली की आवश्यकता पर जोर दिया। CBSE ने स्पष्ट किया है कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने वाली ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कोई सुरक्षा उल्लंघन नहीं हुआ है। CBSE ने कहा कि वास्तविक मूल्यांकन कार्य के लिए उपयोग किए जा रहे पोर्टल पर कोई सुरक्षा उल्लंघन सामने नहीं आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने पद पर 12 वर्ष पूरे कर लिए हैं। 2014 में आज ही के दिन श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। एक रिपोर्ट।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार ने पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर अनेक जन कल्याणकारी पहलें की है, जिनका उद्देश्य नागरिकों का उत्थान करना रहा है। गरीबों और मध्यम वर्ग के कल्याण से लेकर महिलाओं, किसानों और युवाओं के सशक्तिकरण तक मोदी सरकार ने समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखा है। इसी तरह मोदी सरकार ने आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे का विस्तार और नागरिकों के जीवन को आसान बनाने पर भी विशेष ध्यान दिया है। मोदी सरकार ने वस्तु और सेवा कर GST और डिजिटल भुगतान जैसे संरचनात्मक सुधार भी लागू किए हैं। सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया है। इसके अलावा मोदी सरकार ने विरासत संरक्षण, संस्कृति पर भी अपना ध्यान केंद्रित किया है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था, लिटरली जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाए तो मर जाए, गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
3: श्रोताओं नमस्कार। जी हाँ, आज बातें एक ऐसे निर्माता निर्देशक की जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से बढ़ा दी लाखों दिलों की धड़कन, जिन्होंने सिखाए युवाओं को प्यार के नए मायने, जिन्होंने नई पीढ़ी को ये विश्वास दिलाया कि उलझे रिश्तों में भी खिलते हैं चाहत के फूल, उन्हें पाकर बरबस ही लोगों के होंठों पर ये नगमा गूंज उठता है।
4: कोई

1972 के दिन मशहूर फिल्म निर्माता यश जौहर और उनकी पत्नी हीरू जौहर के घर जन्मे करण जौहर। बचपन में फिल्मी दुनिया से वो दूर ही रहना चाहते थे। आज के सफल फिल्मकार करण जौहर जब स्कूल में पढ़ा करते थे तो अपने सभी दोस्तों से कहा करते कि उनके पिता एक व्यापारी हैं। लेकिन बड़े होते होते उन्होंने अपनी मंजिल की तलाश में फिल्मी दुनिया की राहों में ही चलने का निर्णय लिया।

यश जौहर की ख्वाहिश थी कि उनका बेटा फिल्मी पर्दे पर चमके और लोगों के बीच एक अभिनेता की तरह नाम कमाए। ये तो पता नहीं कि पिता की इच्छा के लिए या अपनी मंजिल को परखने के लिए, पर करण जौहर ने अपने करियर की शुरुआत बतौर अभिनेता ही की। मात्र 17 साल की उम्र में वो नजर आए दूरदर्शन के एक सीरियल इंद्रधनुष में, लेकिन उनके हुनर में कई ऐसे रंग मौजूद थे जिन्हें वो सभी के सामने लाना चाहते थे, और इसके लिए उन्होंने चुनी पर्दे के पीछे की जिंदगी। अब उन्हें मिल चुकी थी उनकी राह।

बचपन से राज कपूर, यश चोपड़ा और सूरज बड़जात्या को अपना आइडल मानने वाले करण ने निर्देशन की दुनिया में कदम रखने के लिए साथ लिया निर्माता निर्देशक आदित्य चोपड़ा का। बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर करण ने जिस फिल्म से शुरुआत की वो फिल्म थी सुपर डुपर हिट फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे।

इस फिल्म में करण ने शाहरुख खान के दोस्त का किरदार भी निभाया था। पर्दे पर निभाई गई ये दोस्ती निजी जिंदगी में आज तक बरकरार है। जब करण ने फिल्म निर्देशन में कदम रखा तो उन्होंने अपनी फिल्म में शाहरुख खान को मुख्य भूमिका दी और उनके साथ साइन किया फिल्मी दुनिया से ही अपनी एक और दोस्त काजोल को। इन दोनों कलाकारों के साथ इस फिल्म में थी रानी।

0: कुछ।
1: करण जौहर की इस पहली निर्देशित फिल्म ने अपार सफलता हासिल की। फिल्म कुछ कुछ होता है ने न सिर्फ अलग अलग फिल्मी पुरस्कारों को समेटा बल्कि एक संपूर्ण मनोरंजन करने वाली फिल्म के तौर पर राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित हुई। इसके बाद मानो करण जौहर को मिल गई उनकी राह, जहां वो अपनी मंजिल को पाने के लिए आगे बढ़ चले। 2001 में उन्होंने निर्देशित की अपनी दूसरी फिल्म कभी खुशी कभी गम, जहां एक ओर करण के जीवन में खुशियों के रंग बिखर रहे थे, वहीं गम ने जिंदगी में दस्तक दी। साल 2004 में पिता यश जौहर करण को मां हीरू जौहर की जिम्मेदारी सौंपकर इस दुनिया के रंगमंच को छोड़ गए। करण दुख के इस समय में अपनी मां हीरू जौहर के सहारे बने और बाद में उन्होंने पिता की फिल्म कंपनी धर्मा प्रोडक्शन को भी संभाला। करण जौहर ने अब तक जितने भी फिल्म निर्देशित की उन सभी की कहानी उन्होंने खुद लिखी और साल 2006 में आई एक ऐसी फिल्म जिस फिल्म को उन्होंने न सिर्फ लिखा और निर्देशित किया बल्कि इस फिल्म के निर्माता भी वही थे। ये फिल्म थी वैवाहिक रिश्ते के उलझन को दर्शाती फिल्म कभी अलविदा ना कहना।

ऑलराउंडर कहना गलत नहीं होगा। वो निर्माता, निर्देशक, लेखक, अभिनेता तो हैं ही, साथ ही बतौर कॉस्ट्यूम डिजाइनर भी फिल्मों में काम कर चुके हैं। ऐसी कुछ फिल्में हैं, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, दिल तो पागल है, डुप्लीकेट, मोहब्बतें, वीर जारा और मैं हूं ना। ज्यादातर उन्होंने शाहरुख खान के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइन किए और साथ ही अमिताभ बच्चन के लिए भी।

2009 में एक बार फिर करण जौहर अपनी पसंदीदा जोड़ी शाहरुख और काजोल के साथ लेकर आए एक ऐसी फिल्म जो सामाजिक मुद्दों की बात करते हुए सभी के दिलों को छू गई। करण के करियर की बेहतरीन फिल्मों में से एक मानी जाने वाली ये फिल्म थी माई नेम इज खान।

करण जौहर न्यूमरोलॉजी में काफी विश्वास रखते थे और इसलिए उनकी फिल्मों के नाम शुरू होते थे अंग्रेजी के अक्षर से। लेकिन जब 2006 में उन्होंने फिल्म लगे रहो मुन्ना भाई देखी तो उन्हें लगा कि वो भी अब इन बातों में विश्वास नहीं करेंगे। इसके बाद उन्होंने कई अलग अलग अक्षरों से शुरू होने वाली फिल्मों का निर्माण किया। यहाँ हम आपको बताते चलते हैं उन फिल्मों के बारे में जिनसे करण जौहर बतौर निर्माता जुड़े हैं। ऐसी कुछ फिल्में हैं कल हो ना हो, दोस्ताना, वेकअप सिड, आई हेट लव स्टोरीज, वी आर फैमिली, अग्निपथ और ये जवानी है दीवानी।

0: जमाने ना।
1: साल 2012 में करण जौहर फिल्मी दुनिया में लेकर आए अपने तीन नए स्टूडेंट्स आलिया भट्ट, वरुण धवन और सिद्धार्थ मल्होत्रा। तीन नए चेहरों को सामने लाने वाली उनकी ये फिल्म थी स्टूडेंट ऑफ द ईयर।

फिल्मी सितारों के बच्चों को लॉन्च करने में माहिर हैं। उन्होंने ऐसे कई नए सितारों को रुपहले पर्दे तक पहुंचाया है। हाल ही में उन्होंने कुछ फिल्मी सितारों के बच्चों को अपने द्वारा निर्मित फिल्म के जरिए लोगों से रूबरू करवाया है। ये फिल्में हैं धड़क, जिसमें उन्होंने ईशान खट्टर और जाह्नवी कपूर को लॉन्च किया।

और यूं तो कई फिल्मों में गेस्ट अपीयरेंस करते नजर आए, लेकिन उन्होंने 2015 में अनुराग कश्यप की फिल्म बॉम्बे वेलवेट में एक ऐसा किरदार निभाया जो लोगों के मन पर छाप छोड़ गया। करण जौहर ने पहली बार एक नेगेटिव किरदार निभाया जिसका नाम था कैजात खंबाटा। इस नेगेटिव किरदार ने फिल्म को मिले नेगेटिव रिस्पांस के बीच न सिर्फ दर्शकों के बल्कि आलोचकों के भी पॉजिटिव कमेंट हासिल किए। इस किरदार के लिए करण जौहर ने अनुराग कश्यप से सिर्फ 11 रुपए लिए।

सालों तक सिर्फ फिल्म निर्माण से जुड़े रहने के बाद करण जौहर एक बार फिर तैयार थे एक नई फिल्म के साथ, जिसकी कहानी उन्होंने सिर्फ 30 दिनों में लिखी थी। ये फिल्म एक बार फिर करण जौहर के लिए बेहतरीन सक्सेस लेकर आई। साल 2016 में आई ये फिल्म थी ए दिल है मुश्किल।

2017 में उन्हें निजी जीवन में एक नई भूमिका हासिल हुई। ये भूमिका थी एक पिता की। करण जौहर सैरोगेसी के जरिए बन बैठे जुड़वा बच्चों के पिता। उन्होंने अपने बेटे का नाम पिता के नाम पर यश रखा है और बेटी को उन्होंने अपनी माँ हीरू जौहर के नाम से मिलता जुलता नाम रूही दिया।

करण जौहर की बतौर निर्माता कई फिल्में आई जिन्हें दर्शकों ने सराहा। इनमें शामिल हैं मीनाक्षी सुंदरेश्वर, सूर्यवंशी, गहराइयां, ब्रह्मास्त्र पार्ट 1, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी और जुग जुग जियो।

करण जौहर ने देशभक्ति से जुड़ी कई फिल्मों का भी निर्माण किया जिन्हें काफी सराहा गया। इनमें नाम शामिल हैं गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल, ए वतन मेरे वतन और कैप्टन विक्रम बत्रा के जीवन पर बनी फिल्म शेरशाह, जिसे दर्शकों का भरपूर प्यार मिला। केसरी 2 द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ जलियांवाला बाग सभी को पसंद आ रही है।

साल 2020 में सिनेमा से जुड़े बेहतरीन काम के लिए करण जौहर को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। फ्रेंच में मास्टर डिग्री रखने वाले करण जौहर प्रेम और रिश्तों की भाषा समझने और समझाने में भी मास्टर हैं। वो आगे दर्शकों तक प्रेम का ये संदेश अपनी फिल्मों के जरिए पहुंचाते रहेंगे, इसकी पूरी उम्मीद है।

0: आज के फनकार। ये कार्यक्रम आज केंद्रित था निर्माता निर्देशक करण जौहर पर, शोध आलेख और स्वर नेहा शर्मा का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10 बजे हैं। पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा।

लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाज में अभी आपने सुना फिल्म अलीबाबा 40 चोर का ये गीत। आइए कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं। फिल्म का नाम है डॉन।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। हमारा अगला कार्यक्रम होगा एक फनकार, बस कुछ ही देर में।

श्रोताओं, आज के हमारे फनकार हैं पार्श्व गायक महेंद्र कपूर। महेंद्र कपूर हिंदी फिल्मों के एक प्रसिद्ध पार्श्व गायक थे। उन्होंने कई फिल्मों जैसे हमराज, गुमराह, धूल का फूल, वक्त और धुंध में विशेष रूप से यादगार गाने गाए हैं।

0: श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज के फनकार। श्रोताओं, हमारे आज के फनकार हैं पार्श्व गायक महेंद्र कपूर। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित महेंद्र कपूर सबसे बहुमुखी गायकों में से एक थे। वर्षों बाद भी मनोज कुमार और दादा कोंडके जैसे दिग्गज अभिनेताओं को अपनी आवाज देने के लिए उन्हें आज भी लोकप्रिय रूप से याद किया जाता है।
1: अभी अलविदा मत कहो।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम आज के फनकार, और आज के हमारे फनकार थे पार्श्व गायक महेंद्र कपूर। आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकीय बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि ये समिति अवैध प्रवासन और अन्य अस्वाभाविक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकी बदलावों का व्यापक मूल्यांकन करेगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए अगले 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणाली लगाने की प्रक्रिया में है। राजस्थान के बीकानेर जिले में साचू सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृहमंत्री ने ये बात कही।
1: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में आज क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमरीका के विदेश मंत्री ने बैठक में हिस्सा लिया। सदस्य देश वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में निगरानी से जुड़ी पहल तथा दृश्यों के माध्यम से समुद्री गतिविधियों की साझा जानकारी उपलब्ध कराने पर भी सहमति व्यक्त की। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में डॉ. जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा। विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के नागराज नायडू ने बताया कि क्वाड देशों ने पहलगाम आतंकवादी हमले की भी निंदा की। पश्चिम बंगाल में एक विशेष अदालत ने मालदा के मोथाबाड़ी में न्यायिक अधिकारियों पर हमले के सिलसिले में 15 और लोगों को 5 जून तक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की हिरासत में भेज दिया है। आरोपियों को सोमवार देर रात मोथाबाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में केंद्रीय एजेंसी द्वारा की गई छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया था। एनआईए के सूत्रों के अनुसार सोशल मीडिया पर वायरल विभिन्न वीडियो क्लिप के साथ दिन के सीसीटीवी सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार में 1983 में 5 लोगों की हत्या के मामले में कई दोषियों की सजा को बरकरार रखते हुए कहा है कि अपराध की क्रूरता झकझोर देने वाली है। न्यायमूर्ति

संजय करोल और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि निचली नरमी बरते जाने किसी भी गुंजाइश से इनकार करके सच्चे फैसले दिए। न्यायालय ने पटना उच्च न्यायालय के अगस्त 2017 के फैसले को चुनौती देने वाली दोषियों की पहचान की गई। सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार में 1983 में 5 लोगों की हत्या के मामले में कई दोषियों की सजा को बरकरार रखते हुए कहा है कि अपराध की क्रूरता झकझोर देने वाली है। न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि निचली अदालत और पटना उच्च न्यायालय ने इस मामले में अनुचित सहानुभूति या नरमी बरते जाने की किसी भी गुंजाइश से इनकार करके सटीक फैसले दिए। शीर्ष न्यायालय ने पटना उच्च न्यायालय के अगस्त 2017 के फैसले को चुनौती देने वाली दोषियों की अपील पर आज अपना फैसला सुनाया। सरकार ने प्याज के भंडार का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य 1,270 रुपए से बढ़ाकर 1,580 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। ये बढ़ोतरी राज्य सरकारों के अनुरोध पर की गई है। नई दरें आज से लागू हो गई। इस संबंध में उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उपभोक्ता मामलों के विभाग, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के भारत के दावे को ध्यान में रखते हुए योगासन को भविष्य के ओलंपिक खेलों की सूची में शामिल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। डॉक्टर मांडविया ने आज नई दिल्ली में कहा कि अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप आयोजित होगी। भारतीय पहलवानों ने वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में आज भी शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए पुरुषों की फ्रीस्टाइल वर्ग में 2 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।